प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
4: वंदे देव उमापतिम शुरुगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन श्रावण प्रभात की ओर से मैं आचार्य कौशल प्रसाद बिजवान मेजिन माहेश्वरनाथ मंदिर विशेष श्रावण मास के उपलक्ष्य में आप सभी जानते हैं भगवान शिव का ये श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। सभी भक्तजन भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि श्रावण मास की एक शास्त्रों के अनुसार पुराणों के अंतर्गत एक कथा भी आती है कि श्रावण मास को क्यों मनाया जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करने लग गए और भगवान नारायण ने सोचा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे तब हम पालन करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान नारायण जी के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान अब क्या करें। तो भगवान नारायण ने के मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करेंगे उससे पूर्व हम लोगों से एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, वो ये है कि हम भगवान शिव की आराधना करना भूल गए हैं। और तो भगवान नारायण के पास जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक गलती हो गई, 300 पूरे वर्ष में भगवान

0: भगवान शिव का एक ही दिन है और वो दिन शिवरात्रि का दिन है, इसलिए भगवान शिव जी का मात्र एक दिन है। इसलिए 365 दिन में से एक श्रावण मास, श्रावण मास भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी का अभिषेक किया, जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और उससे भगवान प्रकट होकर के उन्होंने प्रसन्नता से ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि बोले जो भी तुम्हारे पंचांग में, अब तुम्हारे पंचांग में श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण मास का प्रारंभ होगा और जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये तप का महीना है, संकल्प का महीना है, आराधना का महीना है। जो भी युवा भक्तजन, युवा युवती जो भी भगवान की जिस कामना से पूजन अर्चन करेंगे उनको उस फल की प्राप्ति अवश्य प्रदान होगी। भगवान शंकर सभी फलों के देने वाले हैं। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओम शांति ओम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। द्विजयाम शंभवी माया सर्वेशाम प्राणी नाम महीम भक्तम विनाशपीतात्मनः तथा संपो महयते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने अपने को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत की उनकी माया से मोहित हो जाती है। शिवेक्षाम यदा दृश्यम लोके भवत्येनम हिंसा सदा तद्धनिनाम जगत सर्वे वाचस्वताम स्थितम यत। इस लोक में शिव जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं के वाणी रूप तंत्र से बांधा हुआ है। भक्त भव भक्ति परायेनम च भव प्राण चते भव संसार स्मरणम ये न च न ते दुखस्य भाजना। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चिंता वाले है और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। इच्छात परात पंकराम च सहत्वैतं भवेत् ध्रुवेः इति महत्वा पारं वोहो कुर्यादस्यं पुरुषः। जो दूसरे का उपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले

0: पे उसका उपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम

पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज मंडे 4 अगस्त को प्रसारित इस विशेष श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन करता हूँ। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के लिए यह अत्यंत पावन एवं मंगलमय दिन माना जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शिव सती चरित्र का हम लोग पाठ कर रहे हैं, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ से विराम लिए थे हम लोग आगे बढ़े, आज बालकांड दोहा संख्या से हम आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान शिव ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक

0: जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव चल पड़े। कृपा निधान भगवान शिव बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चलते जा रहे हैं, और इन चौपायों से यह समझ में आते हैं कि भगवान शिव राम का दर्शन करते हुए अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दोनों ने दर्शन किया, भगवान शिव ने भी और सती माता ने भी। शिव जी ने दर्शन करके आनंद पाया, परंतु माँ सती के कुछ और ही अनुभव रहा। चलिए इस पाठ को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आज इसको यही पर विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत यह वेद मंत्र आप स्वीकार कीजिए। प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। ओम।

नरे, कितना अच्छा मंत्र है श्रोताओं। हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा कर्म करते रहना है। भगवान कहते हैं यदि तुम 100 वर्षों तक जीना चाहते हो तो आलसी प्रमादी मत बैठो, कुरुवन्न वेह कर्माणि, अर्थात अच्छे कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचे कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें कर्म तो करना ही है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। यही बात वेद में भी कही गई है, वेदोक्त कर्म करने हैं, धर्म के अनुकूल कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, गलत काम न करें। दो प्रकार के कर्म बताए हैं, एक सकाम कर्म और दूसरे निष्काम कर्म। अर्थात सकाम का मतलब है कि हम चाहते हैं बस हमारी कामना पूरी हो, कामना पूरी हो, लेकिन सकाम से ऊपर उठकर हमको निष्काम कर्म करने चाहिए। अर्थात मेरे लिए नहीं, सबके लिए हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ उसके अंदर हो, मेरा ही भला न हो, प्रत्येक व्यक्ति का भला हो। इसीलिए भगवान ने कहा, कृष्ण ने भी, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। हे अर्जुन, इस संसार के अंदर भगवान ने कहा वेद के अंदर कि सकाम कर्मों से ऊपर उठकर निष्काम कर्म कर, सबके भलाई के लिए कर्म कर। यदि ऐसा करोगे क्या होगा, एवं त्वयि नान्यथे तुस्ति। संसार के अंदर इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं, कर्म तो हमको करना ही है। देखो ना, छोटी सी चींटी होती है ना, वो भी कर्म करती है, जब तक काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या, तो हमें भी तो कर्म करने ही है। लेकिन कैसे कर्म करने हैं, अच्छे लोकोपकार के, भलाई के, सबके लिए सोचना है, तो सकामता से ऊपर उठकर निष्कामता के कर्म।

धर्म जिसमें सबका भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, किसी भी राष्ट्र का भला हो। कहते हैं एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब आप सकामता से ऊपर उठकर निष्काम भावना, यज्ञीय भावना, इदम अग्नि स्वाहा की भावना, मिनिमम फॉर सेल्फ एंड मैक्सिमम फॉर अदर्स, ये जब सोचेंगे तब जो है वो निष्काम कर्म कहते कहलाते हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं ऐ मनुष्य, संसार में जीते हुए ही कर्मों को करता रहे, लेकिन कर्माणि बहुवचन है। कैसे कर्म करने हैं जो वेद के अंदर बताएं, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो वेदों के अंदर नहीं बताएं, जो विधि और निषेध। विधि का मतलब है ये करना है और निषेध का मतलब ये नहीं करना है। इसलिए सकाम कर्मों के साथ साथ निष्काम कर्म की तरफ हम आगे बढ़ें। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, हमारा कर्म करने में अधिकार है श्रोताओं, फल तो अपने आप आएगा, फल तो पीछे पीछे चलता रहता है। इसलिए हमारा फोकस, हमारा अधिकार, कृष्ण कहते हैं कि कर्म में होना चाहिए। जितना ज़्यादा जोर कर्म, कर्तव्य कर्मों को करने में करेंगे, उतना ही फल उसके पीछे पीछे चला आता है। बहुत बहुत

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बीतुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित।

वह परब्रह्मा सब सृष्टि के भीतर और बाहर व्याप कर सबको नियम में चलाता है। ओम एक चक्रम वर्तत एक नेमि सहस्राक्षरम प्रपुरो निपश्चा अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क्वतद् बभूव। वह परब्रह्मा अपने अटूट नियम से सब जगत में व्याप कर सबसे पहले और पीछे निरंतर वर्तमान है। उसने अपने थोड़े से सामर्थ्य से यह बहुत बड़ा ब्रह्मांड रचा है और जिस कारण से वह रचता चला जाता है उसका परिमाण नहीं कर सकते। ओम पंचवाही वहत्यग्रमी अशां प्रष्टयो युक्ता अनुसं वहन्ति अयातमस्य।

परमात्मा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पांच तत्व को रचकर

संयम में चलाता है। विद्वान लोग उसको अपने भीतर जानकर प्रबल और उसे दूर समझकर निर्बल रहते हैं। ओम तिर्यक् बिलश मस ऊर्ध्व बुद्नस तस्मिन् येशो निहितं विश्वरूपं तदा सत ऋषय सप्त साकं ये अस्य गोपां महतो बभूवु। परमेश्वर ने इस विचित्र रचना की है, उसमें अद्भुत रचना वाले कान आदि तिरछे और केश ऊपर को हैं। उसमें दो कान, दो नेत्र, दो नथने और एक मुख, इन सातों के द्वारा प्राणी जान प्राप्त करके भीतर शरीर की रक्षा करता है। ओम या पुरस्ताद् युज्यते या च पश्चात् या विश्वतो युज्यते या च सर्वत यया यज्ञ प्रांतायति तां त्वा पृच्छामि कतमां सरिचा। जो परमेश्वर सृष्टि के पहले पीछे और जो सब जगत करता है, ओम वह ब्रह्मा है, उसको हम ध्यान पूर्वक जाने। ओम शांति शांति शांति।

हे परमेश्वर, आप अन्न में विद्यमान हैं। आप हमें अन्न द्वारा ऊर्जा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, समस्त शक्ति आप में केंद्रित हैं। आप ही प्राण स्वरूप हैं। हम सब मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए एवं कर्म फल भोगने के लिए आप जीवन प्रदान करते हैं। हमें पाप रहित पवित्र धन प्राप्त हो, जिससे सबका कल्याण हो सके, चारों ओर उत्तम प्रजा उत्पन्न हो। जहाँ हम बसते हैं वहाँ रोग महामारी और चोर आदि दुष्ट जन न रहें। गौ आदि कल्याणकारी पशुओं की हिंसा न हो। गौ की रक्षा करने वाले पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। यजमान की संपत्ति एवं पशुओं की रक्षा हो।

हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, जैसे आप परम पवित्र हैं, उसी प्रकार यज्ञ द्वारा सारा संसार पवित्र बने। पूरे ब्रह्मांड में

पवित्रता का संचार हो। यज्ञ के द्वारा सबके मन और बुद्धि पवित्र बने। वैदिक यज्ञों के माध्यम से देवलोक और पृथ्वीलोक पवित्रता से युक्त हो। यज्ञ से वायु शुद्ध हो, शुद्ध वायु से स्वास्थ्य की

उत्तम स्वास्थ्य से ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम यज्ञ आदि परोपकार कर्मों को कभी न त्यागें। यज्ञ करने वाले याजकों को परमात्मा कभी नहीं त्यागता, परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहती है।

हम इस यज्ञ रूप पवित्र कर्म को अपने जीवन में धारण करते हैं। यज्ञ की 100 धाराओं द्वारा हम अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं तथा यज्ञ की 1000 धाराओं द्वारा हम अपने जीवन को अधिक शक्तिशाली बनाते रहेंगे। सभी सूर्य देव की किरणों से ऊर्जावान बने। 100 धाराओं वाले पवित्र यज्ञ से मन में वेद वाणी की धारा बहती रहे। वेद वाणी द्वारा मन शक्तिशाली और पवित्र बने।

0: खड़े मिलाते हैं। चलिए सुबह के ठीक 6 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठाकर उसे ले जाया गया। हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून मापदंडों के अनुरूप नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए स्टेशन चलने को कहा। हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए हिंसा से कम और उचित बल का प्रयोग किया है। सरकारी गठबंधन में शामिल रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर असहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा। याद रहे कि शुक्रवार को राष्ट्रीय सभा में बजट बहसों के समाप्त होने के बाद फाइनेंस बिल पारित कर दिया गया। 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियां, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। हमास गुट के निरस्त्रीकरण योजना पर सहमति देने के बावजूद इसराइल की तरफ से 2 सिलसिलेवार रातों के दौरान हमले किए गए। इसराइली ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि गजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए इसराइल तक कोई शांति समझौता नहीं पहुंचा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। उधर मास्करेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह पूर्व और सेंट्रल

0: प्लातू पर बारिश होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम में सुधार आएगा। देर दोपहर बाद भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं और ऊंचाई वाले जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी इन इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:53 पर सूर्यास्त होगा।
1: RM3 Radio.

हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुठला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की। सो वो अंधे और बहरे हो गए, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह उनके सब कामों को देख रहा है।

मसीह इब्ने मरियम ही तो है। हालांकि मसीह यहूद से यह कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा।

वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि उस माबूद यक्ता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अकवाल व अकायद से बाज नहीं आएंगे तो इनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों अल्लाह के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की मुआफी नहीं मांगते? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

मसीह इब्ने मरियम तो एक पैगंबर ही थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फरमा बरदार थी। दोनों इंसान थे और खाना भी खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं।

कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता है जानता है। कहो कि ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और अक्सरों को भी गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए।

जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किए जाते थे और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिला शुबा वो बुरा करते थे।

में से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखती हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है, वो ये कि अल्लाह उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। और अगर वो अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो इन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर बदकिरदार हैं।

और जब उस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाती हैं, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और ये अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो तू हमको मानने वालों में लिख ले, और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा, बस अल्लाह ने उनको इस कहने के सबब बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा उनमें रहेंगे, और नेकूकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो जहन्नमी है।

मोमिनो, जो पाकीजा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो।

अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखजा करेगा। तो उसका कफारा 10 नादारों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना, और जिसको यह मुयस्सर ना हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो।

ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ।

शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे? और अल्लाह की फरमाबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है।

जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर उन चीजों का कुछ गुना नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किया, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकुकारी की, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है।

मोमिनों, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से हासिल कर सको, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। सो जो उसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है।

0: मोमिनों, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार के जानवर न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चौपाया जिसे तुम में से दो मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे, और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने मुआफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है इंतकाम लेने वाला है।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अल-माईदा की तिलावत। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। जब अल्लाह हमारे रास्ते में रुकावट भेजता है और हमें एक ही जगह पर रोक देता है तो वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि हम वो नहीं देख सकते जो वो देख सकता है, इसलिए ताखीर पर अपने नसीब को या किसी को भी उसका ज़िम्मेदार ना ठहराएं, बल्कि शुक्र अदा करें। क्या जाने आगे कौन सी आफत हादसा हमारा इंतज़ार कर रही थी जिससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज कर लिया। खालिक मालिक जानता है कि किस वक्त और कहां तक हमारा सफ़र करना बेहतर है। बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
0: को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है।
1: गुनाह का इलाज। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक लंबी हदीस में रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को गुनाह करने से बचाओ, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको तुम्हारी बीमारी और दवा बतला दूं? सुन लो, बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा अस्तग़फ़ार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रज़ियल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसका कोई गुनाह ही ना था।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम 10 आदमी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फरमाने लगे, चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि तुम लोग उनको पाओ जब किसी कौम में, और वो चीज़ें ये हैं, बेहयाई के अफ़ाल ऐलान होने लगेंगे, वो ताउन में मुब्तला होगी और ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला गिरफ़्तार होगी जो उनके बड़ों के वक्त में कभी नहीं हुई। और जब कोई कौम नापने तोलने में कमी करेगी, कहत और तंगी और जुल्म हुक्काम में मुब्तला होगी। और नहीं बंद किया किसी कौम ने ज़कात को, मगर बंद किया जाएगा उससे बारान रहमत, अगर बहाइम ना होते तो कभी उस पर बारिश ना होगी। और नहीं अहद शिकनी की किसी कौम ने, मगर मुसल्लत फरमा देगा अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन को, गैर कौम से पस बजबरन ले लेंगे वो उनके अम्वाल को। बहावाला इब्ने माजा शरीफ।

मोहतरम सामीन, ईमान जब दुरुस्त होता है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातों में सच्चा समझे और उनको मान ले, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात में भी शक करना, उसको झुठलाना या उसमें ऐब निकालना या उसके साथ मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है। उम्र भर कोई कैसा ही भला बुरा हो, मगर जिस हालत पर खात्मा होता है उसी के मवाफिक जजा और सज़ा होती है। ऐ पाक परवरदिगार, हमारा खात्मा ईमान पर करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को दिया।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चालू करी तो होता अपना संगीतमय कार्यक्रम या पुढील रोमांटिक गाने आने इन द रोमांटिक वॉइसेस ऑफ स्वप्निल मांदोरकर व नेहा राजपाल तू जिथे मैं तिथे टेकन फ्रॉम द मूवी फोटोग्राफी आसमान क्या या सुंदर

गीता पनेका थोटा ऋषिक श्रोत्यानु संगीता को पालकर व सरिता यादव घांचा सुरीला वजात सकाल बीच या कार्यक्रम के लिए वेलची भेट मंजे द टाइटल ट्रैक टिकन फ्रॉम द एल्बम अशी ही अदला बदली इन द वर्सेस ऑफ सचिन पिलगांवकर व

शिखंड मंडलम।

0: RM3 Radio. Radio.
1: गुजराती कार्यक्रम चाली रहे छा वो मारी

0: हर हर महादेव सभी भक्तों को नमस्कार और प्रणाम। मैं हूं आपके साथ पूनम। आप जुड़े हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ शो भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज है सावन का पहला सोमवार, यानी कि सावन का मतलब महादेव का महीना। वो महीना जब महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज का पूरा शो जो हमने रखा है प्रभु महादेव के नाम पे रखा है। उनका परिवार, उनके भक्त, जब वो खुद धरती पर आए और सावन में उनकी भक्ति कैसे करें। भक्तों, अगर आज मन में एक बार भी आपके मुख से निकलता है हर हर महादेव, तो समझो सावन शुरू हो गया। तो आप सब बोलिए हर हर महादेव।
1: RM3 Radio.

भक्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं। दुनिया में बहुत से परिवार हैं, लेकिन महादेव का परिवार सबसे अनोखा है। एक तरफ माँ पार्वती, जो अति सुंदर, कहते हैं विश्व में उनसे सुंदर कोई नहीं, इतनी कोमल, पर उनके शरीर से ज्वाला निकलती रहती है क्योंकि वो माँ दुर्गा है। और दूसरी तरफ हमारे महादेव, भस्म लगाए जटाओं में गंगा, गले में सांप, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं पर फिर भी एक हैं। बेटा गणपति हाथी के सिर वाला, बेटा कार्तिकेय मोर पर सवार, साथ में नंदी।

एक ऐसा बैल जो सबसे पहला उनका भक्त बना। भक्तों, महादेव का परिवार ये हमें सिखाता है कि परिवार में सब अलग हो सकते हैं, रंग से अलग हो सकते हैं, स्वभाव से अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार एक हो

बीड जिले के परली गांव को गरिमा प्रदान करने वाले श्री वैद्यनाथ जी ही हैं। श्री वैद्यनाथ को बैजनाथ के नाम से भी भक्तजन जानते हैं। इस स्थान को जागृत काशी माना जाता है। जो व्यक्ति यहां की परिक्रमा कर लेता है उसे काशी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पुण्य उसे यहीं मिल जाता है। क्षीर सागर से निकले अमृत और धन्वंतरी रूपी रत्नों को राक्षसों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने पिंडी में ही छिपा लिया था। राक्षसों के छूने पर पिंडी आग उगलती थी और भक्तों के छूने पर अमृत बरसाती थी। इसीलिए यहां पर पिंडी को छूकर दर्शन करने की प्रथा है। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था उस समय श्री गणपति ने ही बैजू ग्वाले का रूप धारण कर रावण से बड़ी चतुराई पूर्वक लिंग जमीन पर रखवा लिया। एक बार जमीन पर रख देने के बाद उसे उठाना असंभव था। वो रावण से भी हिलाए ना हिला, बैजू के कारण ही बैजनाथ धाम प्रचलित हो गया। भोले शंकर भला बुरा कुछ नहीं देखते, बस भगत को वरदान दे दे।

भक्तों 11:09 हो चुके हैं। अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे करते रहिए, परंतु हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपको ताकत देने वाला है, भक्ति को और थोड़ा सा ऊपर करने वाला है। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम भक्ति में शक्ति RM3 रेडियो मनोरंजन पर। भक्त महादेव के भक्तों में एक बात बहुत ही एक जैसी है, सब टूटे हुए होते हैं और महादेव ने सबको एक साथ मिलकर जोड़ दिया होता है। जैसे नंदी बाबा जो हैं, हमारे शिवनाथ ऋषि के पुत्र हैं, जिसने बचपन में ही महादेव को अपना सब कुछ मान लिया। आज भी नंदी मंदिर का पहरा देते हैं। मार्कंडे जी 16 साल की उम्र में यमराज जी लेने आए, मृत्यु बिल्कुल सामने थी, पर मार्कंडे ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव ने यमराज जी को रोक दिया और कहा, तुम क्या जानते हो कि मैंने इसको कहा है कि इतने साल और मेरा एक दिन ना जाने कितने लाखों साल का होता है, तो तुम आना ना जाने कितने करोड़ों साल के बाद, क्योंकि मेरा एक दिन और मेरा एक साल इतने सालों का होता है। तो वो भी चले गए। कन्नप्पा एक ऐसे साधारण से शिकारी जिसने शिवलिंग पर पानी की जगह अपने मुंह से जल दिया और भोग में जो खाना मिला वही चढ़ा दिया, वो मांस था, और महादेव ने सिर्फ ये देखा कि उसने अपनी आँखों को दे दिया, अपने मुख से जल दे दिया और अपने जो उसके लिए खाना था उसने वो पूरा खाना मुझे दे दिया, चाहे

0: ले ही वो मास्क क्यों ना था। उन्होंने कहा कि ऐसे ही तो भक्त होने चाहिए, परमात्मा से जुड़े हुए और बस परमात्मा को ही सब कुछ मानने वाले। पर महादेव ने सबसे बड़ा जो भक्त हुआ वो कहते हैं रावण हुए, और कहते हैं महादेव को चाहिए सिर्फ प्यार, पोथी नहीं, सच्चाई, सोना नहीं, जो दिल से आए वही महादेव तक पहुंचता है। चाहे आप जैसे भी हो, आप बस महादेव के साथ हाथ सामने हाथ जोड़कर बस बैठ जाइए और महादेव आपके साथ जुड़ जाएंगे।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, विष्णु जी के 10 अवतार हमें पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं महादेव भी धरती पर आए थे और उनका पहला रूप था दक्षिणा मूर्ति। एक युवा शिव वृक्ष के नीचे बैठे और 4 बूढ़े ऋषि उनसे ज्ञान सीख रहे हैं। भक्तों, ये कितना सुंदर दृश्य है ना, बूढ़े गुरु और जवान शिष्य। लेकिन यहाँ बात उल्टी थी, जवान गुरु और बूढ़े शिष्य। महादेव कह रहे थे ज्ञान की कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं। दूसरा रूप लकुलीश गुजरात में एक मृत शरीर में प्रवेश करके शिव ने पशुपत योग का ज्ञान दिया, यह सिखाने के लिए कि मृत्यु से भी परे एक सत्य है। जब जब धरती पर अज्ञान बढ़ता है, तब तब महादेव इंसान का रूप धारण करते हैं और सबको रास्ता दिखाते हैं। वही रास्ता जब जब हम भटक जाते हैं, प्रभु परमात्मा आगे हमें इतना ही कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते पर चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे रास्ते पर चलो। कई बार हमें अपने ऊपर कहते हैं ना कि अंधा विश्वास हो जाता है कि सब कुछ जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं और कोई शक्ति नहीं। पर कभी कभी जब परमात्मा वो शक्ति एहसास दिलाते हैं कि जो तुमने किया वो गलत हो गया, फिर कैसे हो गया, जब तुम खुद कर रहे थे तो कैसे गलत तो नहीं हो सकता था। पर परमात्मा यही कहते हैं कि एक दिन देखना, जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, जो मैंने तुम्हें बताया है उसके ऊपर चलोगे, तो बिल्कुल मेरे पास ही पहुँचोगे।
1: RM3 Radio.

0: 11:24 हो चुके हैं भक्तों, सावन के महीने में महादेव की भक्ति के लिए कुछ खास नहीं चाहिए। उनको ना सोना चाहिए, ना बड़ा मंदिर चाहिए, ना लंबे लंबे मंत्र चाहिए। महादेव को तो सिर्फ तीन चीजें सबसे प्यारी हैं। पहला, जल। सावन में जब बारिश होती है तो वो जल महादेव को खुद ब खुद अभिषेक होता है। दूसरी तरफ बेलपत्र, तीन पत्तियां, महाविष्णु, महाब्रह्मा, महेश, एक पत्ता, तीनों का प्रतीक। तीसरी, ओम नमः शिवाय का उच्चारण। ये पांच शब्द पांच तत्वों का प्रतीक है। नमः मतलब मिट्टी, शी मतलब जल, वा मतलब अग्नि, य मतलब वायु और ओम मतलब आकाश। जब ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो पूरी सृष्टि को प्रणाम होता है। यही सावन की सबसे बड़ी भक्ति है। मैं हूँ आपके साथ पूनम, RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, भक्ति में दम रखिए और चलते रहिए। कहीं ना कहीं जहाँ वो ईश्वर लेकर जाएगा, हमेशा वो अपने बच्चों को सही रास्ता और सही जगह ही लेके जाता है। सभी को प्रणाम। ये आखिरी भजन आप सबके लिए और हम इतना ही कहेंगे, हर हर महादेव।
1: RM3 रेडियो।

Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.

忍耐着呵欠，完全为见你一面，寻得到尘封小店。

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। सेल्विन नायडू को शागोसियन लोगों के इतिहास पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री लोडिसे द पर्पल को पूरा करने में 3 साल लगे हैं, जहां एक तरफ इसकी कहानी शागोस द्वीप समूह सेशेल्स और मॉरिशस में पाई गई, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कानूनी लड़ाई इन सीमाओं से बहुत दूर लड़ी गई। इसलिए निर्माता को उन वकीलों को ढूंढना पड़ा जो अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों में थे, जिन्होंने शागोसवासियों के मुद्दे का समर्थन किया।

किया था। इसके लिए उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उनके बयानों को फिल्म में कैद करने का यही एकमात्र तरीका था। इस हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की जा रही है। Casse collectif, réparation, avancement, créole, cardinal Jean Mangeau s'installe qui s'attend le garbo basse et mix en gauche. Aujourd'hui,

0: और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित हैं स्नातक कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य गुलाम बनाए गए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीकों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियों, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तमिल समुदाय में आदि का पावन महीना श्रद्धा, परंपरा और सुख समृद्धि की कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। आज इसके 18वें दिन को आदि पेरुक्कु मनाया जा रहा है। विवाहित महिलाएं नदी के तट पर एकत्र होकर विशेष पूजा विधियों में भाग लेती हैं और आज के दिन वे अपने विवाह के प्रतीक यानी अपनी ताली का धागा बदलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के फैसले को रद्द करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान और अमेरिका के अन्य साथी देशों से मांगें मिली हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। अवेन्यू कास्केट पाल्मा का थोबोन में साठ साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री रविकांत अजोदा जो फुंदन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज कल दिन के ढाई बजे इनके मकान अवेन्यू कास्केट पाल्मा का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो आज 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर कहिए कहां से आना हुआ भाई, हम तो रेडियो मस्ती से निकलकर रेडियो मनोरंजन में आ गए। आप मुझे ये बताइए कि आप कहां से हमें सुन रही हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो मनोरंजन RM3 पर, और यहां पर मैं आई हूं आपका साथ देने के लिए आप ही के प्रोग्राम में जो है सुहाना सफर यानी पुराने गीतों का प्रोग्राम, और जिसमें परी हमारे साथ जुड़ गई हैं, शेला, विमी, यलेश, संदिल, सुकन, सतीश, दुखी, यहां पर हमारे साथ है दीपक, दीपदयाल, अर्चना डांडा फ्रॉम न्यूजीलैंड। हाय, क्या बात है, हमारे दोस्तों आ गए। चलिए इसी के साथ विशाल को हैप्पी बर्थडे, ज्योति, रवीन, निखिल, आरती, अवनीश, प्रिया, प्रवेश और सभी फैमिली की तरफ से। वहीं पे हमारे साथ प्रवीण भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हम वेलकम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है, कैसे हैं भाई? बढ़िया होंगे, मूड भी अच्छा होगा अगर ऐसी बात है। तो चलिए खूबसूरत गीतों का ये सफ़र यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका भी मूड एकदम ठीक हो जाएगा। यहाँ पर रोहन का मैसेज आया है, वो भी 1-2-3 करते हुए आते हैं। चलो रोहन, ठीक है, हाँ कोच है ना, डांस करना सिखाते हैं, तो 1-2-3 करते हुए आए हैं। और उन्होंने कहा है कि एक गाना प्लीज़ गोपी के नाम चला दीजिएगा। मुझे तो पहले लगा था कि ये गोपी बहू है, लेकिन ये गोपी बहू नहीं है। बिल्कुल गोपी बहू नहीं है। तो चलिए गोपी भाई के लिए, आपके भाई रोहन, उनके लिए। एंड डीवा गर्ल, हाय, गुड मॉर्निंग टू यू माय स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच। और उषा कहती हैं, यहाँ पर परी कहती हैं, हाँ मैं आया तेरे लिए। भाई मेरे लिए सब आते हैं, थैंक यू। हाँ
1: RM3 रेडियो।
0: यार हुआ एक हार हुआ, और यहाँ पर मिस्टर नुरैदीन हमारे साथ ना जुड़े हो ही नहीं सकता। हाय वेदना, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और चलिए इसी के साथ ये नेक्स्ट गाना, बाकी के डेडिकेशंस थोड़ी देर में।

0: सुहाना सफर
1: एक ऐसा सफर जहां पर रास्ता मंजिल दिखाई दे रहे हमें अपनी मंजिल खुद ब खुद मिल ही जाती है। तो चलिए इस सफर में हम सफर बनने के लिए थैंक यू सो मच। यहां पर हमारे साथ हैं संजय बुधवा, श्री नराम जो निशर्मिला सेवक, सरस्वती राम राम आपको, रुखसार हंसवी, अवीना सन, और हमारे साथ है इतने सारे लोग, क्या बात है जी। श्रीन थैंक यू आपको कहना चाहूंगी, और हाँ गोपी के लिए गाना हम चला देंगे। थैंक यू अर्चना फॉर लविंग दिस सॉन्ग। श्रीन आई लव यू टू। सरस्वती नेक्स्ट गाना आपके लिए, एंड परी के लिए भी जो साथ दे रही हैं, और नील हमारे साथ हैं। हाय नील, कैसे हो? थैंक यू। एंड उषा बानु, कैसे हो आप? आपके लिए गाना होगा मालिनी बिसराम जी, नमस्कार। एंड साथ ही साथ चलो यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं हमारी एंजल के लिए गाना। विजय जी नेपाल से, हेलो ब्रदर, नहीं पुराने गाने, हाँ जी भैया जी कैसे हो? चलो गाना आपके लिए। एंड सलाम आपको रजिया खान, क्या बात है। सुनन आप भी साथ में आ गए।

एंड अबीना ने भी बहुत सारा प्यार भेजा है, मैं उनको भी बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर एक के बड़े दिनों के बाद आए हैं। हाँ चलो, लव यू उष्णा बानो, और साथ में यहाँ पर प्रिया तलजा हमारे साथ है, कहती है क्विक हेलो, क्विक हेलो यानी कि हेलो बोल के भाग गई, लेकिन गाने सुन रही हैं। सुप्रिया आपके लिए नेक्स्ट गाना होगा, और रुखसार आपको बहुत बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच नील फॉर ज्वाइनिंग अस। रेशमा चलो आप भी आ गई, मेरी ग्रेस हाय, एंड यहाँ पर शारदा लखनऊ, सैंडी हाय सैंडी हाउ आर यू। चलो जी अभी सलीमा कैसे हो, सलीमा मुझे आपा बुलाती है आपा यानी बड़ी बहन, थैंक यू सो मच फॉर द लव फॉर द रिस्पेक्ट एंड आई लव यू टू। अर्चना जी आपके लिए भी बहुत सारा प्यार है, एंड गाना कौन सा होगा, वैसे इस गाने की फरमाइश आई थी, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इस गाने की फरमाइश आई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं ये गाना चलाऊंगी, किसने मांगा था मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप कि जिसने भी मांगा उस गाने को सुनकर खुश हो गई होंगी। चलिए इधर माधुरी आ गई हैं, और महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका, नमस्कार नंदिता।

0: क्या खूबसूरत गाना है ये गाना निकाह फंसलिया गया है
1: सुहाना सफर
0: चलिए जी देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला गाना होगा उसे हमने अप्रैल फूल से लिया है और हम यहाँ पर किसी को फूल नहीं कर रहे हैं बस हम एक दूसरे को प्यार ही भेज रहे हैं तो यहाँ पर गाना होगा तन्वी सलीमा मनीष और नेक्स्ट गाना होगा हस्बैंड के लिए साथ में कज़न अनिकेत वानी सिस्टर इन लॉ अभिषेक के नाम हमारे साथ हैं शर्मी रेशमा राम की सुन रच्छमसी को बिन जी थैंक यू सो मच आपके इस प्यार और आशीर्वाद के लिए सूबी सुनीता विक्रम सूरजबली वरुण रामधारी एंड नेक्स्ट गाना होगा लवली कृष्णा और दादी सरोज के नाम कविता अनु शर्मिला नरसिमुलु देविका जोईसुरी अंजू पलटू और कल्याणी हरी साथ में तब्रेज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर नेक्स्ट गाना सलीमा कहती हैं कि आपने तो हमें बचपन की याद दिला दी वही तो हम करने आते हैं बचपन की याद दिलाते हैं और बस आप लोगों को प्यार भेजते हैं साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए कहते हैं कि ओके ज़बरदस्त गाना चला देना ठीक है हम अभी चलाएंगे थोड़ी देर में अभी शायद विक्रम जी मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया लेकिन गाना आपके लिए ठीक है एंड यहाँ पर हमारे साथ कौन है सनशाइन हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स आई डू अनसुया हाय गाना जाएगा आपके हस्बैंड प्रीतम के लिए एंड कहते हैं कि हम लोग हैं इन डबलिन आइलैंड में हैं हम आपको सुन रहे हैं सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपके हस्बैंड प्रीतम को अनसुया जी और यहाँ पर राधे को राधा को हम कहेंगे राधे राधे है ना एंड हमारे साथ हैं हमारे दोस्त निवेन साथ दे रहे हैं हाय नमस्ते कैसे हो चलो जी यहाँ पर आप लोगों को शायद हमारे पुराने गाने पसंद आ रहे होंगे सरोज थैंक यू सो मच एंड सरोज ने दो दो सरोज हैं एक सरोज हमारे साथ जुड़ी हुई है मॉरिशस से दूसरी सरोज कहाँ से है बता दूँ स्कॉटलैंड से एंड यहाँ पर गाना होगा सारा बानो के लिए और यहाँ पर लवली वाइफ हेमा पीर्ति के लिए विक्रम जी ने गाना मांगा है तो चलिए गाना सूरजबरी फैमिली के नाम भी डेडिकेट कर देते हैं क्या ख्याल है ठीक है एंड साथ में यहाँ गाना जाएगा आपके नाम दुर्गा कैसे हो जी आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में और गाना होगा लैला मुदारन के नाम भी
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सुहाना सफर।
1: वेलकम, स्वागत है आपका। सुहाना सफर प्रोग्राम है हमारा, और इस सुहाने सफर में हम सफर बनने हैं हमारे दोस्त विशाल, रोशन, इंदु, नेहा नीलानी, सुचिता भागीरथी, कहते हैं हम वॉचिंग एंड लिसनिंग फ्रॉम लंदन, वी हैव मारिया फ्रॉम फ्रांस, और साथ में हमारे हैं यहाँ पर ओके दिल जली फिल्म का गाना तो अभी जो ढूंढ रहे हो रोशन जी, वो तो है नहीं, कोशिश करती हूँ। हमारे साथ बबीता हैं, और हमारे साथ एक और है, आपने लिखा है नाम, लेकिन आपका नाम मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस होता है, टूटू, इज इट टूटू? ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा करते हैं, अभी आज मंडे है, तो जो मंडे वाली फीलिंग होती है ना, वो जगाने का टाइम आ गया है। मैंने एक गाना सुना था कल, और मेरा बना मन था कि ये गाना मैं आपको सुनाऊं। ये गाना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में है, और गाना है फ्रॉम द मूवी इंद्रजीत।

ब्यूटीफुल गाना है, आपको जरूर पसंद आया होगा। आई नो आप झूम रहे होगे इस गाने के साथ जैसे कि मैं झूम रही हूँ स्टूडियो में अपने सभी लिसनर्स के साथ जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ सुहाना सफर है, सफर को सुहाना बनाते हैं। सुहाना सफर। नेक्स्ट हमारा जो गाना है वो इंदिरा रामदुनिया के नाम डेडिकेट करेंगे, साथ में ये गाना जाएगा फैजल के लिए, लिस्टिंग टू रेडियो मनोरंजन इन फ्रांस। ओके, सो उन्होंने हमारे लिए ब्यूटीफुल पिक्चर भेजा है एंड वी कैन सी सम ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो लवली, थैंक यू फैजल। एंड यस, चलिए यहाँ पर गाना होगा प्रतिमा चेस्टा रैना के नाम, सनीचर फैमिली के लिए, कुणाल करिश्मा कीर्ति जनव और गंगाराम फैमिली की तरफ से, बेबो विमला वर्मा, हाय यू लिस्टिंग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ओह माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया में भी अब हमारे बहुत सारे लिसनर्स हो गए हैं। थैंक यू विमला, थैंक यू सो मच। वी हैव प्रीति सिबलाल, हेलो जी कैसे हो आप, बबीता बुला की नमस्ते, ज्योति चमन, थैंक यू। एंड ये गाना प्रीति सिबलाल

मांग रहे हैं विक्की के लिए. ओके एंड साथ में ये गाना जाएगा फॉर देवीना. हमारे साथ है रजीदा दर्शन, नमस्कार आपको. संध्या नमस्ते. दिशा हाय. साथ में है जॉय, गाना जाएगा उनके स्पिन यवीन के नाम. नमस्कार उत्तम, कैसे हो. और कहते हैं कि एक गाना है परी तू रहने दे तू पिटवाएगी मुझको. हाँ तो नेक्स्ट गाना होगा रजनीश प्रसाद के लिए, राम राम आपको. आप फिजी आइलैंड से सुन रहे हो, थैंक यू सो मच. फिजी आइलैंड में भी हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पर भी हम लोगों ने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है. तो फिजी वालों, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए थैंक यू सो मच. बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू. चलिए यहाँ पर जितने भी लोग फिजी से हमें सुन रहे हैं उन सबको हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे और यही गाना होगा मिली के नाम, साथ में राधा समी के नाम. किरण पुरी लिस्टिंग फ्रॉम वैंकूवर कनाडा. हेलो, आपको नींद तो नहीं आ रही ना, आपके नींद उड़ाएंगे, होश उड़ाएंगे अगले गाने के साथ, आई प्रॉमिस यू किरण जी. चलिए यहाँ पर करसी है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लॉन्ग टाइम. या लॉन्ग टाइम, आपसे पहले कोई और भी आ गया ऑस्ट्रेलिया से. यहाँ पर पूर्णिमा पुताना साथ में है, सरोज है फ्रांस से एंड अरबू हमारे साथ हैं, प्रणाम जी. और साथ में है कौन, चलिए जानेंगे. ओके, बेटी खायरा के लिए एंड बेटा प्रयान के लिए, ये है मामा क्रिस्टी निकित सिंह. और साथ में यहाँ पर गाना जाएगा हमारे उन तमाम लिसनर्स के लिए जो ड्राइव करते करते हमें सुन रहे हैं.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चांद के पास जो सितारा है वो तो तभी अच्छा लगता है ना जब वो चांद के पास होता है, लेकिन हमें हमारे सितारे बड़े अच्छे लगते हैं जो हमें बहुत प्यारे, और वो है हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े रहते हैं, रेडियो मनोरंजन और साथ में सुहाना सफ़र के साथ। तो थैंक यू सो मच, आपके होने से हमारा सुहाना सफ़र और भी सुहाना बन जाता है। हमारे कितने सारे लिसनर्स हैं हमारे साथ हैं, सरिता थापा, वी हैव राधा सामी, बबीता, मीरा लंदन से साथ दे रही हैं, प्रतिमा दुखितराम, नीला, सुल्ताना कांदाई, नंदिनी और सीधा पदारत, और साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं नेक्स्ट गाना स्वराज जो त्रियुली से है। सभी पजल फैमिली के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं और ये गाना हम नीला के नाम चला रहे हैं। हमारी तीशा हमारे साथ हैं, हेलो, और मंजुलिका भी आ गई है। माया जी आप थोड़ी जल्दी आ गई हाय पिया नमस्कार। चलिए आप लोगों को गाना बहुत अच्छा लगा जानकर, हमें भी अच्छा लगा। शोभा जी नमस्कार आपको। ऐसा करते हैं कि जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी चला देते हैं भाई, ये भी किसी की फरमाइश थी।

0: ना सफर खाना सफर।
1: वैसे जो लोग कसम खा रहे हैं उनको भला हो आपका, लेकिन जो लोग लंच ले रहे हैं उनको कहेंगे भुना पेची, क्योंकि भी लंच टाइम हो गया है। सो काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, क्योंकि वो मॉरिशस से नहीं है, वो अब्रोथ से हैं। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर पटेल ने हमें भेजा है गुड मॉर्निंग, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन हमारा तो यहाँ आफ्टरनून हो गया है। चलिए गाना जो होगा रेखा के लिए, सरिता थापा नेपाल से हमें सुन रही हैं गाइज। एंड चलिए यहाँ पर देखते हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं साथ दे रहे हैं। वी हैव दीपा, उनके पति विजय के लिए, उनकी बेटी हर्षी, सभी चतु फैमिली के नाम। और वहीं पे गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं किशन बंधु के नाम, और पोपो दवाने नंदी रवि साहब ऑफ कोर्स। राधा जी, गाना आपको इतना अच्छा लगा, चलो हमें भी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट गाना होगा फॉर दोगिन लकमाले, एंड उन्होंने गाना मांगा है उनके मामा के लिए, हु इज 81 इयर्स ओल्ड। आई थिंक शी लव्स दीज ब्यूटिफुल पुराने गाने, सो ओके नेक्स्ट फॉर हर। और प्रियक्षा हमारे साथ हैं, उनके बेटे निधार्थ के नाम, उनके हस्बैंड नीत के लिए। तो ये हैं प्रियक्षा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम है। आप तीनों के नाम इतने खूबसूरत हैं, कहाँ से चुन चुन कर लाए हो ये नाम। थैंक यू सो मच। एंड चलिए यहाँ पर मिस्टर पटेल जो है वो यूनाइटेड किंगडम से हमें सुन रहे हैं, यहाँ पर हम उनका भी वेलकम करते हैं। तो रेडियो मनोरंजन RM3 के जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, उन सभी को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे गाने इन्जॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने हमें अपना फैमिली बनाया हुआ है इस रेडियो के ज़रिए।

0: भाई जाने तो ना जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप साथ में हैं। नेक्स्ट गाना मम्मा सलमा के लिए दीना गनुवा, शैलेंद्र, इंदिरा, पूजा, देव, अनवर एंड रागिनी के नाम।
1: RM3 रेडियो।
0: चलिए इसी के साथ हम भी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और साथ में जिस भी हमारे साथ हैं, हाय हाउ आर यू। चलो तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं सभी हमारे लिसनर्स के लिए जो ड्राइव कर रहे हैं या तो फिर ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे फैजल अभी घर पे काम कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम। वाओ, ओके, यू आर सो लकी एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड मिलते हैं थोड़ी देर में समाचारों के बाद।

0: टाइम चेक, दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को खबर मिली है कि ब्लैक रिवर में शेल फ्यूल स्टेशन के पास एक पाइप से पानी का बहाव हो रहा है। जल जाया ना हो इसलिए एक तकनीकी टीम को मुरम्मत कार्यों के लिए फौरन स्थल पर भेजा गया है। CWA के मुताबिक इंटरनल पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में खामियां और खराबियां हैं, जिसमें पिछली सरकार द्वारा 2023 में 700 मिलियन रुपए निवेश किए गए थे। सांसद वेरोनिक लेगोविन का पति गुलशन गोविन आज पोर्टवी की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। आज सुने गए शुक्रवार को उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। ये शक है कि वो रेडियन टापू और मुर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। इस मामले में एक और संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया था। आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है। सभी तमिल दंपति आदि परिनत्तम पेरुकुवेजा मना रहे हैं। ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका है। इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। विदेश में इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया है। सुबह 3 बजे के करीब ये भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ। इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने आपात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है। किसी के हताहत होने

की अभी खबर नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। जानकी रोड पुतोदो विलेज में 83 साल के रिफ्रीजोल्ड श्री बाल कृष्ण चमन, श्री बाल कृष्ण चमन जो धनेश्वर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल ढाई बजे इनके बेटे सुनील चमन के घर जानकी रोड पुतोदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की

0: रात हो पोस्ट 2 पीएम रोल रूडी क्वान्यो फ्लक में 69 साल के 69 इज ओल्ड श्री विजय कुमार कासियों श्री विजय कुमार कासियों जो गुल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 3 बजे इनके घर रोल रूड क्वान्यो फ्लक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 3 पीएम ओलिया रोड नंबर 1 वाकवा में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मुनिया केदू पैदाइशी नाम मंदू की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज ढाई बजे इनकी बेटी हेमा केदू के घर ओलिया रोड नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रेमेशन टुडे एट 2 पीएम एवेन्यू कैस्केड पाल्मा कैथ्रोबोन में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री रविकांत ओजुडा जो फुंडन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल ढाई बजे के घर एवेन्यू कैस्केड पाल्मा कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रेमेशन टुमारो एट 2 पीएम शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: इसीलिए हम कहते हैं कि बादाम खाया करो और दिमाग जो है फ्रेश रहेगा, दिमाग जो है वो तेज होगा और आप कुछ भूलेंगे नहीं और भूले से भूल नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाना हम खास तौर पर ऋषि के नाम डेडिकेट करेंगे। कहते हैं आज ऑफ हूँ, घर पे हूँ, आपको सुन रहा हूँ। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सो मच। अभी बच्चों का भी तो चल रही है ना छुट्टियाँ, तो दोनों बच्चे साथ में होंगे तो उनके लिए, और अगर पत्नी जी घर पे हैं तो उनके लिए भी। नेक्स्ट होगा यशविन के नाम, मिहिका, तनवीर एंड किरण पुरी। इससे पहले कि नींद जो है उनकी आंखों में झूलने लगे, वो बेचारे इतने देर तक जागते हैं सिर्फ हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। सो किरण पुरी जी, गाना होगा आपके लिए। जी जी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी, काला राम कारीगर, आपने लिखा है डेडिकेशंस, मैं पढ़ रही हूँ, आई होप मैंने कोई गलती नहीं की। नेक्स्ट गाना अनिल आयुष के लिए, एंड हैप्पी आदि टू ऑल आवर तमिल भाई बहने। आशीष कुमार के लिए गाना होगा, वी हैव कवि उत्तम, अक्षना सुरेखा, कविता बख्तावर एंड शिवा आकाश। अर्जुन, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे आपके नाम। ये हैं संजू, संजू ने लिखा है गुड मॉर्निंग, यानी कि आप मॉरिशस से तो नहीं होंगे। ठीक है, चलो आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और साथ में सुरेखा जी का भी, सुरेखा जी के साथ यहाँ पर बाकी जो दोस्त साथ दे रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। अब गाना कौन सा होगा, चलिए ये सुनने का समय आ गया है। तो नेक्स्ट हमारा गाना है

चलिए जी, इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट गाना होगा इसे भी आप लोग जरूर पसंद करेंगे और ये भी एक काफी कमाल का गाना है। हाँ, थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कजूरी कजूरी बोलता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। संजू इटली से साथ दे रहे हैं, पूजा हमारे साथ हैं, ज्योति कोहली आपका भी स्वागत है। हस्बैंड आनंद के लिए सुरेखा जी ने बोला ऐसा गाना चलाओ कि आनंद आ जाए। तो लीजिए अगला गाना आपके लिए, वी हैव आइज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो जी, वेलकम है आपका। नौशाद कैसे हैं आप? माला जी का स्वागत करते हैं जो इस समय हमें सुनती हैं, उनका प्यार से स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। चलिए जी, गाना आपकी बहन मीनाक्षी के लिए और यहाँ पर माया जी थैंक यू, आप अभी याद कर रही हैं, गाने सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। सरोज, नेक्स्ट गाना आपके लिए। सरेश कहते हैं मेरे दोस्त सर्वेश के लिए, अभी वो एसबीआई में काम कर रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ डेडिकेट कीजिएगा। और वैदेही आपके नाम।

एक्चुअली जी बाकी जो म्यूजिक है काफी खतरनाक है और आपको पता चल ही गया होगा मैं हेलेन के बहुत बड़ी फैन हूँ, शायद आप भी होंगे, उनके गाने आपको पसंद आए होंगे। चलिए वैदेही, खतीबा मंगर और जितन दुलवा, साथ में जानवी के लिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे। माधुरी जी को बहुत मजा आ रहा है गीतों को सुनकर। एंड यहाँ पर हैप्पी आदि परको नवाज तुक्कल टू ऑल लेडीज टुडे जो अपना येलो थ्रेड चेंज कर रही है कोको की तरफ से, थैंक यू। एंड लॉट्स ऑफ लक जी, ये हैं संजू, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना सपना के लिए उनके हबी रवि, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वाइफ एवीना की तरफ से। और साथ में ये जो हमारा नेक्स्ट गाना होने वाला है स्पेशली डेडिकेट करेंगे दादी माला की तरफ से, यानी कि आजी माला की तरफ से उनकी प्यारी जानू के लिए। राधिका बाचू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर, ये है सुहाना सफर वेदिता के साथ। So Janishka, I hope you're gonna love this song. Enjoy. This is specially for you. Hey, Janu?

0: चलो भाई, गाना तो हो गया, बाकी गाने किसको हम डेडिकेट करें?
1: रात बाकी
0: हमारे साथ है अनुराधा शब्द, राधिका बाचू, कुस कुस लीना एंड मरियम।
1: बात बाकी
0: ये गाना नीस अनुषा सुब्रन रामफल के लिए, जिनका आज बर्थडे है, आतिश मामा मक्तू और साथ में पापा शर्मा की तरफ से।
1: हो जाने दो।
0: विमला पादू कहती है गाना उनकी मामा, उनकी सिस्टर जो ब्रिटानिया रहती हैं, और यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे फॉर प्रेस। हाय हाउ आर यू। और यहाँ पर ललिता चरण हमारे साथ है उनके पति देव के लिए, चलिए बजाते हैं गाना। साथ में यहाँ पर राधा सामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड साथ में यहाँ पर गाना होगा सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो कि हमारे रेडियो मनोरंजन के फैमिली

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: सुहाना सफर में हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है समीन धाराम जीत अंसुया श्याम फुलमान और दीपक बिहारी के तो मैं आपको ही देख रहा हूँ हाँ जी थैंक यू सो मच बस क्या करें हमारा मूड हमारे अंदर में जब आ जाती है ना कभी हेमा मालिनी रेखा श्रीदेवी और कौन है हेलेन सब एक ही टाइम पे आते हैं अंदर तो विवेक का हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वी हैव ललिता रुसीदा सुमी बहुत सारा प्यार आपके लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वी हैव जत साहब कैसे हो ब्रो थैंक यू सो मच दिलवंती सोनातन आपके लिए गाना होगा रिवारा थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग्स नेक्स्ट गाना अनुषा का बर्थडे है तो उनके पति जो है उनके पति आतिश उनको विशेष भेज रही हैं साथ में बेटी आर्या नव्या आथिरा एंड वी हैव मनीषा एंड दीक्षा की तरफ से विरन कुमारी साथ में है रिवारा रवि दीपक बिहारी संतोष कतवल वी हैव रोशन अंजलि करगू युधीश फूलचंद त्रिषा गोखुला उनकी नीस नहीं त्रिषा गोखुला जो है वो नानी के पास आई छुट्टी मनाने के लिए तो यहाँ पर लीना कहती है प्लीज़ मेरी नीस के लिए गाना चलाएगा दिनेश गोपी अंसुया सभी हमारे साथ हैं किरण मंगल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और सबींदा रामजीत नमस्ते आपका स्वागत है राब मूड बन गया है मस्ती करने का तो रुक नहीं सकते एक बार अगर लग गया तो लग गया सीधे दिल पे लगा है और अब तो हमें ऐसे ही जाना संगीता सुखारी नमस्ते आपका स्वागत है स्पेशली जो लोग ड्राइव कर रहे हैं ना थोड़ा सा उनका भी टेंशन कम हो जाएगा ड्राइव करते करते एंजॉय करें और आज आतिश और नेहा की वेडिंग एनिवर्सरी है उनको बहुत सारा प्यार है लालमाटी के नायक फैमिली की ओर से उनके मम्मी पापा की तरफ से और सभी की तरफ से

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: एक बार फिर सस्पेंस का म्यूजिक। लता जी के साथ आवाज मिलाने के लिए रेडी हो गए हैं रफी साहब। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन विरिता के साथ RM3। यस ऑफ कोर्स, यहां पर अहमद मुस्तफा रामचंद्र अभी भी हमारे साथ है, कहते हैं हेलो, स्टिल गोइंग स्ट्रांग। हां या ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच अनवर हमारे साथ हमारे गीतों को एंजॉय करने के लिए। और साथ ही साथ यहां पर हमारे साथ है रेखा रामा। हेलो जी, कैसे हो जी, सब ठीक? साहिल कहते हैं म्यूजिक तो मस्त है, एकदम जबरदस्त है, वो तो होना ही है क्योंकि आप लोग जो साथ में है ना। तो चलिए ये गाना आपके लिए और आपके बॉस अनिल जी के लिए भी। सुरेखा जी कहती है कि मैं आपके साथ डांस कर रही हूँ, करो करो ऐसे ही करो, डांस करो, इससे क्या होता है कि खुशी मिलती है। इंसान जब डांस करता है ना तो सारी टेंशन भूल जाता है और फिर उसके बाद वो एक ऐसे मूड में आ जाता है जहाँ पर उसको किसी की परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, बस वो खुश होता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी हमारे साथ ऐसे खुश रहो और बाकी जो टेंशन है ना बस दूर कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा टिकटॉक लाइव चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग बस आते हैं और ऐसे ही आके चले जाते हैं, कुछ लोग बस म्यूजिक चलता रहता है वो सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दो घंटे मेरे साथ बैठे रहते हैं। सो थैंक यू। यहाँ पर नेक्स्ट गाना एक्वायर्स

हम वंश के लिए दादी सीता, श्वेता और मम्मा पापा दादी जय के लिए और हमारे लिए भी थैंक यू सो मच। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। रुकैया हमारे साथ गजवी से जुड़ी हुई हैं, तो सुदन फैमिली के लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं हम।

और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए बॉम्बू से धनेश्वरन, प्यारी पत्नी सुनीता, देवदास फैमिली, लवली क्वीन आपके लिए भी।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलो जी, यहाँ पर विमला देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनके लिए हम गाना डेडिकेट करेंगे। और साथ में यहाँ पर सुरेखा कहती हैं, भाई मस्ती ही मस्ती हो रही है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम आए और मस्ती ना हो। यहाँ पर बबीता जी कहती हैं, मैं अपनी जगह से हिलती भी नहीं हूँ, कहीं भी नहीं जाती, दो घंटे चिपकी रहती हूँ, कहीं कोई गाना तो मिस ना कर दूँ, कहीं कोई बात तो मिस ना कर दूँ। थैंक यू बबीता, लव यू फॉर दिस। और यहाँ पर खूबसूरत गाने एंजॉय करिए विमला जी, थैंक यू। चलिए जी, यहाँ पर बेबो ने बहुत सारा प्यार भेजा है। नेक्स्ट गाना लीना के लिए, जिनका बर्थडे है 50 इयर्स ओल्ड टुडे। सभी फ्रेंड्स की तरफ से, सीतामणि फैमिली की तरफ से, एंजल जी कैसे हो, आपके हस्बैंड के लिए गाना होगा। ना अपना नाम लिखा है ना उनका नाम, अब मैं कैसे क्या करूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर किसी ने लिखा है, अरे बबुआ, हाँ मेरे लाल बोलना, तो मैसेज के साथ साथ अपना नाम भी तो लिख, मज़ा आ जाएगा। चलो थैंक यू सो मच यार। चलो तो यहाँ पर वैदेवी कहते हैं कि विदिता, हमें तो बीमार होना पड़ेगा दो घंटे साथ देने के लिए, तभी हमारी छुट्टी है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, बस अपने काम में ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर इखवाइयों से सुरक्षित और सुशीलता हमारे साथ हैं, थैंक यू। अनिता पैतोब, आपका भी नमस्कार, स्वागत है। नम्रता कहते हैं, हमारा गाना भी बजा दो। चलिए नेक्स्ट गाना आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट गाने के साथ अब हमें जाना भी तो पड़ेगा। वीर सिंह का स्वागत करते हैं और शशि का भी, थैंक यू सो मच। अनवर, संगीता सुखारी, वेडिंग एनिवर्सरी कृति और सिस्टर रूपा की गोवर्धन फैमिली की तरफ से विशेस है। थैंक यू रितु, हमें साथ दे रही हैं और सुन रही हैं फ्रॉम केप टाउन, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू फ्रॉम मॉरिशस ऑफ कोर्स। बर्थडे योगेश का सभी बिसेसर फैमिली की ओर से। और इसी के साथ टाइम फॉर मी कि मैं कहूँ बाय बाय, अब आपसे मुलाकात करूँगी मैं कल नहीं बल्कि वेडनेसडे को मुलाकात करूँगी इसी टाइम 12 बजे, 12 से लेकर 2 बजे तक। अपना ख्याल रखा, बाय बाय, लव यू।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाती चलिए, इस समय दिन के 2 बजे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
4: नमस्कार आदाब। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को खबर मिली है कि ब्लैक रिवर में शेल फ्यूअल स्टेशन के पास एक पाइप से पानी का बहाव हो रहा है। जल जाया ना हो इसलिए एक टेक्निकी टीम को मुरम्मत कार्यों के लिए फौरन वहां भेजा गया। CWA के मुताबिक इंटरनल पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में खामियां हैं, जिसमें पिछली सरकार द्वारा 700 मिलियन रुपए निवेश किए गए थे। जल की समस्या के चलते उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वे एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं, खासतौर पर सब्जियां उगाने वाले खेतीहर। वे कह रहे हैं कि अभी वे संचालन कर पा रहे हैं लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं, जबकि गन्ना के खेतीहरों का कहना है कि उनके उत्पादन में गिरावट नोट की गई है क्योंकि जल आपूर्ति पिछले नवम्बर महीने से कम है, इसीलिए वे लंबी अवधि के लिए एक सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। सांसद वेरोनिक लेगोविन का पति गुलशन लेगोविन आज पोर्टलुई की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। आज सुने गए शुक्रवार को उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। ये शक है कि वो रेनियन टापू और मुर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। इस मामले में एक दूसरे संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया था। आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है। सभी तमिल दंपति आदि पेदिनत्तम पेरुकुवीजा मना रहे हैं। ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका होता है। इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और विशेष प्रार्थनाएं भी करते हैं। विदेश में इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया है। सुबह 3 बजे के करीब ये भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ।

इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने कापात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। बी 40 ग्रीव लातू क्लिनिक पॉइंटू साबल में 63 साल के 63 years old श्री कृतानंद मदरा, श्री कृतानंद

0: उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM रॉयल रोड एक्वानी ऑफ लाख में 69 साल के 69 years old श्री विजय कुमार कैसियों जो गुल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज तीन बजे इनके घर रॉयल रोड एक्वानी ऑफ लाख से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio.

0: संस्कृति की बातें नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम का प्रसारण होता है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के मिले जुले सहयोग से। आज हम संस्कृति की बातें के अंतर्गत यह देखेंगे कि किस तरह से हमारी संस्कृति में सत्संग का बहुत बड़ा स्थान है। आप हमसे सहमत होंगे कि आजकल हम सब सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब सत्संग में बैठ और उठ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मास चल रहा है जिसका नाम है श्रावणी उपाकर्म मास। इस श्रावणी मास में महीने भर हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में, हर परिवार में, पूरे देश में एक चहल पहल, एक बहुत ही भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल छाया हुआ है। इस वातावरण का हमारे समाज, हमारे देश पर कैसे सकारात्मक असर पड़ता है, इस विषय पर हम बात करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे दो मेहमान हैं। एक तो है, पहली हमारी जो मेहमान है आप हैं विजेता भागी जी, नमस्कार। आप एक समाज सेविका हैं और फिर आप शिक्षण और आध्यात्म और धर्म के साथ भी काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं आप हैं पंडिता राजवंश सोलिक जी, नमस्कार पंडिता जी। आप एक वानप्रस्थी हैं और आज आप हमें श्रावणी उपाकर्म के महत्व पर, हमारे समाज में, हमारे देश में, आज के इस आधुनिक युग में इसका क्या स्थान है, इन सब पर बात करेंगी
1: जी।
0: और आज दोनों का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो विजिता जी, आप हमें ये बताइए कि सत्संग किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, धर्म में तो है ही सत्संग, लेकिन संस्कृति जो है इसका एक अभिन्न अंग है सत्संग। सत्संग का क्या अर्थ है और सत्संग की जब बात कर रहे हैं तो श्रावण मास से इसका क्या संबंध है?
1: हाँ किरण जी, सचमुच सत्संग हमारे परिवार में भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमें जानना चाहिए सत्संग शब्द का अर्थ क्या है। सत्संग शब्द दो शब्दों से बना है, एक तो है सत और संग। सत का अर्थ है सत्य, ईश्वर, धर्म, सदाचार या सज्जन पुरुष को भी सत बोलते हैं। और दूसरा है संग, संग का अर्थ है साथ या संपर्क में रहना। इस तरह सत्संग शब्द का अर्थ हुआ सत्य का साथ या सज्जन पुरुषों के संग रहना। एक प्रसिद्ध कहावत है, सत्संग से लाभ और कुसंग से हानि।
0: जी हाँ,
1: इसका अर्थ है कि जब हम सज्जनों, अच्छे व्यक्तियों जिनका आचरण अच्छा है उनके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। जबकि उल्टा कु का मतलब है बुरा, कुसंग, कुसंगति में हम पड़ जाएंगे तो जीवन असफल होगा। तो सत्संग परिवार के लिए आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के जीवन में सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषतः अभी हम आधुनिक युग में जब जी रहे हैं, चहुं ओर हम देख रहे हैं चहल पहल है और बुराई काफ़ी हद तक हमें दिखाई दे रही है। तो सज्जन लोगों के साथ रहना, धार्मिक लोगों के साथ रहना, ईश्वर के निकट रहना, यही सत्संग है। और जब इन सब के संपर्क में जब हम आएंगे तो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आत्मोन्नति होती है। आत्मोन्नति का यही आधार है सत्संग।
0: जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विजिता जी ने हमें बहुत सुंदर रूप से बताया कि सत्संग का अर्थ क्या है,

0: सत्संग में क्यों रहना चाहिए। और अब हम पंडिता जी से, सबसे पहले तो आप हमें अपना ज़रा परिचय दीजिए पंडिता जी। हमने जब आप कहा कि आप वानप्रस्थी हैं तो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि वानप्रस्थी का अर्थ क्या है। आप अपना परिचय देते हुए हमसे ज़रा श्रावणी उपाकर्म का अर्थ समझाइए संक्षेप में।
1: जी हाँ, मैं पंडिता राजवंशली कार्यसभा से जुड़ी हुई 10 वर्षों से मैं पंडिताई का कार्य करी। वैसे तो पहले से करती, लेकिन आर्य सभा की ओर से यानी कि नियुक्त हुई तो कर रही हूँ। आर्य सभा से सभी समाजों में, देश में, गांव में, सब चारों ओर ये कार्य कर रहे थे, और बच्चों का को पढ़ाना धार्मिक आदि शिक्षा के साथ। उसके बाद जब मेरा जो मैंने के रिटायरमेंट, जैसे कि बोलते हैं कि अवकाश देने का समय आया, तो अवकाश तो हर क्षेत्र में होता है, लेकिन पुरोहिताई से तो अवकाश तो नहीं लेते हैं, घर परिवारों में जाना है, करना है। तो एक हमारे, जैसे कि हमारे धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, जैसे कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वैदिक धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब मैं इस क्षेत्र में आई, वैसे तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसका पालन करूं, इस नियम का। तो समय के अनुसार मैंने सोचा कि मैं वानप्रस्थ रहूं, ताकि घर गृहस्थी के कामों से थोड़ा छूटकर बच्चों पर उसका यानी कि जिम्मेदारी डाल कर मैं समाज की सेवा करूं। तो उसके बाद मैंने ये किया, लगभग मतलब कि अभी गत वर्ष से मैंने वानप्रस्थ लिया। तो इस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज की सेवा करना, समाज की देखभाल करना, और विशेषकर मेरे गांव का जो समाज है मैं उसकी देखभाल करती हूँ। तो यहाँ पर अभी श्रावण मास चल रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा कि श्रावणी उपाकर्म की बात होती है। तो श्रावण मास जो है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष से के प्रतिपदा से आरंभ होता है और समाप्त होता है पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। तो ये मास पूरा श्रावण मास है, ये पूरा श्रावण मास है और चलता है। लेकिन जिस दिन मतलब कि पूर्णिमा होती है, उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और उस दिन को श्रावणी बोलते हैं। तो हो गया श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र और श्रावणी दिन। तो उस दिन उपाकर्म का मतलब होता है आरंभ होना। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे मॉरिशस में, हम लोग मतलब कि श्रावण मास के यानी कि कृष्ण पक्ष से ही ये यज महायज आरंभ कर देते हैं, परंतु भारत में वहाँ पर जिस समय उपाकर्म की बात होती है, जैसे पूर्णिमा की बात, उपाकर्म उस दिन से वहाँ चौमासा महायज आरंभ होता है, क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है, आगे चलकर इसको बताएंगे
0: अवश्य। तो अभी हमसे बात कर रही थी पंडिता सोलिक जी, और वे हमें श्रावणी उपाकर्म का जो संक्षेप अर्थ है वो इन्होंने हमें बताया। और अभी हम बातचीत करेंगे श्रावणी उपाकर्म की गहराई तक हम जाएंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से श्रावण मास एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है सत्संग का, जहाँ पर परिवार के साथ साथ समाज और देश भर के लोग जुटते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल एक नई प्रथा उभर कर सामने आई है, वह ये कि श्रावणी उपाकर्म में लोग कांवर लेकर गंगा तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। तो सत्संग और श्रावणी मास पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। जैसा कि शुरू में हमने कहा, यह कार्यक्रम प्रसारित होता है MBC द्वारा, लेकिन इसमें आप्रवासी घाट ट्रस्ट वन का भी सहयोग होता है। और आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति की बातें कार्यक्रम में किस तरह से सत्संग हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और आज हम श्रावण मास में हैं आजकल, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से श्रावण मास और सत्संग ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जब हम सभी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो विजेता जी, आप हमें ये बताएं कि सत्संग से व्यक्ति को क्या लाभ होता है? सिर्फ व्यक्ति को नहीं होता होगा, पूरे परिवार को, पूरे समाज को। और जब परिवार और समाज प्रगति करता है तो बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि देश भी आगे बढ़ता है, विश्व आगे बढ़ता है।
2: ये सही आपने कहा है। हाँ, सत्संग, जब हम किसी सज्जन के संपर्क में रहते हैं, उनकी वाणी से हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मूल्यवान विचार हमारे सामने वो प्रकट करता है, तो हमारे मन की शुद्धि होती है। न केवल मन, लेकिन कर्म की भी शुद्धि होती है। कर्म के साथ साथ हमारे जो कटु वाणी होती है, वो कटु वाणी भी बदल जाती है, और वचन की भी हमारी शुद्धि होती है। इसके अलावा हमारा ज्ञान बढ़ता है। अगर मैं अज्ञानता के रास्ते में चल रही थी तो विद्वान विदुषी के संपर्क में रहकर मेरा ज्ञान बढ़ता है और मुझ में विवेक उत्पन्न होता है। साथ ही सत्संग से जो बुरा संस्कार अगर होता है मुझ में या हुआ होगा, तो बुरे संस्कार मिट जाते हैं

0: और अच्छे संस्कार मुझ में पनपते हैं। इसके अलावा दुर्व्यसन भी दूर होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं सत्संग से लाभ करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हमारे गांव में या देश में या कहीं पर सामाजिक कार्यों में कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके संपर्क में रहना, उनसे जाकर भेंट करना या उस सत्संग का एक भाग हमें बनना है और उनके अच्छे विचारों को हम में डालना ताकि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े। क्योंकि कभी कभी हम भटक जाते हैं, अभी नौजवान लोग या वयस्क लोग भी बहुत भटक जाते हैं, उनमें विवेक कम दिखाई देता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और सत्संग से तो धैर्य भी बढ़ता है।
1: ज़रूर, और आजकल हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोगों को सत्संग के लिए, जिसको हम सत्संग कहते हैं आजकल, इसको अवेकनिंग कहते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि कितने सारे पाश्चात्य स्पिरिचुअल मास्टर्स उभर कर सामने आए हैं, जो कि अगर देखें तो वो पूर्वी ज्ञान जो है उसको वो अंग्रेजी में बांटते हैं, सरल शब्दों में बांटते हैं, और सुबह शाम लोग इसको सुनकर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना चाहते हैं, एक शांति लाना चाहते हैं। लेकिन अभी श्रावण मास जो है, यह एक अवसर है जब लोग साक्षात्कार कर सकते हैं पुरोहितों का, पंडितों का, और ऐसे सज्जनों का जो कि एक ही मार्ग, एक ही दिशा में जाना चाहते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं।
0: आध्यात्म की ओर, अभी जैसे हमने कहा है आधुनिक जीवन हम जी रहे हैं लेकिन आध्यात्म की ओर बहुत कम लोग जा रहे हैं। बहुत हमारे जो नवयुवक अभी हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते हैं लेकिन आध्यात्मिकता उनमें बहुत कम दिखाई देती है। इसलिए हम परिवार से मांग करेंगे, हमारे जितने भी श्रोता अभी या दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मांग करेंगे कि अपने बच्चों को सत्संग में लाएं, क्योंकि सत्संग से बहुत लाभ होता है। पीयर ग्रुप का प्रभाव जब पड़ता है तो माता पिता निराश हो जाते हैं,
1: असहाय भी हो जाते हैं।
0: असहाय, हाँ, बोलते हैं कि हम बच्चों को सब कुछ देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी बच्चे भटक रहे हैं, पदभ्रष्ट हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी सत्संग में अवश्य जाना चाहिए क्योंकि हम भी सत्संगी लोग हैं। सत्संग में रह कर ही हमारा आज हमारा जीवन सफल हुआ है और निराशा हमें बहुत कम दिखाई देती है।
1: और अगर कोई मुश्किल भी सामने आ जाए जीवन में तो उसका भी सामना करने के लिए आपको शक्ति की ज़रूरत होती है।
0: यही हमने कहा है आत्मविश्वास। कुछ लोगों में आत्मविश्वास कम दिखाई देता है। जब ऐसे लोगों के संपर्क में, आचार्यगण पंडिता जी के संपर्क में हम आएंगे तो वो आत्मविश्वास बढ़ता है और धैर्यवान भी हम बन जाते हैं।
1: ज़रूर, और विजेता जी ने संक्षेप में यही कहा कि जैसा संग वैसा रंग। पंडिता जी, आप हमें ज़रा ये बताइए कि ये जो मास है, अभी विजेता जी ने कहा कि पुरोहितों, पंडितों और सज्जनों के संपर्क में आना चाहिए, तो हमें बताइए कि किस तरह से यह जो मास चल रहा है, महीना चल रहा है श्रावण का, यह स्वाध्याय का एक अवसर होता है।
2: जी हाँ, कैसे जीवन में जो हम सब लोगों का स्वाध्याय बहुत, मतलब कि अपने आप को दिखना,
1: सेल्फ एनालिसिस
2: होते हैं, स्वाध्याय यानी कि अपने आप को पढ़ना, अपने आप को दिखना
1: और अपने आप को समझना।
2: तो यहाँ पर ये मास में विशेषकर इस बात पर महत्व दी गई है। और जैसे कि हमारे पूर्वज भारत से आए हैं तो सभी जो परंपराएं, जो ही पर्व हैं वहाँ से निकली हुई है। तो परंपरा के अनुसार, जैसे हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार चार वर्ण की बात मैंने कही थी, तो ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य जब एक बच्चा जो है, एक बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है तो उसका पूरा जीवन स्वाध्याय में, पढ़ाई लिखाई में जाना चाहिए, गुजरना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े पितरों ने इस बात को रखा है। तो जब नियम के साथ चलता था तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन अभी क्या है, वो स्वाध्याय के विषय में थोड़ा आलस्यपन आ गया, प्रमाद जिसे कहते हैं। तो क्या होता है कि स्वाध्याय, वो पढ़ाई तो होती है परंतु अपने आप को जानना, अपने आप को, अपने धर्म संस्कृति को जानना, ये आध्यात्मिकता की ओर जाना, ये बहुत कम हो गया है। तो ब्रह्मचर्य में केवल भौतिकता आ गई है
1: जी।
2: जब भौतिकता आ गई है तो पूरा जीवन जो है बिगड़ जाता है,
1: क्योंकि ब्रह्मचारी ही वही वो
2: नींव होती है ना,
1: वो आधार होता है।

0: होता है हम। तो जब ब्रह्मचारी का ही जीवन जो है, कहा ना बचपन खेल में खोया, तो क्या हुआ कि बचपन को हमने खिलवाड़ समझकर छोड़ दिया। तो सोचा कि बड़ा होगा तो समझेगा। तो जब आपने पेड़ को टेढ़ा बो दिया तो उसमें आपने धार्मिकता संस्कृति अपनी डाली ही नहीं, तो वो टेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा बो गया हो गया तो अब क्या हुआ, अब आप उसको सीधा करना चाहते हैं तो बहुत कठिन होता है। तभी आज का हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी को तैयार नहीं किया गया है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। बस उसने चलते चलते वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया। जब वहाँ की कठिनाइयाँ मुश्किलें आना शुरू होती हैं तो वह घबरा जाता है, सामना नहीं कर पाता है। इसीलिए तलाक की बात, जो डाइवोर्स की बात होती है, जो हमारी धर्म संस्कृति में है ही नहीं, वो बहुत बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा स्वाध्याय करो। जब ब्रह्मचारी स्वाध्याय करता है तो गृहस्थ भी स्वाध्याय में प्रमाद न करे, ये बताया गया है। गृहस्थ को भी गृहस्थी का संभालते हुए, धन कमाते हुए स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना लिखना धर्म की बातें, जैसे हमारी बहन जी अभी ने कहा, विजेता जी ने, सत्संग में जाना चाहिए। भर सप्ताह काम करते हैं, कम से कम रविवार का दिन 1 घंटे के लिए सत्संग में जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, तब वहां जाकर आपको वो मतलब धार्मिक जो है सत्संग जो है वो आपको मिलेगा, तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह से लेकर चलेंगे। तो ये मुख्य जो है मान लें कि ये ब्रह्मचर्य से आरंभ होता है, फिर गृहस्थ में भी स्वाध्याय, फिर जैसे अभी आपने कहा वानप्रस्थ। तो जब आपकी जिम्मेदारी गृहस्थ से अच्छी तरह से आपने संभाल ली, बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह कर दिया, उनको सही दिशा दे दी, तब आप वानप्रस्थ बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर आप गृहस्थ में रहकर उन बच्चों के साथ रहेंगे तो असुविधा होगी, क्योंकि सभी लोग, जैसे आप जब गृहस्थ में थे तो आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ कोई मतलब कि हर बार आपके कार्य में हस्तक्षेप करे ना, तो उसी प्रकार बच्चों को भी उनकी जिम्मेदारी अगर आपने ठीक से संभाल ली तो आप स्वाध्याय, आपका काम जो होता है वानप्रस्थी का केवल स्वाध्याय, धर्म की रक्षा करना और जो कुछ आपने सीखा दूसरों को बांटना, तब जाकर वो संन्यास जो है चौथा आश्रम पर आता है। तब उस समय ये जो सब कुछ से छूटकर बस केवल स्वाध्याय और यज करना, ये होता है 4 प्रकार से।
1: जरूर। और अभी हम जब सत्संग की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा सत्संग में जाना चाहिए। आजकल जैसा कि मैंने कहा, लोग इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं, फोन पर रहते हैं, सारे माध्यम आ चुके हैं फोन पर। अगर आजकल आप सत्संग भी पाना चाहें तो फोन पर ही वो उसको सुनते रहते हैं, तो क्या अंतर है जब आप अपने फोन पर ज्ञान की बातें सुनते हैं और सत्संग में जाते हैं, सामाजिक जुटाव में बैठते हैं, तो इसका क्या अर्थ है?
2: हाँ किरण जी, जब फेस टू फेस होते हैं और उस विद्वान या विदुषी के निकट होते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। जबकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम घर बैठे या पलंग पर रहकर हम देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये उतना प्रभावित नहीं लगता है। जबकि उस व्यक्ति के संपर्क में, जैसे हम हिंदू लोग कैसे हम सत्संग में भाग लेते हैं, हम फर्श पर आसन ग्रहण करते हैं, तो आसन ग्रहण करना एक योग साधना है, एक तरह से हम एक साधना कर रहे हैं। सुबह सवेरे प्रातः काल स्नान करके हम जाते हैं, ये भी एक त्याग है। अब जब मर्जी,
1: त्याग है और एक अनुशासन,
2: एक अनुशासन भी है। और अपनी पोशाक में जाना
1: जी,
2: अपनी पोशाक में जाकर सत्संग में भाग लेना, शाकाहारी भोजन ग्रहण करके सत्संग में भाग लेना, ये सब त्याग है और आवश्यक है, ये चरित्र निर्माण पर प्रभाव करता है। जबकि जैसे आप बोल रहे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, नई पीढ़ी वाले मोबाइल से ही किसी विद्वान या विदुषी को सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन पोशाक में न रहकर जो ग्रहण करना चाहिए वो नहीं किया है, और पलंग पर लेते लेते जब सुन रहे हैं, ये तो संस्कार नहीं है हमारा
1: जी। और फिर ये भी बात है कि जो ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे सत्संग में वो अलग होती है,
2: वो वाइब्स अलग है
1: जी। हाँ, और आपके साथ एक कुटुंब होता है
2: जी,
1: और फिर वहाँ पर जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोलता, वहाँ पर एक पूरा समुदाय बोलता है, तो वो जो ध्वनि है वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, वो अलग ही होता है, उसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे फोन पर या फिर टीवी देखते
2: जी। और विचारों का आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शन। हाँ। जैसे अभी हमारे देश में 3-4 अभी श्रावण मास में है, 3-4 विद्वान आए हैं भारत से, जब इंटरेक्शन की

0: वो कक्षा होती है वो अलग होता है जी। हो सकता है कि किसी ने गलत उत्तर दे दिया है तो तुरंत वो विद्वान उसको सुधारता है, जबकि घर बैठे हम ऑनलाइन या इस तरह से हम प्रवचन सुनते हैं तो इंटरेक्शन की का समय ही नहीं मिलता है।
1: जी हाँ, और फिर बहुत सारे मतलब कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं बहुत, जहाँ पर गुरु आपसे कहते हैं कि जब गुरु आपसे बात कर रहा है, चाहे वो पंडित या पुरोहित हो या कोई भी धार्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति, तो फिर आँखों से आँखों का जो साक्षात्कार होता है, जो दृष्टि का की बात होती है, और फिर जो ऊर्जा उस समय पैदा होता है वह बहुत आवश्यक होता है
0: जी।
1: और इससे व्यक्ति का भी जो हाव भाव है, जो आचरण है, और वो भी बदल जाता है।
0: जी जी हाँ।
1: तो अभी हम बात कर रहे हैं श्रावणी मास और सत्संग का हमारी संस्कृति में क्या स्थान है, और आज हमारे मेहमान हैं श्रीमती विजेता भागी जी और साथ में है पंडिता राजवंश सोलिक जी, जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति में सत्संग का प्रावधान है, किस तरह से श्रावणी मास में स्वाध्याय करने का एक अवसर मिलता है, और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से हमारी संस्कृति में सत्संग का प्रावधान है और श्रावण मास कैसे एक सुनहरा अवसर होता है सत्संग का। हमारे साथ हैं पंडिता जी। पंडिता जी, अभी आपने एक संकेत किया था कबीर के एक दोहे की तरफ जो कहता है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। और यही कारण है या एक प्रेरणा है कि किस तरह से बचपन को ही आपको संवारना चाहिए सत्संग स्वाध्याय के साथ, और तब जाकर आपकी जवानी ठीक रहेगी और बुढ़ापा शांत रहेगा। स्वाध्याय पर जब आपने बात की तो एक ख्याल ये भी आता है कि कहते हैं कि जीवन, जो मानव जीवन है, वो प्रगतिशील होनी चाहिए। तो किस तरह से ये जो स्वाध्याय है वह जीवन को प्रगतिशील बनाता है?
2: हाँ, तो जैसे कहते हैं स्वाध्याय की इतना महत्व क्यों दिया गया है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर को बलवान बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, तो हमारे शरीर का जो राजा मन है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमें क्या करना है, तो भी स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय जो है वो हमें मतलब कि हमारे मन को उठाता है, ऊपर करता है, उत्कर्ष होता है। उसके शिक्षण स्वाध्याय से हमारी जो मानसिक उन्नति है वह बढ़ती है, बौद्धिक उन्नति बढ़ती है, और हमारे पास जो माने कि जो मनुष्य होता है, केवल यदि वह मतलब कि वो स्वाध्याय नहीं करता है, केवल भौतिकता की ओर जाता है और केवल शरीर का पोषण करता है, तो वह मनुष्यता की ओर से हटकर पशुत्व की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसको यह पता नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको लगता है कि जीवन खाने पीने और सोने के लिए है। तो हमारे धर्म में ये बताया है कि खाने पीने और सोने में तो मनुष्य और पशु समान है, मनुष्य में केवल ज्ञान अधिक है। तो जो मनुष्य स्वाध्यायशील होता है, वेदों की ओर जाता है, और कहा गया है कि वेद को पढ़ने वाला, जो वेद क्या है, ज्ञान है, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ऋषि बन जाता है। तो हम ऋषियों के बहुत ही, वो ऋषि लोग हमारे पितर हैं, हमारे बड़े जन हैं, तो हम ऋषियों को, इसलिए कहा गया इस पर्व को, श्रावणी पर्व को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। तो ऋषियों का तर्पण हम कैसे करें, तो कहते हैं जिनको जो चीज़ प्रिय होती है उसी से उसके उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है। तो ऋषियों को वेद प्रिय है, ऋषियों को ज्ञान की बातें प्रिय हैं, तो हम ऋषियों को मतलब कि स्वाध्याय प्रिय हैं, तो हम स्वाध्याय के द्वारा ऋषि बन सकते हैं, और स्वाध्याय के द्वारा

0: ऋषियों का तर्पण यानी कि तृप्त कर सकते हैं तभी हमारा जीवन सफल होगा। स्वाध्याय बहुत महत्व रखता है मनुष्य के जीवन के लिए। तो ज़्यादातर हमें क्या देना, स्वाध्याय किस चीज़ का करना चाहिए? ज्ञान, जो मतलब कि धार्मिक ज्ञान है, जो ज्ञान हमें उन्नति की ओर ले जाता है, केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी।
1: अवश्य। और फिर आपने कहा कि हमारे पितर जो हैं वो ऋषि हैं और ऋषि हैं, देवी देवता हैं, ये हमारे पितर हैं और हम उनके स्वरूप हैं। तो कम से कम आज की इस दुनिया में जो कि कलयुग वाली दुनिया चल रही है, हम कम से कम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अपने पितरों के पग पर चलें। उनके समान बनना तो दूर की बात है, लेकिन उनके पग पर चलेंगे तो जैसा कि आपने कहा, स्वाध्याय को अपनाएंगे, अनुशासन को अपनाएंगे और फिर हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगी। और विजेता जी, आप हमसे बात कर रही हैं ज़्यादातर युवकों के बारे में। आप एक समाज सेविका हैं, साथ में आप एक शिक्षिका हैं। बच्चों के साथ आपका रोज़ाना मतलब कि संबंध होता है, उनके संपर्क में आप आती हैं, इसीलिए आप जो भी कह रही हैं अनुभव के आधार पर कह रही हैं। तो आप एक समाज सेविका भी हैं, तो हमें बताइए कि आजकल ये जो सत्संग का प्रश्न है, अभी श्रावण मास में हम देख रहे हैं कि सभी लोग जुट रहे हैं लगभग, और फिर गंगा तालाब की ओर भी आप देख रही होंगी, भारी भीड़ गंगा तालाब की ओर बढ़ रही है, कांवर के साथ बढ़ रहे हैं
0: जी।
1: और ये जो सत्संग का माहौल है, आपको कैसा लगता है कि यह सिर्फ जब कोई मौका आता है, जैसे कि महाशिवरात्रि में हम देखते हैं, फिर अभी श्रावण मास में देख रहे हैं, क्या यह छिटपुट ऐसी अवसरें हैं जहां पर सत्संग का बोलबाला होता है, या फिर वैसे भी लोग सत्संग में बैठते हैं?
2: हाँ किरण जी, मैं कहूँगी तो वर्ष भर सत्संग करना चाहिए, न कि विशेष अवसरों पर, जैसे अभी श्रावण मास है या महाशिवरात्रि के अवसर पर, या कुछ लोग सत्यार प्रकाश मास मनाते हैं, केवल उस समय सत्संग नहीं करना चाहिए। हो सके तो साप्ताहिक सत्संग रखना चाहिए। कुछ जगहों पर संस्थाओं में पाक्षित सत्संग होता है और कहीं कहीं पर मासिक सत्संग, लेकिन सप्ताह में एक बार सत्संग में भाग लेना अवश्य आवश्यक है
1: जी।
2: और हम तो चहों ओर जाते हैं, दक्षिण से निकलकर उत्तर प्रांत में, उत्तर प्रांत से निकलकर पूर्व में और पश्चिम में, और देश के केंद्र में भी जहाँ जहाँ पर सत्संग होता है हम जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हाँ कभी कभी भीड़ होती है, लेकिन ये सत्य है कि अधिकतर महिलाएं आजकल सत्संग में भाग लेती हुई दिखाई देती हैं। पुरुष भी होते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि शायद वे लोग काम से व्यस्त होंगे। महिलाओं के साथ लड़कियां भी हैं लेकिन युवक बहुत कम हैं। ये मौका है माता पिता के लिए कि बच्चों को सत्संग में लाएं, सप्ताह में एक बार, या जहां पर पाक्षिक भी होता है या मासिक सत्संग, उसमें भी एक बार लाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए कि इस दिन इस तिथि किस जगह पर सत्संग लगाया जा रहा है, तो बच्चों को ले जाना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारे बच्चे पतन की ओर जा रहे हैं, और ऐसा समय जब आएगा कि माता पिता बोलेंगे कि बच्चों ने गलत काम किया है, या मारपीट हो रही है, या पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर एक दुख की बात हम देखते हैं कि कुछ परिवारों में हमारे युवक लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं जो गलत है, तो क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है, उनमें विश्वास की कमी होती है और उनमें विवेक नहीं है। जब किसी युवक या युवती में विवेक होता है, वो जानता है
1: क्या
2: कि क्या सही है, क्या गलत है, तो कभी गलत
1: पथ नहीं बढ़ेगा
2: या कदम नहीं उठाएगा। तो सत्संग में जाना अति आवश्यक है, और अभी जिस जीवन, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसका बहुत लाभ है, इसका अभी बहुत ही
1: आवश्यकता है इसकी।
2: मैं कहूँगी अनिवार्य रूप से हमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन पर सद्भाव पड़ता है। सद्भाव का मतलब है अच्छी भावनाएं। मैं कहीं पर जाती हूँ, सत्संग में भाग लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जाते हैं या पति नहीं जा पाता है, तो मैं जो कुछ वहाँ पर सीखती हूँ, अच्छे लोगों के संग, सज्जनों के संग रहकर जो कुछ सीखती हूँ, मैं आकर घर पर बांटती हूँ। तो ये परिवार में ये कुशलता आ जाती है, परिवार में अलग भाव मैं पैदा कर देती हूँ, लेकिन स्वयं जब उपस्थित होते हैं सत्संग में तो वो अलग बात ही होती है।
1: जी हाँ, और अभी आपने कहा कि आज भी हम देख रहे हैं केवल स्त्रियाँ अधिकतर आती हैं, और आपने ये भी कहा कि शायद पुरुष काम में व्यस्त होंगे, ये बात हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज हम सब सहमत होंगे कि आज महिलाएं घर पर नहीं बैठ रही, महिलाएं भी दो तीन कार्य कर रही हैं,
2: कामकाजी महिलाएं हाँ।
1: सभी कामकाजी हैं
2: जी,
1: लेकिन फिर भी महिलाएं घर संभालते हुए, बाहर का काम संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी समय निकालकर सत्संग में जा रही हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, पुरुषों की ओर से ये हिचकिचाहट क्यों है? क्या कोई टाबू हो गया है कि सत्संग औरतों के लिए है, पुरुषों का जाना वहाँ ज़्यादा मतलब कि रेलेवेंट नहीं है, या फिर पुरुषों को प्रोत्साहन की कमी है? आपको क्या लगता है किस वजह से वो नहीं जा रहे, और क्या संदेश देंगे आप उन लोगों को?
2: पुरुषों को प्रोत्साहन की कमी नहीं है, मैं बोलूँगी कि ये परंपरा है, हमारी ये एक परंपरा है या हमारी मानसिकता है कि स्त्रियों को पूजा पाठ में अधिक भाग लेना चाहिए, लेकिन जब कलयुग में हम जी रहे हैं अभी पुरुष और स्त्री एक समान है, हाँ, जो कार्य पुरुष पहले कर रहे थे अभी स्त्रियां भी कर रही हैं, स्त्रियां हवाई जहाज चला रही हैं, स्त्रियां इंजीनियर बन गई हैं, और पुरुष एक ज़माना था केवल स्त्रियां रसोई घर में थी, लेकिन आज जब देखेंगे होटलों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कौन शेफ हैं, पुरुष वर्ग बेस्ट कुक मानी जाती है, तो क्यों जब पूजा पाठ की बात होती है, जब सत्संग की बात होती है, क्यों पुरुष न जाए और केवल महिलाएं? जब हम बोलते हैं घर चलाने के लिए दोनों चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर, एक पुरुष को एक महिला को पुरुष से कंधा मिलाकर काम परिवार को आगे बढ़ाना है, तो जब दोनों पति पत्नी, जब दाम्पत्य जीवन बन गया है, जब एक साथ फेरे एक साथ ले चुके हैं, तो सत्संग में जब जाते हैं दोनों
1: साथ में जाना चाहिए।
2: जब साथ में जाएंगे तो बच्चों के लिए ये एक उदाहरण होता है, जब बच्चा माता पिता या वयस्क की उम्र में बढ़ जाता है, या जैसे पंडिता जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में बच्चे प्रवेश करेंगे तो बराबर करेंगे, और हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं शक्ति है, पुरुष के साथ शक्ति है, तो क्यों केवल स्त्री को जाकर पान फूल या जो भी है चढ़ावा अकेले करना है, ये मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं संदेश दूंगी कि परिवार, स्वस्थ परिवार के निर्माण के लिए पति पत्नी पूरा परिवार सत्संग में भाग लेना चाहिए, पूरे परिवार को एक साथ जाना चाहिए, समय न देखकर, रात्रि का समय हो, रविवार के प्रातः कहीं यज्ञ होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, ये भी सत्संग है, जब कहीं पर जाते हैं केवल भजनों का एक कार्यक्रम होता है, ये भी सत्संग होता है, क्योंकि भजनों में
1: ज्ञान की बातें
2: प्रचार होता है भजन हाँ। के माध्यम से, तो हम सुनकर, प्रवचन नहीं है केवल सुनकर, हम जो कुछ हम भजनों से ग्रहण करते हैं अपने जीवन में उतारते हैं, तो मैं संदेश दूंगी अभी पूरा परिवार सत्संग में भाग ले, ऐसा न कि ये स्त्रियों का काम है या ये पुरुषों का काम नहीं है।
1: जी पंडिता जी, इसी दिशा में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम देख रहे हैं कि पुरुषों में और युवकों में एक कमी दिखाई दे रही है ऐसे सत्संग के माहौल में, श्रावणी मास में आप भी देख रही होंगी, और अगर अभी से हमको बच्चों को तैयार करना है, कल के जो हमारे देश को, हमारे विश्व को चलाएंगे, उनको तैयार करने का समय अभी है, और कहते हैं कि अभी जो बीज बोएंगे वो आपको एक पीढ़ी 10-20 साल बाद वो आपको नज़र आएंगी, तो आप क्या संदेश देंगे ऐसे मतलब कि चाहे वो गांव के प्रधान हो, चाहे वो किसी भी समाज के प्रधान हो या पंडित पुरोहित हो, किस तरह से आप ये संदेश दे सकते हैं, युवकों को तैयार कर सकते हैं, विशेष तौर पर लड़कों को, ताकि आगे चलकर हमको ये शिकायत ना रहे कि सत्संग में ज़्यादा औरतें हैं।
0: हाँ, विशेषकर अब हम जो विषय लेंगे वो यज्ञ की बात होगी। तो यज्ञ की बात में अभी जो मैंने कहा ब्रह्मचर्य को क्या है स्वाध्याय करना है और उसके लिए अग्निहोत्र बताया गया है। हमारे जो मनुष्य जीवन का जो पांच महत्वपूर्ण महायज्ञ हैं, जो जिसको माने कि कैसे कहते हैं कि सोना को माने कि चमकने के लिए उसको अग्नि में डाला जाता है, तो

0: हमारे मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए बोले 16 संस्कार हैं, लेकिन विशेष कर जीवन में हमारे 5 महायज हैं। तो सबसे प्रथम जो है वह है ब्रह्म यज, जिसको संध्या बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी जो माताएं हैं पूर्वज जो हमारे हमेशा बोलती थी शाम के समय होगा चहला संध्या करके। तो संध्या का मतलब होता है संधि, मिलना। उस समय क्या होता है, दिन रात का मिलन होता है, या सुबह होती है तो रात जा रहा है दिन, ये दोनों मिलते हैं। तो उस समय होता है संधि, उस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो विशेषकर जब ये एक परिवार में ये 5 महायज होते हैं, यानी कि सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर भी कम से कम बैठकर ध्यान लगाएं तो संध्या करते हैं। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है देव यज्ञ, जिसको हम बोलते हैं अग्निहोत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में भी आएंगे, मैं तीसरा यज्ञ बोल लूं। तो जो अग्निहोत्र हैं तो वो तो अग्नि जलाकर हमें उस पर आहुतियाँ डालनी है। फिर तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कहते हैं माता पिता की सेवा करना, जो हमारे बड़े जन हैं, जो हमारे सामने हैं, जो जीवित हैं, उनकी यानी कि सेवा करना। तो ये एक गृहस्थ का काम है, वो मतलब कि संध्या, देवयज, पितृयज। फिर आता है बलिवैश्य देवयज, यानी कि प्राणियों को सुख पहुंचाना, अन्न दान देना, जैसे जीव जंतु आदि हैं सभी को। और फिर आता है अतिथि यज, जब हमारे यहाँ गुरुजन पितरजन आ जाए तो उनसे शिक्षा ग्रहण करना, उनकी सेवा सत्कार करना। अगर एक गृहस्थ में ये बातें होती हैं, बहुत साधारण सी बात है, 5 महायज इसको इससे कहा गया है, बातें साधारण हैं, काम छोटा है थोड़ा, लेकिन उसका जो लाभ है, उसकी जो लाभ है बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये 5 महायज जिस परिवार में होता है तो वहाँ पर के बच्चे संस्कारी होते हैं, और बचपन से ही उनको पता है कि शाम का समय आ गया, या सुबह उठते ही, हमारे धर्म संस्कृति में बताया गया है, सुबह उठते ही आँख खोलते ही पलंग पर ही से उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे, मतलब कि उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें एक सूर्य का की किरण दिखा दी, सूर्य का तेज हमें प्राप्त हो जा ऊर्जा। और बच्चों को ये सिखाना है। हम लोग जहाँ सत्संग करने जाते हैं तो बच्चे होते थे, हमेशा उनसे बोलते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो सूर्य की शक्ति आपको मिलेगी, और सूर्योदय के बाद जब उठते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को, तो देखते हैं हमें तो कहते हैं ऐसा लगता नहीं कि नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है कुछ करने को, तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा जब सूरज जो है, जो हम यही कहते हैं कि सूरज जो है आपकी शक्ति छीन लेती है, क्योंकि उस समय आपने उसका स्वागत नहीं किया, आप उठे नहीं उससे पहले। हम किसी का स्वागत कैसे करेंगे, उससे पहले खड़े रहेंगे तब ना। अब वो आ गया तब हम जा रहे हैं तो कैसे स्वागत करेंगे, पहले खड़े होकर स्वागत करें। तो जब सूर्य उदय हो रहा है, अब 8-9 बजे उठकर आप सूर्य के मतलब कि सूर्य की पूजा करने जा रहे हैं, तो इसे आपको कोई लाभ नहीं होगा। सूर्य के उदय होने से पहले ही आपको स्वागत के लिए तैयार है, आप उसके सामने खड़े रहेंगे तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति होगी आपको प्राप्त होगा। तो ये सब बातें हमें बताना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे इसको मान लेंगे, बचपन से अगर लेकर आएंगे तब सीख रहेंगे। तो इसके विषय में जैसे कि अभी श्रावण मास की बातें, महायज की बातें चल रही है ना, तो महायज जो है ये देवयज है, दूसरे स्थान पर जो आ रहा है। तो दूसरे स्थान पर जब आ रहा है तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि हम मनुष्यों को 3 ऋण होती है, 3 कर्ज है हमारे। एक तो है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, फिर ऋषि ऋण होता है। तो पितृ ऋण कैसे करेंगे चुकाएंगे, तो कहा गया है कि पितरों की जो ऋण हम चुकाएंगे तो पितरों की सेवा करके, उनको अन्न दान देकर, उनकी जो आवश्यकता है उनकी सेवा करते हुए हम पितृ ऋण चुका सकते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। परंतु ऋषि ऋण कैसे चुकाएंगे, तो ऋषि ऋण वही वेद स्वाध्याय, ज्ञान की बातें, जितने हमारे महापुरुषों ने, जैसे कि हम शिव जी को मानते हैं, शिव जी कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाले सतयुग में थे। फिर द्वापर युग में आ जाता है, त्रेता युग में रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ को बहुत बड़ा महत्व दिया था। वो सुबह शाम संध्या करते थे, पितृयज करते थे और यज्ञ करते थे। आपने देखा होगा जब यज्ञ की बात, जब सीता जी मतलब कि वो आश्रम में रहती थी उस समय नहीं थी, और श्री रामचंद्र जी को महायज्ञ करना पड़ा, तो बिना मतलब कि पत्नी के धागिनी के वो नहीं करते थे। उन्होंने कहा मूर्ति बनाकर रखो, ये एक मतलब कि सिंबॉलिक डाल दिया था। लेकिन जो है बताया गया है यज पति पत्नी बैठ कर करें तो सफल होता है। अब जो अकेले हैं तो वो तो करेगी ही, लेकिन गृहस्थ में पति पत्नी को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, और श्री रामचंद्र जी यज को बहुत महत्व देते थे। और यहाँ पर जब इसलिए कहा गया है राम राज्य की बात आती है, तो यहाँ पर वो संध्या करते थे, देव यज करते थे, पितृ यज अपने माता पिता की सेवा, फिर अपने प्रजा को मतलब कि हमेशा दान पुण्य करते थे, और उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। और जो ऋषि मुनि गुरुजन आ जाते थे उनकी सेवा सत्कार तो वो तो पहुँचा या करते थे, फिर हम क्यों ना करें। जिसको हम भगवान मानकर, जिनके हम आराधना करते हैं, जिनको हम ध्यान में लाते हैं, अगर हम उनके बताए मार्ग पर न चलकर केवल उनकी पूजा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने जो मार्ग बताया, कृष्ण जी योगी राज थे, योग की बातें बताते थे, योग करना चाहिए, वो तो 16 कहते हैं 16 कलाओं से पूर्ण थे, तो फिर हम इनकी बातों को न माने। तो यहाँ श्रावण मास की बात जब आ जाती है तो महायज की बात होती है। और यहाँ पर जब देखेंगे कि भारत से भी, यानी कि हमारे पूर्वज भारत से आए हैं ना, तो वहाँ से हम लोग ये सब परंपराओं को लेकर आए। तो वहाँ पर जब भी मैंने बताया कि 4 मास तक, यानी कि श्रावण मास के अंत से शुरू होता है उपाकर्म, और पौष मास तक यानी कि दिसंबर तक जाता है। अब दिसंबर महीने तक चलता रहता है। क्यों वहाँ पर ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा ऋतु आ जाती है। श्रावण मास में लोग बुआई आदि कर लेते हैं, खेत को जोत लेते हैं, फिर उनका काम समाप्त हो जाता है। और इतनी बारिश आप तो देखते हैं, भारत में इतनी बारिश होती है कि हमारे यहाँ की नहीं, मॉरिशस में अभी यहाँ आते आते बारिश हुई तो रिदूर गए, धूप निकल गया,
1: जल थल हो जाता है।
0: वहाँ तो जल थल, वहाँ खेतों में काम नहीं कर सकते हैं,
1: नहीं
0: क्षत्रिय लोग अपना काम कर सकते थे, नहीं वैश्य लोग, व्यापारी लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। तो उस समय सभी लोग घर में रहते थे, और जो ऋषि मुनि हमारे वो वनों में रहते हैं, कुटिया में रहते थे, तो वहाँ भी तो पानी घुस जाता था, उनको रहना कठिन हो जाता था, और सांप बिच्छू आदि जो बहुत जंगलों में घूमते रहते हैं उनकी कुटिया में घुस जाती थी, तो कैसे रह पाएंगे। तो वो गांवों में आते थे। जब गांवों में आते थे तो उस समय वो सत्संग जो है 4 मास तक चलता था, वेद का पठन पाठन, यज करना। और यज क्यों करते थे? वायु को यानी कि शुद्धि के लिए। तो उस प्रकार में जब यज करते हैं, ये महायज ही परंपरा चली आई है, और उस परंपरा में हमें जब यज करते हैं तो ऐसे ही नहीं करना है, उसको बहुत तैयारी के साथ करनी है। और संविधा जो है, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, तो यज के जो है उसको संविधा बोलते हैं, उसको बहुत ही चयन करना है पवित्रता से। फिर 4 प्रकार की वस्तु जो है डाली जाती हैं, एक तो मिठास मीठी चीज़ें, दूसरा सुगंधित, फिर बलदायक, फिर रोगनाशक। 4 प्रकार की वस्तुएं को चयन करना है, तैयार करना। ये नहीं है कि हम दुकान से बस एक पैकेट लाए, बस खोलकर यज के यहाँ बैठे और वहाँ खोलकर हमने यज आहुति डाल दी, संविधा कहीं से मिला लाकर डाल दिया, नहीं। उसकी तैयारी, जिस प्रकार हम भोजन की तैयारी करते हैं, उसके संस्कार करते हैं, शुद्ध करते हैं, शुद्धि का नाम भी संस्कार होता है। यानी कि चावल को धोते हैं तो मानकर उसका संस्कार कर रहे हैं, सब्जी को धोते हैं तो उसका संस्कार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यज्ञ करने से पहले सभी वस्तुओं का संस्कार शुद्धिकरण करके तब हम यज करेंगे तो पवित्रता आएगी। और श्रावण मास के इस अवसर पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, और इसको यानी कि जब तक चले कर सकते हैं, बल्कि विशेषकर सभी पर्वों का एक दिन दिया गया है। अब किसी पर्व का जैसे श्रावण मास का एक मास यज का है, लेकिन हम एक मास नहीं करते हैं, हमारा जो जैसे नित्य कर्म है रोज यज करना। लेकिन विशेष महायज जब करते हैं घंटों का, तो रोज तो नहीं कर पाएंगे, तो वो मतलब कि श्रावण मास के अवसर पर करते हैं। फिर लेकिन रोज अग्निहोत्र, ये जो 16 मंत्रों की आहुतियां हैं वो करते हैं। तो यज का महत्व ये है श्रावण मास के अवसर पर।
1: बहुत खूबसूरती से आपने ये सारी बातें हमारे सामने रखी पंडिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। विजेता जी, अंतिम में आप क्या कहेंगे, इस श्रावण मास से लोग किस तरह से सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं?
2: हाँ किरण जी, श्रावण मास में चहुँ ओर यज हवन हो रहा है, भजन हो रहे हैं, और जैसे आपने कहा कई लोग गंगा तालाब की यात्रा भी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि इसका अवश्य लाभ उठाएं। युवक, माता पिता, यहाँ तक कि अगर हमारे वृद्ध दादा दादी भी इन यज्ञों में, इन यात्राओं में भाग ले सके तो इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ेगा।
1: अवश्य। आज आप दोनों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया, श्रावणी उपाकर्म पर हमसे बात की और सत्संग का जो महत्व है वो भी हमारे सुनने वालों को बताया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें सुमैरा अकबर अली से आपको नमस्कार और आदाब
1: नमस्कार आदाब सांसद वेरोनिक लेगोविन का पति गुलशन लेगोविन आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए हैं और उन पर दो अस्थाई इल्जाम दर्ज हैं गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए पुलिस ने उनकी रिहाई पर एतराज जताया और अब वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती एक क्लिनिक पे की गई। आदसू और रिनन टापू के ऑंसी स्टुपेफियों दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं। गए शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये शक है कि दोनों रिनन टापू और मोशरस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। आज स्टेट हाउस रेजवी में 3 जूनियर मंत्रालयों के लिए शपथ ग्रहण समारोह लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इनमें पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि शामिल हैं। जल की समस्या के चलते उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वे एक मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल वे स्थिति का संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दामों में खासतौर पर सब्जियों के खेतीहरों ने ऐसा बताया। इसके अलावा गन्ने के खेतीहरों ने कहा कि कम पानी की वजह से उनके उत्पादन पर असर पड़ा है, क्योंकि पिछले नवंबर महीने से जल आपूर्ति कम है, इसलिए वे लंबी अवधि के लिए एक सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। विदेश में पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ। 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल थे। उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रिजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धमवंती रामकिलावन, श्रीमती धमवंती रामकिलावन पैदाइशी नाम ओमिया, जो सरोज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10:30 बजे इनके घर डॉक्टर लॉरेंस

0: नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटी। यार बात हो रहा दू हफ्ता आगे हमने बतिया तरली सा पेस्टिसिड, जी हाँ, जो रासायनिक पदार्थ कौन ची है, कैसे कर इस्तेमाल होला और जो पेस्टिसिड बाटे कौन ची के मुआवेला, कौन ची के नुकसान पहुँचावेला, इस सब पर हमने बतिया तरली जा। इमें शामिल बा जैसे एसेक्टिसिड, एबिसिड, अलग अलग प्रकार के जो कीटनाशक, घास फूस, इस सब के नियंत्रण करेला न तो मुआ देवेला। आज हो हमने यही पर चर्चा करब जा, माने कि पेस्टिसिड पर कैसे कर इस्तेमाल होला, एकर से जस्ती कैसे कर इस्तेमाल सही तरीका से होला। इ पर चर्चा करे खातिर हमने के मेहमान हवन एक बार फिर फागे के जो सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर हवन आप हवा श्रीमान संजय सम्भू जी, तुहर स्वागत बाटे। प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: तो चल हमने ढेर बतियाली जा भाई संजय पेस्टिसिड के बारे में कि कैसे कौन ची के मुआवेला और एकर से जुड़ल कौन ची बाटे। आज हो हमने बतियाब जा कैसे जब एकर इस्तेमाल होला, कैसे सेफली इस्तेमाल चाहेला करे के।
1: बिल्कुल गल हला जैसे बोले रहनी जा कि जब एगो पेस्टिसिड के प्रयोग करब जा तो पहला प्रिकॉशन लेके सावधान रह के और जहाँ जैसे बोला सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने के
0: जी,
1: चाहे वो लेगा हो, बूट हो, ओवरऑल हो, एगो वीएस पा गूगल हो, मास्क हो, तो सब चाहेला जैसे एचिकेट में बोले रहनी पिक्टोग्राम रहला देसा रहला ओकर अनुसार सब प्रिकॉशन लेके
0: जी। अच्छा हमने के फिरो से कई जना सकेला तोहरा नए सुनने हवन, नए दिखले हवन, तो उन लोग के कैसे बोलबा कि ई जन पेस्टिसिड वन बाटे, जन पेस्ट उस बाटे, जन कीड़ा बाटे, उन लोग के कैसे मुआवेला।
1: हाँ देखा जन पेस्टिसिड बाटे तो ओकर में तो जैसे बोले इंसेक्टिसिड बा, फंगिसाइड बा, हर्बिसाइड बा, सब अपन अपन कैटेगरी अनुसार प्रभाव करेला। एक आध गो उदाहरण दे कैसे एगो इंसेक्टिसिड बा और एगो पिलुआ के मुआए। अब शायद तू ही या जे हमने के सुना था कभी कभार घर पे वो स्प्रे लेके कुछ ऊपर स्प्रे कर ले जाए वो ऐसे पर तो दिखबा हाउ ऐसे को किसी तरप तरप के बुझे होला, टूने होला,
0: छटपटाला।
1: हाँ तो हाई ऐसे चीज दुआ जनबा तो कृषि में भी प्रयोग होला तो वो हाउ पिलोवा के ओकर नर्वस सिस्टम के अटाके कर देला, तो ओकर नर्वस सिस्टम के जब अटाके कर देला तब वही डेजोरियंटे होला। तो ऐसा नहीं को पेस्टिसिड सकेला कॉन्टैक्ट से काम करते हुए तो जब ओकर ओकर लापू ओकर ओकर बॉडी पर स्प्रे लगाता तो ओके भीतरे पेनिट्रे हो जाला तब जाके ओकर नर्वस सिस्टम के ताके कहला सकेला। एक दूसर फासों से काम करे कैसे बोला था इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी कि जो पिलुआ बाटे तो वो पत्ता नहीं खाता, कैसे वो काटा पीला बा एगो लव बाटे तो वो पत्ता खाता, तो वो पत्ता पर कैसे वो अब एगो स्प्रे हुई जैसे कि एगो मिक्रोब के स्प्रे हुई जैसे कि बैसिलस थ्रिनजियन्सिस बा बेटे या फिर एगो केमिकल पेस्टिसाइड हुई तो अब जाके पिलुआ पत्ता खैलक, तो जब पत्ता खैलक तो कुछ हुए जब पत्ता पर हो पेस्टिसाइड रहल तो अब जाके अंदर ओकर शरीर में चल गल, तो जब ओके खाए तब ओके तब पितरे से होके अफेक्ट करी तब मुआ दे। अब जैसे आप देखा था ऐसा फंगिसाइड, अब फंगिसाइड अनेक प्रकार से काम करेला। एक आध गो फंगिसाइड है वो पत्ता पर आके चिपकेला ऊपरी तो एगो बे कहते कर देवेला, ओके बोला एगो एगो फंगिसाइड कॉन्टैक्ट करना बोला सब तो वो जाके पत्ता पर ऐसे चिपक गलबा। अब जब जरा तक ओके प्रिवेंटिव कहते प्रयोग कर देला तो अब जाके अब एगो बीमारी जोन बाटे एगो शॉपियों जोन बाटे कैसे अब हवा में ऐसे आवता या फिर पासी में बाटे ये बीमारी तो जब हो पत्ता पर गल तो हो पत्ता पर तो जैसा एगो बे कर देते बहु फोसी दुआ के तो इस प्रकार से अब एगो फोसी एगो शॉपियों हमने के नहीं लौकेला में पर वो लोग जब बढ़े लंच लोग जब पिपले हो लंच गन्ना लोग एंसिडेंस ऑगमेंटे होला तो लोग के पिटी पिटी फिलामेंट कहते रहे जो पत्ता में ढुकल करेला तो जब जब ये बे हुआ चला तो वो नहीं सकी करे तो के पत्ता के ओके प्रोटेजे करी। अब एक आध गो फंगिसाइड बा जो सकी पत्ता के भीतर भीतर ढुके तो भीतर जाके तो वहाँ भीतरे में गनला अपन काम करे लन सा। एक आध गो फंगिसाइड बा जो सकी पौधा में तू सकेला पत्ता में स्प्रे कर ले हुई बा तो वो पत्ता में से निकल के ओकर डाली में आके जड़ी तक जाए या उल्टा जड़ी लगे से उठ के जाए भाई डाली में या फिर पत्ता में तो अनेक प्रकार से इसे काम करे लन सब। और ऐसे किसी में भी ऐसा ऐसा एक आध गो फौजी है जो पटाखे

0: बाहर कर दे वेला
1: अच्छा
0: त पता पर त दलन त जिपन एक पता पर राजा चिपक बता बेगो पिलवा के खैलक त एक आदमी पिलवा रहेला उ पता के नीचे रहेला एंड जैसे कि ए फिश बाते वाइट फ्लाई बाते पता के नीचे रहेला त चाहेला आई एगो इक्वेशन पोजु के प्रयोग कर या फिर ओके डायरेक्टली आई ओके पास प्री कर ला या फिर पता के ट्रैवर्स के नीचे कर त बुके मादे अब इतब होल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के अब हर्बिसाइड लगा अब हर्बिसाइड में भी आई दो प्रकार के हर्बिसाइड बाते एक जन कॉन्टैक्ट से चलेला एक जन सिस्टेमिक है तो जन कॉन्टैक्ट से चलेला वो पतवा के जला देवेला
1: अच्छा
0: हम ब्रानु सब ने बोला मैं कल बोले हर्बिसाइड जब दलबा तब पत्ता के जला देवेला अब एक आध गो हर्बिसाइड जन मत दलबा तो वो कर जन पौधा में जो पत्ता बाटे तो वो सब ओके आप ओके हिंच ले
1: बिचरे
0: में आप सोबे कह तो वो सिस्टेमिक है तो वो जाके गौछड़ में चली और जड़ी तक ले जाए तब गति गति गति प्रभाव करेला सकेला दो हफ्ता तीन हफ्ता ले तब सब देखो पियरल जाता पियर हो जाता और तब मर ले जाता तब मर चला तो ये रहा लगभग एगो कॉम्प्लेक्स अथी है मैं हम साधारण रूप से थोड़ा आए कोशिश करनी थोड़ा बोले के कि कहीं अनेक अनेक प्रकार से प्रभाव करेगा
1: तो जैसे बोले रहला भाई संजय कि जो पेस्टिसाइड सब बातें ओकर इस्तेमाल जब लास्ट में जब कुछ हो नहीं होता जब काम कर दिला दिखत हुआ जो बीमारी बातें जो नैसक बातें जो कीड़ा सब बातें वो लोग नहीं मरिया तन तब भी ओकर इस्तेमाल होला तब इस्तेमाल तो होला तो अब जब फसल हो कि बखत हो गल बाती फल हो सब्जी हो वो कैसे होला
0: हाँ तो जितना चीज़ अभी हमने बोला था ऐसा चाहे इंसेक्टिसाइड हो फंगिसाइड हो हर्बिसाइड हो वो चाहे केमिकल हो या चाहे बियो हो सब तक जैसे आगे के जो प्रोग्राम में देख लीजिए सब तक जहर है
1: जी
0: सब जहर है तो जहर से चलना बच के रह के तो जो पेस्टिसाइड के प्रयोग करबा तो हम बोलती हमने के जो गीत आगे कोल बात है गीत आगे 2019 आज जेब अगर मैं देखे तो अगर मैं कोई चीज़ लिखल बा प्री हार्वेस्ट इंटरवल तो ई का बोलल जला तो आजे आज एगो पेस्टिसाइड के हम प्रयोग करनी स्प्रे करनी तो कितना दिन हमके चाहेला आतान करे के तब ओकर बाद जाके फसल करे के अब कैसे एगो ऐसे चीज के प्रयोग करनी ओकर में लिखल बा प्री हार्वेस्ट इंटरवल 7 days तो एक अर्थात होला कि आज हाँ आज अदनी है तो 7 दिन तो हो दूसरा सोमवार जो ना हुआ था दूसरा लेंदी जो ना हुआ था तो यानी कि तब मंगलवार की हम हार्वेस्ट करब 7 दिन के बाद आज जो मैं लिखल रही प्री हार्वेस्ट इंटरवल 3 days तो 3 दिन के बाद यानी 4th दिन पर तब सकब है ओकर फसल करी तो ऐसे ही है तो ऐसे चीज रहा फंगिसाइड के भी जब प्रयोग करबा तो मैं लिखल रहला कितना दिन चाहला इंतजार करे के अब हर्बिसाइड में तो नहीं रहला क्योंकि हर्बिसाइड तो बनाल बा सब चीज के मुआयके हर्बिसाइड जब जब डाल दिला तो वो पौधा के मुआय खाती ना तो ओकर में हार्वेस्ट नहीं बाते वो कने चला प्रयोग करके अब कभी कभार होला कि एक्सीडेंट से अनवांटेड स्प्रेइंग जैसे कोई कहता तो परोस में स्प्रे करता लिया बिसी तो ड्रिफ से तोहर खेत में सकेला चलाए अब देख तोहर जो पौधा सब मोड़ा तो कभी तो हर्बिसाइड लग गल बा तो हम ऐसी स्थिति में हम बोलती हम नई नई नई फसल करेगी
1: तो जैसे कि बोले थे वह कर इस्तेमाल तो हुआ था अब जब जो पेस्टिसाइड हुआ बातें कब होल बातें कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंगिसाइड सब कुछ एक ही हल्ला डाल कर बातें कब होल आई
0: इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड हाँ जानी ला सर ये कोनो कोनो किसान लोग बाद में कोकटेल करे लंच इको कमाते नहीं है मैं करे लंच लेकिन साथ साथ हर्बिसाइड नहीं क्योंकि वो करता इसीलिए हुए नहीं बात हर्बिसाइड आता है मुआई खाते नहीं होने जाता तो कीड़ा के मुआई खाते नहीं होने जाता पौधा के मुआई खाते नहीं बोला लेकिन ऐसे होल बा कि क्योंकि जो नाम डाल गल बा जो पदार्थ बातें फौजी बातें जो नाम डाल बातें एक आध गो नाम इतना ले मिलेला जुलेला कि नहीं बुझेला इंसेक्टिसाइड है कि हर्बिसाइड है और देजा हमार हमार हमार ध्यान में आवा था कि देजा होल बा कि एगो किसान के रहल डाले के ऐसे चीज डाल देले बा हर्बिसाइड क्योंकि नाम
1: गंभीर बात है
0: हाँ नाम पागे बात है
1: अच्छा
0: पागे नहीं लेकिन सिमिलर बात है
1: हाँ ये खातिर चाहेला निमन से पढ़े के कोफिश होला हाँ ये खातिर चाहेला निमन से पढ़े के देखे के कौन ची लिखल
0: हाँ तो हाँ जन जितना पेस्टिसाइड बेचाला ओकर में एगो लेबल साथ में आवेला तो जैसे हम बोले कि डाइकोल 2019 क्योंकि जान हमने लिख लिया सब मैं जोन बात सब ठीक बात है लेबल पर हमने से कब बोले लेकिन चाहेला उकरो तक निमन रह के ना क्योंकि कानून चला काके

0: आधार पर चले के तो लेबल ही पर चाहेला सब इन्फॉर्मेशन रहे के चाहेला लिखल रहे के प्री हार्वेस्ट इंटरवल पर 2 days, 3 days, 4 days और मैं चाहेला लिखल रहे के कौन क्रॉप पर कौन सब्जी पर सकला प्रयोग करे हाउ इस सब्जी पर चाहेला प्रयोग करे सब चाहेला निमन से लिखल रहे के स्पष्ट रहे के
1: अच्छा धर ला जो पेस्टिसाइड बातें जो फोजिस्ट बातें न तो जो ऐसे किसी कुछ हो डले हुआ अब बोलल गल बातें 7 दिन ले स्प्रे करा जो हार्वेस्ट टाइम की जो बातें अब हाउ अंतर्गत में हाउ अंतराल में सकब हम अपन कारों में जाए थला हम डले है अभी पेस्टिसाइड सकब हम जाए अभी कोनो दूसर काम करे
0: ये निर्भर रही कौन फौजी के प्रयोग हो रहा जैसे प्री हार्वेस्ट इंटरवल बातें तो हर एगो फौजी के ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल भागे नहीं रहला एक ही तरह नहीं रहला एगो की 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन 21 दिन ऐसे सब रहला तो जो तू प्रश्न पूछला अब ओकर हर लेबल में और एगो एगो एगो इन्फॉर्मेशन मिलेला ओकर नाम री एंट्री इंटरवल एक पर ढेर कोई ध्यान नहीं करेला तो री एंट्री इंटरवल आज तुरप जा शब्द के तो इंटरवल यानी कौन है त्यौहार पर एंट्री प्रवेश करे के री फिर से प्रवेश करे के तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेला कि एगो खेत में आज एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग हो गल बा तो फिर से कब सकब प्रवेश करे तो प्रवेश तो घूमे खातिर नहीं कर ना जैसे बोला एगो काम करे के बा शायद थोड़ा घास निकाले के बा शायद कुछ जाके देखे के बा कुछ करे के बा तो अब तोहरा आज पेस्टिसाइड के लेबल में एगो इंसेक्टिसाइड के प्रयोग कर ला कुछ भी एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग कर ला कन लो कर में लिखल बा ये डेज पर नहीं रही ये आवर्स पर रहेला तो कन लो तो हमें लिखल ओकर में लिखल रहेला 48 hours तो 48 एक दिन में होला 24 घंटा 24 hours तो आज 48 hours लिखल हो तो यानी कि 2 दिन हो गल ना तो 2 दिन तक आज है पेस्टिसाइड प्रयोग कर ले तो 2 दिन तक चलना हो खेत में प्रवेश नहीं करे के यानी कि 3वां दिन पर जब आज लिखल रही 24 hours तो स्प्रेइंग करला के बाद 1 दिन तोरा चलना वो खेत में नहीं ढुके के यानी कि 2 दिन में ढुक
1: यानी कि ये स्वयं खातिर जो प्रोटेक्शन बातें प्रिकॉशन हमने हाँ, अपन खातिर लेवत है
0: क्योंकि सबसे पहला प्रभावित के हुई काम करवा बात है ना इन्हें बाकी तू अब तू खेतीहर हो स्प्रेइंग हो गल बात तू कम करवा के बोला जा काम कर
1: अच्छा हजा पर एक चीज आवेला जब जे कोई अपन खेत में वो काम कर रहता वो पेस्टिसाइड वा डल्ले बा अब बगल में कोई दूसर कारो बा हमर वाजे बाते हमर पड़ोसी बा ओहु काम कर रहता त जन पेस्टिसाइड हम अपन कारो में डल्ले की जैसे बोलला हवा आवेला उ सब आवेला त हो तो उरेला ओकर कारो में अब ओकरो जाए के परी बोले के देखो भैया नहीं जाइया 2-3 दिन नहीं जाइया अब वो बोला था नहीं हम तो जाब हमर कारो है तू कौन चीज कर तू देख कैसे होला
0: हाई में आए एगो बहुत अच्छा प्रश्न पूछला ही है हाई में छाला जैसे बोला सा बहुत वाजिनाज रहे कि ना तो और हमने रिकॉमोड के ला सा जब ऐसे नहीं कोई स्थिति में हुआ तो हर खेत के आजासन जैसे बोला सा आस पास जनवा आगे पीछे और खेत बातें तो पड़ोसी जब अपन स्प्रेइंग करता तो चाहला जना दे के कि देखा हम स्प्रेइंग कर लिया है के तकला ड्रिफ्ट हो और अपन फसल फसल पर भी खाली री एंट्री नहीं फसल पर भी क्योंकि आजे देखा आजे पड़ोसी एगो स्प्रेइंग कर लेबा ड्रिफ्ट से हमार कारो में अब हमारे खेत में आलमा अब गन्ना एगो उदाहरण के रूप में हम लीची के खेती कर ले हैं तो आज वो स्प्रेइंग कर लेबा ड्रिफ्ट से लीची पर आ रहा कल आज कृषि मंत्रालय के ओकर जो अधिकारी लोगों से अयन जा सैंपल ले एनालिसिस के जैसे तुम्हारे लीची में मिली अब बोले जा देखा तो लीची में पोजी बातें है बात तू आए तो रिकॉमोड है नहीं काहे प्रयोग कर ले हो अब तू बोलवा जिस पर हमने जल्दी डाली तो के आके आए आए कुआ कोई अंसा
1: तो ये में कानून कुछ बोले ला
0: नहीं तो कानूनन रूप में जो जेकर खेत में मिलल बा तो वो ऑटो
1: वाला वो
0: रिस्पॉन्सिबल बातें लेकिन जैसे बोला था पड़ोसी जो बा खेती हर बातें चाहना जनाए के कि देखा हम स्प्रेइंग करता है तो आए कारों में खेत में कल ने ढुकिया वगैरह वगैरह चलान चलाए के और एक चीज है जब कैसे मिला सा बन पाचिक आगे को एक आधार पर स्प्रेइंग नहीं कर दिला जब हवा हवा सब रहेला क्योंकि जब हवा में हुई तो ड्रिफ रहेला ना तब स्प्रेइंग नहीं कर दिला
1: तो जब बोलत हुआ हवा जब ढेर होला तेज होला तभी तो हमने सर्दी के मौसम में होला धर लो हम अपन कारों में है हवा तो ढेर मारा था
0: अब परी हम नहीं चला करे क्योंकि काली ध्रुव के सवाल नहीं बाते जब हवा रहेला तो हवा जहाँ तक हवा बुझाला गए गए बोला सा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोला सा लेकिन हवा एक के को डायरेक्शन में नहीं जला ना एक की ओर नहीं जला एक कुछ बुझाला हवा घूम गल बा या कोनो ट्यूबियों वगैरह ऐसे ऐसे कहते हो ला छोटा मोटा अब तो स्प्रेइंग करते हो अब हवा गन्ना एक बदलाव चला तोहरी पर आके जिन जिन जिन स्प्रे करते तोहरे पर आके लगी तो नहीं छवाते ना तो तोहरे में सबसे पहला तोहरे स्वास्थ्य बिगड़ी
1: तो एक कितना किलोमीटर लग जाला जब डाला थोड़ा
0: जैसे जन लेबिसिड रहेला खासकर एक आदमी लेबिसिड बहुत वोलाटाइल रहें तो सकेला किलोमीटर तक सकेला चल जाए वो कारण जब कबो बुझाला गन्ना गन्ना के खेत में जब स्प्रेइंग होला तब बुझाला जे कोई के घर लगे चल गल बा तो मौकेला तो कौन चौपफ है ना वो फोजुए तो लगे ले चला खाते मौका था तो हुआ ले चला बा आज अब कोनो एगो पौधा वगैरह हुए तो बुझाला पत्ता मोड़ा था तो असर कहाँ ले चल जाला
1: अच्छा हमने आज बताया था ऐसा पेस्टिसाइड ओकर इस्तेमाल कैसे सही तरीका से होला एगो छोटा सा ब्रेक के बाद हमने वापस आई ला जा

बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हो आज की चर्चा कार्यक्रम में, और आज हो हमने पेस्टिसाइड ओकर सही तरीका से जोन इस्तेमाल होला कैसे होला एक पर हमने बतियात है जा, और हमने संगे हवन सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू फागे से। तो शंभू जी अभी हमने बात करत है जा कि कैसे चाहेला इस्तेमाल हो के जब

0: डालत होवा जोन प्रीवा हार्वेस्टिंग टाइम बाटे हार्वेस्ट टाइम होला तो कब चाहेला कारू में जाए कि नहीं जाए कि अब जैसे बोले हवा एकर इस्तेमाल तो होवा तो जब हुआ था हमने कैसे जो न बेस्ट बातें हमने क्या कि जैसे बोला पेस्टिसाइड वो तो मुआ खातिर है अब हमने कैसे ओकर चुनाव करी ला जा जो सबसे जस्ती टॉक्सिक बातें कैसे
1: हाँ एक पर भी एक भ्रम बा एगो कन्फ्यूजन बा
0: जी
1: ढेर कोई सोचला कि अपन जो समस्या बातें चाहे पिलुआ के बा या बीमारी के बा तो चला सबसे टॉक्सिक प्रोडक्ट लेके हाँ तक क्योंकि समस्या से लिपटे के बा ना लेकिन ऐसे नहीं चलेगा नहीं जो सबसे लीस्ट टॉक्सिक बा वो भी अच्छा से काम करेला तो एक में सबसे पहले चला जाने के जैसे आगे के प्रोग्राम में बोला सा चला जाने के समस्या कौन सी बा अगर ना समस्या जानगे नहीं सा एगो पिलुआ बाते तब चला जाने के कि देखा चला अच्छा तो पिलुआ बा ना तो कौन पिलुआ हो एगो लीफ ईटिंग कैटरपिलर है एगो एगो लव है कैटरपिलर है या फिर एगो सकिंग इंसेक्ट है जैसे कि फ्रिप्स बाते या फिर मकड़ा है कौन सी है तो अब जान गए नहीं सा कौन पिलुआ है ऐसे ही बीमारी के भी जब चला जाने के कौन बीमारी है और जब जान गए नहीं सा तब जाके हमने देखब जा कि ई पिलुआ से लिपटे खातिन कैसे करना फ्रिप्स बाते तो ई पिलुआ से लिपटे खातिन कौन कौन ऑल्टरनेटिव बा कौन कौन पौजी मौसे पर बाते चाहे लीफ का तापिला कुछ हो तो अब गन्ना जब छानबीन करते जा तो देखा जा कि चार पांच गो पौजी बाते जो सकल प्रयोग करेगी तो कैसे बोल जाता जब पेस्टिसाइड के प्रयोग करा तब पहला प्रभाव के कर पर करी जे आप कहते हैं बातें खेती है जे आप काशों करता कर पर करी तो स्वास्थ्य बिगड़ी ना तब पहुँचमाते नवयुगमा वगैरह वगैरह तो ये सब चीज़ के देख के तोरा हमेशा चाहना जो पौजी सबसे लीस्ट टॉक्सिक है लीस्ट टॉक्सिक के मतलब नहीं है कि वो काम नहीं
0: कम असर करी
1: हाँ वो कम असर नहीं लीस्ट टॉक्सिक के मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं को पौजी प्रयोग करला से पर्यावरण पर तोहर पर ह्यूमन तौर पर कनक कमती असर रही तो इस प्रकार से आज एगो फौजी सीमिक बातें तो ओके जाके चुनब जन जन आज सका बोले तो गल फौजी सीमिक में देखब तीन गो आपे पे तीन तीन तीन गो कैटेगोरी में गिरेला एगो क्लास एन डब्ल्यू एच ओ क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री तो क्लास वन जन रहेला उस सबसे जहरीला है सबसे टॉक्सिक है ओकर जब लेबल देखब ओकर बोजिया जन रहेला वो लाल रंग के रहेला क्लास टू जन रहेला वो गनला वो भी जहरीला है लेकिन वो रेड वन और सबसे टॉक्सिक
0: से
1: ओकर तुलना से टेंशन कमती है तो ऑरेंज ओकर बोजे में वो बॉन ऑरेंज रहेला और क्लास थ्री जन बातें जब जो क्लास थ्री जन भोजी बातें तो ओकर एगो बॉन ब्लू रहेला एगो क्लियर ब्लू रहेला टू टू तो खाली ऐसे विजुअली ऐसे देखब तो तोरा जना जाए देखा ये बहुत टॉक्सिक है मात्रा में कम टॉक्सिक या कैसे कम टॉक्सिक तो एक से ब्लू बैंड होला सकब जा चूज करे अब जैसे बनी जहाँ देखे कौन श्वाब आते ना अब सकेला जो जो पेस्टिसाइड डिस्पोनिबल ओकर में बियो पेस्टिसाइड भी सके रहे कैसे काटा पिला के सकब सा बीते के प्रयोग करे
0: बियो पेस्टिसाइड बा ओहो टॉक्सिक बाटे
1: हाँ ओहो हाँ ओकर नाम में जुड़ल माना पेस्टिसाइड तो यानी कि जहर तो है ही लेकिन तुलना करब एगो केमिकल इंसेक्टिसाइड से तो गन्ना कमती टॉक्सिक बात है लेकिन एक मतलब नहीं है कि उद्देगा नहीं करेला ऐसे एगो एगो बियो पेस्टिसाइड बा ओकर में ओकर माचाक्षे स्विनोसाद पर आधार है बियो है लेकिन इतना ले जहरीला है ब्रोड वेला सब ब्रोड स्पेक्ट्रम है यानी इनडिस्क्रिमिनेटली ढेर चीज के मुआवेला जैसा कि तू सकेला एगो पिलुआ के टारगेट करो तो लेकिन उस सकेला अनेक प्रकार के पिलुआ खासकर जो बेनिफिक है कैसे कोक्सिनेल बाते तितली बाते वगैरह वगैरह ओके भी मुआ दे
0: तो हजा पर एगो प्रश्न आवता हमारे दिमाग में धरला हम हमके चाहेला एगो पेस्टिसाइड हम गैली कि नहीं एगो पेस्टिसाइड हम नहीं जानत है कौन लीस्ट टॉक्सिक बा कौन सबसे जस्ती टॉक्सिक बा लाल नीला कौन कुले हुई हम नहीं जानत है अब जो बेचे होला उबा ओकर दिवा है बतिया बोले के देखा है कि न थोवा एकर लिचलीते कैसे चाहेला करे के धरला वो आदमीवा नहीं जाने था ओकर दिवा है बतिया के बोले के
1: आज आज वही नहीं

0: रहा था
1: हाँ.
0: सवाल ये रही प्रेमी कैसे मिलल बेचे के
1: हाँ.
0: नहीं ताजे प्रेमी मिलल हुए बेचे के उद्योगिते लोग देखले हुए ना कॉम्पिटेंस वगैरह वगैरह अब गनला एगो स्थिति होल एक एक जना गर्ल खरीदारी करे ता एगो किसान गर्ल खरीदारी करे ता अब सच्चे के नहीं जाना था ता अब ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर बा रिटेल आउटलेट के ता ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बा उसा की जे हो पेस्टिसाइड के सप्लाई कर लेबा पसी हो इम्पोर्टेंट है कि पीएमई मिला आने के ना पीएमई कौन आधार पर मिला ढेर डॉक्यूमेंटेशन दे लेबा कौन ची खातिन कौन ची मारे खातिन कौन पिलुआ के मुआ खातिन ओकर पीएमई मांगा था कैसे ओकर प्रयोग हुआ है कौन लोजमा में रही सब इम्पोर्टेंट है संगे बा और जब इम्पोर्टेंट है रिटेल आउटलेट में सप्लाई कर सब पोजी तो ओके चाहे ला जितना टेक्निकल डेटा रहेगा ओकर कैसे वजन समाचार सेफ्टी डाटा शीट वगैरह सब चाहे दे के हुआ पड़ी हाँ तो आज नहीं जानते हुए या भुला गए हुए तो ओके चाहे ला इम्पोर्टेंट है कि सुने करके पूछे कि या फिर हमने ऐसा फागे के सकी बोले हमने के फोन करी बोली तो हमारे लगे एगो किसान अलबा ओकर है समस्या बातें लिपटे खातिन तो कौन सी मोदे कर सक बोले
1: मतलब कि जैसे बोले तो वह चाहे हर कोई के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन जुन
0: हाँ, लेकिन हम बोलती किसान के जितना खेती हरम के सुनता उन लोग के डायरेक्ट नहीं जाए के रिटेल आउटलेट में खरीदारी करे सबसे पहला फागे को ब्रांच में जाइए हुआं पर ही अपन ओकर तोहर समस्या के तुलना हुई तब ऑफिशियल तोहरा बोली
1: अच्छा हमने बात कर रहे थे जब शंभू जब पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला हमने देखी ला जा खाली कारों में बड़का मात्रा में नहीं होला अब कई जना अपन जो बैकयार्ड गार्डनिंग करे लन जा रूफ गार्डनिंग आजकल हमने देखा थे जा काफ़ी चर्चा में बाटे तो हवो पर ही तो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला सकेला होला कम होला कमती होला ढेर होला मिसमा इस्तेमाल होला तो उ लोग कैसे करे लंजा और उन लोग खातिर कौन सी चाहेला इस्तेमाल करे कि कहे कि घर जब शिक्षों के सोशल में हमने रहे था ऐसा तो हमने चाहेला देखे कि पड़ोसी बा हैजा शके सकेला एगो अस्टेबल बाटे तो कैसे होला
0: अच्छा देखा जे भी रेजिडेंशियल में बा जो रेजिडेंशियल में बा घर पे यानी कि घर पे बाकी और में जैसे बोला आंगन में या फिर रूफ गार्डनिंग वगैरह में उन लोग की एगो समस्या बा आज ही तू सोचा तो कि तोहर समस्या खातिर चला वो पेस्टिसाइड के प्रयोग करे के तो हम तोरा बोला खेती बाड़ी छोड़ दो काहे बोलता है आज तू अपन आंगन में तनि सुन खेती बाड़ी कर तोरा पेस्टिसाइड डाले के बा तब तोहर आंगन में खेती बाड़ी करे के कौन लाभ बात है जा बाजार में खरीद दो आज अपन आंगन में तू खेती बाड़ी कर तोहर अपन स्वास्थ्य खातिर अपन परिवार के स्वास्थ्य खातिर तोहर परिवार के ओकर सिक्योरिटी आलिमोटे खातिन किसी पर सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल खातिन तोहर लामोताज में रहत तू ऐसा एगो एक्टिविटी करता ऐसा एगो खेती बाड़ी करब जोन में रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं करब तब ना जाके जनब आखिर में कि देख जोन हम आई खेती कर लें घर पे ओकर में रासायनिक पदार्थ नहीं बाकर स्वाद ऐसी बातें जोन बाजार में खरीदते हैं ओकर स्वाद और दूसर कहते बातें तब ना जाके जनब तो ऐसा में हम बोलती कि जो इन लोग घर पे करते हैं जा तोहरा चाला प्रयोग नहीं करे के एक रासायनिक पदार्थ के
1: तो लोग कौन चीज इस्तेमाल करें
0: ढेर अनेक प्रकार के चीज बा जो प्रॉब्लम बा कैसे मुजदफी के प्रॉब्लम बात है लाथाप बातें लाथाप के प्रयोग चला करे के कृषि मंत्रालय के जो विभाग बातें एंटोमोलॉजी डिविजन एंटोमोलॉजी लोग लाथाप मुफ्त में देवे लंस ब्लॉक मात ब्लॉक जो बा देवे लंस सोल्यूशन देवे लंस वगैरह
1: वगैरह
0: फल के फल के हाँ तो सब्जी में सब्जी के भी और सोल्यूशन से कला प्रयोग करें तो और भी मार्केट में अनेक प्रकार के दूसर कहते लाथाप बातें कैसे येलो स्टिक की थाप ब्लू स्टिक की थाप फेरोमोन बातें वगैरह वगैरह और यू से यदि काम नहीं चली तो आई नहीं भूलिया कि बीओपेसिसिड भी बातें अब बीओपेसिसिड जैसे बोलने एकाध गो बीओपेसिसिड तो ब्रोड स्पेक्ट्रम से नहीं छा मैं एकाध गो बीओपेसिसिड बातें जो सक बचा प्रयोग करें तो ये फागे के ओर रह जा हमने सकब सा थोड़ा जस्ती खुलासा दे कर में और एक चीज़ बातें कि घर पे जब खेती बाड़ी कर बजा तो तोहरा एक को कैसे बोला सा प्रेशो ने बात तोहर पर कि जाके वो मनोकिलचिया करब कि कैसे तोहरे कन्या छोटा सुन टुकड़ा जमीन बाटे तो ओकर पर खाली जेब एक चीज़ रुपये तो हई नहीं छाला करे के हाउ टुकड़ा जमीन पर अनेक प्रकार के चीज जितना टुकड़ा तोहरा सकब उतना डाल दिया उतना जीवी डाल दिया देखब एक को ही समस्या तोरा नहीं हुई
1: बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी जो देवत हो हमने आशा करे था जा जितना जना अभी निमन से सुनत हो जा जो खेती बाड़ी वो सब करे थवन जा वो लोग के ये सब बतवन दिमाग में निमन से

0: घुसा था और निमन तरीके से जो पेस्टिसाइड बातियों का इस्तेमाल कर रहा था वजह और
1: देखला कैसे हमरे ढेर कोई आके भेंट के ला बला जी उदाहरण के रूप में देवाते हैं आंवलन सब के भेंट करे बिलंचा हमारे लगे एगो नींबू के पेड़ बा नींबू के गौछी बा तो ओकर में थोड़ा वाइट फ्लाई बा या फिर पत्ता में कड़िया कड़िया होता कुछ छाला करे के कोई से पूछा हम हमेशा लोग के बुला बिलंचा हम लिए कुछ छाला करे के तुम्हारा लगे एगो वॉशिंग मशीन जो वॉशिंग मशीन नहीं हर महीना खाली एक में मार दिया तो जो वाईफाई बा गिर जाए जो करिया रहे वो सूटी मोल वो भी निकल रहा है तब बिलंसा देखा तब हाई कर फिर से आए तब बिलंसा जब पेशिशा के प्रयोग कर फिर से नहीं आए तो पड़ोसी लगे हो तब समस्या बात है तो पड़ोसी लगे से आए तो कौन चीज उलझेल खाएला में खाली पानी डल समस्या के समाधान हो गल तोहर नींबू में पेशी कुछ नहीं रही
0: जी
1: कौन जैसी अच्छा बात है
0: जी तो भाई शंभू हमने के बतावा अभी बोला था हुआ जैसे लुगिद एग्रीकल बातें हो जा परी बोला जला कौन सब्जी कौन फल में कौन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उस सभी के इस्तेमाल होला तो एक अलावा कहूँ और बातें जब पेस्टिसाइड की खोज करत हुआ जाना था हुआ जाने के कि एक बारे में ट्रेनिंग कुछ हो बातें कैसे
1: हाँ एक बार गिदा एक 2019 सब्जी के हैं मैं फूई नहीं है जैसे फल अच्छा। नहीं है फल खाते अलग अलग के दूसर प्रकार के पब्लिकाश हुआ तो एक अलावा गिदा एक 2019 के अलावा एक आध गो और चीज़ से कल्लाई करी एक गो तो हमने के जो दफ्तर बा 16 दफ्तर बा क्रॉप एक्सटेंशन के टापू में तक बजा को नोएंगो दफ्तर में जाके वहाँ पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करी फिर बा हमने के ट्रेनिंग हमने को ट्रेनिंग दिला सा ट्रेनिंग के नाम है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ओकर में जितना प्रिकॉशन लेके बा कैसे हो पेस्टिसाइड्स के लेबल के चला इंटरप्रेट करे के कहाँ कहाँ वगैरह वगैरह जानकारी मिली कैसे चला बच्चे के वगैरह वगैरह कैसे चला पेस्टिसाइड की तैयारी करे के सब चीज हो ट्रेनिंग में थोड़ा सब जानकारी मिली और फिर बा जो आई लेबल बातें पेशिस्ट की लेबल वो तो कानूनन दौर पर रहेला तो ओकर में भी चाहेला ये सब इंफॉर्मेशन रहे के ताकि जे भी प्रयोग करे के बा प्रयोग करे के रही पेशिस्ट के तो ओकर में सके अनुसार दिखे एगो चीज़ बोल देला और क्योंकि पेशिस्ट के बात करते हैं सर तो जो कानून बातें यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के वो स्पष्ट रूप में बोलेला कि जितना कोई के भी पेस्टिसाइड के प्रयोग करे के बा वो लोग के ओब्लिगेटोरी में चाहना हो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रह के यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के वरना कानूनन दौर पे एगो ऑफेंस करा तो
0: एक जना हवा नुंकरा सुनी ला जा हेलो
2: हेलो नमस्ते बहन जी
0: नमस्ते भाई जी
2: और भाई जी को भी नमस्ते और उनको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद
0: बोला
2: तो मैं हूँ धनेश्वर चौवा जवेल सी तो हमार अनुभव से कुछ बॉटअप और बोले चाहना चाहिए
1: बोला
2: सुन रहा
1: हाँ बोला
2: तो मॉरिशस में जब से लेबिसिड आल तब से देश लगल प्रगति करे और मजदूर भाई लोग के काम करे के तनी फासिल हुल और हैने में कानीजा शौक कुपकानी सवाल ये सब के छोड़ दो तो किसान भाई के चाहेला जाने के कि ओकर लपागे कितना गालों की हो तब ओके चाहेला जाने के कि एक गालों में इतना दवाई हुआ चाहिए डाली की जैसे कि एक दोम में कागन सैंक गालों तब एनलीट में मिल से तो कागन सैंक गालों वहाँ जिविजे का रिपोर्ट मिल से हुआ तो ओके एन गालों के मिली तो ओकर गा ओकर लपागे 5.5 गालों के हो तो डिसिप्लिए करी तो ओके एक लपागे की दवाई हुआ एग्जैक्ट डाली कि नहीं हो कि जब दवाई फिनी होगा तो गप से एक मुठा लेके उसमें से एक मुठा डाल के बस लेगी मुआ में डाल दे रख अब तू यहाँ होशियार हो कितनो कुछ जब तोहर प्ला में आल तबरी पिलवा मरल अबरी तू सब मर गई रह तो है सब और घर के आगी चेहरा जाने के पंगर पड़ोसी के जो पड़ोसी के वास हैं लोग के ओकर घर में बच्चा जन्म ले ले बा कौन के ओके चाहिए दवाई से अभी करेगी जमे हो लड़का के वाजे के कोई क्या अपेक्षा नहीं करी ऐसे की जोद है पोपलेमूस बा हुआ एगो ताबिस्मो बा हैने माउथ सुगई स्ट्रीट तो हम वहाँ पर ही सादा काम कर रही और तो वहाँ पर ही जब दवाई डलाई जब डालब से

0: প্রত্যাহ আপনাকে জানে কি কোন দাবাই এন মিল ডিস্টেন্স বা মাউথ সে পোপলি মুস তো আপনাকে চাহেরা জানে কি ওকার দাবাই রহল জেসে ইয়ালিন আমিনসল আক্রিল ইসব নেই সে আবি হবি তো হুয়া তে সে আগল বস ইবাই আগে রাউন্ড আপ নে রহল বাদ মে আল তে সে আ ইসব ক্লোরাক সে ডাল কে জমে হুয়া পলি আউ আফেক্টে নি গলি জো দেঙ্গি तो इसब नियम है तो आदमी लोग के प्लांटे के पहला खूब सोच समझ करके अपन मेलाउंस करके और एकर में जो बातचीत करब सकती तब बहुत लंबा बा गोनोम लोग सब बा अपने धन्यवाद हमारा जो बोले कर हम बोल दे ली बहुत बहुत धन्यवाद
1: तोरा भी बहुत बहुत धन्यवाद चचा
2: जैसे चचा बोलत हवन बुझा था वो जाने लानी सब चीज के बारे में
1: कि खेती हर लोग तो जाने लान सब लोग के लिए एक्सपीरियंस भी बातें और अच्छा अनुभव भी बातें
2: जी
1: खाली अनुभव नहीं अच्छा अनुभव भी बातें दो को चीज चचा बोलन एक बोलन जब स्प्रेइंग कर बात अच्छा जाने के कि सावधान चला रहे कि असुविधा नहीं हुई है जो नागरिक बातें वो चिबेबे बच्चा के बाद बोलन स्कूल भी बातें
2: बीमार आदमी
1: हाँ सब चला जाने के जब एगो एगो देखा हमने हमने कार्यक्रम में देते चिन्ह से किला सा बोले मैं जब बोले सा ड्रिफ बोलेला जब महकेला तो कैसे महकेला वो परफेन है वो प्रोड्यूए हुए आवे था ऐसे ही कोई स्प्रेइंग करे के ला रहे के पास में स्कूल बा पास में एगो घर बाते घर में बच्चा रही या बड़ा आदमी रही
2: सब कोई के सब साथ में पहुंचा
1: सब कोई असुविधा हुई तो इस सब चला देखे के और चचा बोलन एगो चीज कि चला जाने के कितना कितना खेत में गंदा पानी के प्रयोग है ओके बिला सा काली बाश हो तो यानी कि एगो फौजी कैसे जाने ला सा साधारण रूप में बोलते हैं कैसे जाने ला सा ओकर डोजा सा NML पॉलिट अब एगो चीज बात हम इन्हें चला DML 3ML 0.5ML डाले के पॉलिट चला NML पॉलिट डाले के
2: चला
1: ठीक से चला न ओकर सही मात्रा में ओकर मेजर करे के नापे के तब चला प्रयोग करे के अब एगो खेत में गनला स्प्रेइंग करे के बा ओकर में गनला 100 लीटर जाए पानी 100 लीटर जाए अब तू लेके तैयारी करवा 200 लीटर के तो नहीं अच्छा बात है ना तो 100 लीटर के कौन चीखा बता जाके फिर से ओकर में स्प्रे कर बता ओवर स्प्रे हो जाए तो वो कारण चला काली भाषों करे के तोरा चला जाने के कि एगो आज एगो 60 मिनट 25 मिनट काहे के खेत में तो कितना पानी जाए तब हौ के आधार पर तुहर तुहर एक बीघा बाया कितना बात है ओकर आधार पर का किले तो कितना पानी जाए तब ओकर तैयारी करवा अब एगो खेत में गला टमाटर बात है टमाटर छोटा पौधा बात है अब एगो जर अब खेत एक दो महीना के बाद टमाटर तो बढ़ गल अब बड़ा बा तो ओकर स्प्रेइंग पागे नहीं रही पानी के मांग जो रही पागे नहीं रही चला काली भई करके चला जाने के कितना पानी के कितना पानी लगी ओकर अनुसार तुहर तैयारी करेगी
2: तो कोनो डिफरेंस बातें जो क्रॉप्स बातें जो पेस्टिसाइड बियो पेस्टिसाइड ना तो जो नेचुरल वंस की इस्तेमाल कर रहे थे कोनो डिफरेंस बातें
1: कौन सी पर आए डिफरेंस
2: जो जो क्रॉप्स हम बोले था हाँ, जो कर, जब ओकर में जो पेस्टिसाइड ना तो बियो पेस्टिसाइड ना तो कैसे
1: तो पहला जैसे बोले जाता जब पेस्टिसाइड के जब जैसे हमने उदाहरण दे लिया तो कौन पीला बातें चला जाने के कौन बीमारी बातें चला जाने के तब सब चला चुने के ना लेकिन सब पेस्टिसाइड नहीं सक बस सब कहते सब्जी पर प्रयोग करे या पौधा पर प्रयोग करे एक आध गो पेस्टिसाइड नहीं प्रयोग करा कैसे एगो उदाहरण दे रहा थोड़ा एगो फौजी बा केमिकल ओकर माची आक्चिफ है चियोफानात मेचिल चियोफानात मेचिल बीमारी के खिलाफ प्रयोग होला और वो सिस्टेमिक है सिस्टेमिक यानी जैसे जब स्प्रेइंग करबा तो जन पत्ता वगैरह बा पौधा बा ओकर में ढुक के अंदर प्रवेश करके ओकर में चलेला तो जितना पौधा सिस्टेमिक रहेला वो जस्ती लेता ले वेला जैसे समय ले वेला ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल जैसे लंबा रहेला क्योंकि वो तो पौधा में प्रवेश कर दिले बा ना अब एगो लीची ले बा एगो लीची जब सेमे कर ले हुआ प्लाटू वगैरह में तब जब ट्रांसप्लांट करबा मिनिमम 22 दिन में सकबा ओकर रिकॉल्ड कर दे 30 दिन में चाहे ला रिकॉल्ड हो के नहीं तो ओकर बाद लीची के ओकर जन बिगड़े लगेला तो चुफनात मेचिल के ओकर ओकर रेमानोस ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल इतना ले लंबा है तो आज तो लीची में एगो समस्या आल गन 20 दिन

0: के बा अब जाके ओकर में डालबा तो तोरा 25 दिन में रिकोल्टी करे के बा तो 20 दिन पैदल 5 दिन तक डालबा तो कैसे रिकोल्टी करबा देख ला तो ये सब एगो लॉजिक भी चला हमने के सेवी करे के अतने करिया कि एगो इंस्टीट्यूशन तोरा बोली देखा हा एगो प्रोड्यूस सिस्टेमिक हा ओ खातिन रिकमेंडे नहीं होता आज हमने एगो प्रोड्यूस एगो लेगिम पर नहीं रिकमेंडे करता है सर तो हमने के तला कोनो ना कोनो एगो गंभीर कारण चला रहे कि ना वो खातिन हमने को पाप प्लेजियर मतलब पाप प्लेजियर ने बोला सर आ चला है दलिया ऐसे नहीं कहला सर ना तो जानी ला जा आज ऐसा नहीं को पेस्टिसाइड के बोला जा डाले के ऐसा नहीं को प्रोड्यूस पर जन ओकर लाइफ साइकिल छोटा है तो प्रॉब्लम हुई अब खाली है नहीं बात लीची के तू पकावेला नहीं ओके जैसे बोला रो प्रयोग होला खाला कंचा सलाद के रूप में ऐसे ही अनेक प्रकार के ऐसा चीज बात कॉन्डिमेंट कैसे सेलेरी बात है पेयसी बात है उधर लाओ से तुर्की डाल पकवान में तो जितना चीज रो खाए ला जा ओकर में चला हमने के ज्यादा सावधान रह के
1: अच्छा
0: जन पकेला भी क्योंकि एक आगो रिसर्च बतावे ला आजकल कि ओकर लापो छिल्ला ओके धोईला लापो छिल्ला तब लेके पकेला तब भी 50% पेस्टिसाइड रहेला
1: तो अभी आजकल हमने ढेर बायो प्रोडक्ट्स पर बतियात है जा तो कोनो इंसेंटिव बाटे सरकार दने से फागे दने से जमी जो खेतीहार हो जा न तो कोई भी जन खेती बाड़ी सब करे थे जा ये सब जो बायो प्रोडक्ट्स है उस सब के फायदा उठाई जा
0: हाँ फागे लगे नहीं डायरेक्टली नहीं लेकिन एगो दूसर ऑर्गेनाइजेशन बाटे ओकर नाम स्मॉल फार्मर वेलफेयर फंड ओकर लगे एगो स्कीम बाटे ओकर नाम है बायो सब्सिडी प्रमोशन स्कीम माफ कीजिए और नाम ठीक से याद नहीं होता लेकिन बायो सब्सिडी पर एगो स्कीम बाटे जहाँ पर तू सकबा बायो पदार्थ जो बाटे बियो पोजी बियो बा ओकर खरीदारी करे और ओकर पर तोरा एगो सब्सिडी मिलेगा आगे जोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहल तो ये स्कीम से लाभ उठाए खातिन जोरा चाह या एगो बायो फार्मर रह के या तो फिर इडोपोनिक रह के या तो फिर मोहिगाप के वो सर्टिफिकेशन रह के हाई तीन गो चीज़ खाली खरीदते हैं लेकिन हमने देखा था जा कि कैसे सरकार जो ना हुआ था अभी जो बजट में बा थोड़ा बोला था सेफ फूड प्रोडक्शन तो यानी कि हमने के मन बा कि जो जो सब्जी आवा था मंडी में चला सेफ रह के तो एक वो चीज़ कैसे सकेला हुई जन एक होता सब बायो ही करे पोजी नेचुरल जैसे बोला सर नेचुरल फार्मिंग लेकिन एक दूसरा प्रकार से आज सकब जा केमिकल पे सिसाज के नए प्रयोग करे तो जैसे अच्छा रह ओकर पर ई अमल पर रखते हुए तो हाल ही में एगो एगो बैठक रहल जहाँ पर हम ही रहनी तो एगो प्रोपोजिशन करनी जा कि जन है बायो सब्सिडी जो स्कीम बाटे तो के थोड़ा खोल दे के ऊ खेती हर खातिन जोन फागे लगे आके एगो ट्रेनिंग स्वीप कर लेबा यूज ऑफ पेस्टिसाइड पर और ओकर सर्टिफिका बाटे काहे कि ई सब खेती है जोन ई ट्रेनिंग स्वीप कर देबा यूज ऑफ पेस्टिसाइड पर तो लोग अभी जस्ती अवेयर हो जैसे कॉन्शियस हो जैसे सेंसिटाइज हो कि पेस्टिसाइड के कैसे हानिकारक है कैसे चला फिर क्वेश्चन लेके वगैरह वगैरह तो ये लोग भी जेकर सर्टिफिका बाटे तो आज ई खुल जाए तब हमने बताए हो गल बाटे एगो प्रोपोजिशन कर ले सर तो आज ई प्रोपोजिशन आज रिटेनियर होल स्मॉल फार्मर वेलफेयर फंड के बोर्ड से तो जितना हमने के खेती हर बार यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के को स्वीप कर लेबा या फिर को स्वीप करी बाद में तो इस स्कीम सकी ओकर इस स्कीम द्वारा वो भी सकी लाभ उठाए और अनेक प्रकार के जो फौजी बातें बियो या फिर जो लथाप बातें ओकर में भी आए सब्सिडी के मिले
1: तो अभी हमने के कार्यक्रम के अंत लेख हमने पहुँच गए सर तो मोरिस में अभी जो पेस्टिसाइड के जो स्टेटस बा वो कैसे बा और उस सकबा बोले कि कुनो टेस्ट सब हुआ था कौन रिजल्ट मिला था
0: हाँ टेस्ट होला हमने नहीं करेला जा फागे नहीं करेला एगो डिपार्टमेंट बाते कृषि मंत्रालय के नीचे ओकर नाम है पेस्टिसाइड रेगुलेटरी ऑफिस तो एग्रीकल्चरल सर्विसेज के नीचे गिरेला कृषि मंत्रालय में तो ये लोग के ऑफिशे जोन होवन जा वो लोग जालन छ खेती हर लगे या फिर मंडी में या फिर सुपर मार्केट में जहाँ पर सब्जी बेचाता वगैरह फल बेचाता या फिर जोन एपोते होता ओकर वो भी एसोचो लेवन छा तो एक एसोचो लेके तब जाला फूड टेक लैब जो कृषि मंत्रालय के नीचे भी है तो फूड टेक लैब में जाके ये एनालिसिस होला तो हर महीना ये चलते जाला अब जैसे रिजल्टा के बोला तो गल साल के जोन 2025 के रहा तो रिजल्टा पे बिजली होलबा तो जो हमके याद बा बुलाते हैं लगभग 5% जो रहल 5-6%

0: Silta me local ba ki jon limit tha residue ke ओके दे पासे कर दे ले बा और लगभग 15% में लोकल बा कि जो पेस्टिसाइड के रेसिड्यू लोकल था वो पेस्टिसाइड रिकमेंडे ही नहीं रहा ता समस्या ता बाते ना ता लगभग ता लोकल ता लगभग 20-21% जो बाते एक अन में ता प्रॉब्लम बाते ता एक अपर काम होता कि ती हर लोग के कांटेक्ट के ला जा पेस्टिसाइड रेगुलेटर ऑफिस कांटेक्ट के ला हम यो भी कांटेक्ट के ला जा लोग के समझा ला जा कि जो प्रयोग कर ले हुआ उन्हें छा बाते ता हमने के बार बार किसान लोग एगो चीज बोला ता जोन पोजुआ प्रयोग कर ली ता मार्केट में बाते ता हाई एगो प्रॉब्लम बाते मार्केट में ढेर सन पोजुआ वो मार्केट में सकेला होई मैं उस सब्जी पर कोई कमोदी नहीं बाते ता एक पर भी चाह अमल करे के
1: चाहेला निमन से सोच समझ के अमल करे की जैसे बोला था वो हमने के कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ था जाय से आगे कौन ची बोल और एगो अंतिम प्रश्न तोहर से पूछा काहे की तू एगो प्रोफेशनल हवा एक क्षेत्र में ता आगे सकेला 5 बरिस 20 बरिस लेक हमने के जन मोरिस बाते वो सकेला हो एगो पेस्टिसाइड फ्री कंट्री
0: जहाँ वोलोंटे रहेला जहाँ कैसे बोला था
1: there's a will there's a way
0: हाँ आज हमने के मन बा इ मार्ग पर चले के तो सकब जा और एक यही दृष्टि में हाय दो को चीज होलवा हाय अभी बीजे में एक होता बीजे में देख बा एक वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है 25x35 तो वो फ्लैगशिप प्रोग्राम में देख बा एक वो विजन बाते कि जो 10 साल आवे तो अभी 2035 ले तो हमने के चाहे ला ऐसा नहीं को कृषि अपनाए के जो न फॉरेन एग्रीकल्चरल इनपुट के कम मात्रा या नए प्रयोग हुए तो जब बोला सा फॉरेन एग्रीकल्चरल इनपुट कम मात्रा या नए प्रयोग हुए तब कौन चीज़ है उसका मैं पेशीसी भी बातें तो एक अर्थात ये भी बातें कि हाई 10 साल जो आवाज़ था हमने के चला ऐसा सिस्टम प्रोडक्शन अपनाए के जो जैसे रेजिलिएंट होने से जो नेचुरल फार्मिंग की ओर जाता एग्रो इकोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग की ओर जाता तो ये कुछ संकेत बातें और फिर जो फाइनेंस बिल जो प्रोपोजिशन पास के ट्रावेसी कराए के पॉलमा में तो में देख पहला हला मॉरिशस में एगो अच्छा चीज बा फूड सिक्योरिटी पर एगो डेफिनेशन अनले हो जा जो में फागे ही होकर पर दस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था काम करे के और जो चीज इंटरेस्टिंग बात है वो फूड सिक्योरिटी में अब एगो सब होकर में आलबा सेफ फूड यानी कि अब सरकार बोलता देखा फूड सिक्योरिटी खाली ही नहीं है कि चला जा पोजुआ करे ताकि मंडी में हमने के नागरिक लोग के सब्जी वगैरह मिली नहीं जो सब्जी मिला था ओके चला सेफ भी रहेगी तो ये हमारे देखे में एक बहुत बड़ा संकेत सरकार देवा था कि आप चला सेफ फूड पर भी अमल करेंगे और चला इस दिशा में चलेंगे
1: तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी आप हो सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर फागे दाने से तो एगो शब्द है जा परी ढेर चीज बोल लीजिए जहाँ चाहबा हो जा परी रहबा सेफ फूड सिक्योरिटी जे निमन से रोपाई करब निमन से जुन जुन चीज पोजवी इस्तेमाल करत हो वह बियो पेस्टिसाइड हो तो स्वस्थ रहिए अपन देश के स्वस्थ हमने सब बनाब जा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम।

0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। अनाबेल सवाबादी, टोनी अपोलो और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बनने वाले हैं। आज स्टेट हाउस रेजवी में सरकार के तीनों सांसद राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ लेंगे। पर्यटन, खेल और पर्यावरण मंत्रालयों को नई सरपरस्ती मिलने वाली है। खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मुर्शस अधिक आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-2027 में ऐलान 25/35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। कृषि जमीनों को ढूंढना, रणनीतिक रिजर्व्स की मजबूती और इलाकाई सहयोग लाकर अधिकारी मुर्शस में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। सांसद वेरोनिक लुगोविन का पति गुलशन आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए। उन पर दो अस्थायी इल्जाम दर्ज हैं, एक गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए। पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई है और वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती एक क्लिनिक में की गई। आजू और रिनन टापू के एंटी स्टुपेफिएंट दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं। गए शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये शक है कि वे रिनन टापू और मुर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। कॉमनवेल्थ खेलों का अगला संस्करण भारत में लगाया जाएगा। इस साल हमारे एथलीटों ने मॉरिशस के लिए 4 मेडल्स जीते हैं। ग्लासगो में हमारे देश के लिए नया इतिहास रच दिया गया है। रेमी फेये को जूडो में गोल्ड मेडल और पैरा एथलेटिज्म में नोएमी अल्फोंस को 2 चांदी पदक और बॉक्सिंग विधा में मेविन क्लेयर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ। 14 लोग मारे गए जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल। उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रिजर्वर रोड गांबे में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुसनावती लीलू पैदाइशी नाम तायमान, जो आशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रिजर्वर रोड गांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज त्रिवली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: You're listening to our

0: आपके सितारे
1: सोमवार 3 अगस्त घड़ी मिला लीजिए 4:10 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का स्वागत है आप सभी का वेलकम है मैं हूं सुमी और आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए कैसे हैं आप ठीक तो है ना और चलिए देखते ही देखते अगस्त महीना शुरू हो चुका है अगस्त महीने की आज 3 तारीख है और देखते ही देखते ये साल भी खत्म हो जाएगा आजकल समय इतने जल्दी जल्दी बीत रहा है कि क्या कहें है ना लेकिन चलिए हम यहाँ पर हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक आपके सितारे जो प्रोग्राम है चलने वाला है और पहला जो हमारा गाना था बड़े दिल वाले फिल्म का ये तराना था गाना सुनकर आपको अंदाज़ा हुआ कि आज किन पर हम बात करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा हुआ ही होगा है ना जी हाँ आज आपके सितारे प्रोग्राम होने वाला है किशोर दा के साथ कल 4 अगस्त को इनकी जन्म तिथि है 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को ये चल बसे थे तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो होगा किशोर दा पर उनके गाए हुए खूबसूरत गानों पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें करेंगे इनके करियर से जुड़ी कुछ बातें करेंगे और आपका प्यार भरा साथ हमें मिलेगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं जी हाँ 5250-6200 है नंबर हमारा अगर आपके कोई डेडिकेशंस है तो बेशक आप हम तक पहुंचा सकते हैं ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है लेकिन आप डेडिकेशन तो कर ही सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं इस गाने के साथ

0: के सितारे।
1: चलिए आज तो हम ये भी नहीं पूछेंगे कि उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि किशोर दा के गाने ही ऐसे हैं कि कौन भला इसे एंजॉय ना करे। चलिए यहाँ पर किशोरदा के फैंस के नाम आज का हमारा जो प्रोग्राम है हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, जो हमेशा बड़े प्यार से हमारा साथ देते हैं। और चलिए यहाँ पर इनके गानों की जो बात है क्या कहे, इनके जो स्टाइल है, इनका जो अंदाज़ है क्या कहे। चलिए यहाँ पर कुछ खूबसूरत गाने ऐसे ही बैक टू बैक आपके लिए हम जोड़ते रहेंगे। ऐसे किशोरदा जो है सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं बल्कि म्यूजिशियन और एक्टर भी रहे हैं। काफ़ी फिल्मों में जो है इन्होंने एक्टिंग भी की है और अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए ये बहुत ही जाने जाते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड डायनामिक सिंगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। जी हाँ, इतने पॉपुलर गाने इन्होंने गाए हैं कि क्या कहें। और इनका जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है, शायद ही कोई ऐसी शैली होगी जिसमें इन्होंने गाना नहीं गाया हो। हंसी मजाक वाले गाने तो ये गाते ही है, रोमांटिक तराने भी उतने ही बखूबी से गाते हैं, और अगर दर्द भरा कोई नगमा हो तो वो भी जो है ये बड़े ही प्यार से गाते हैं। तो चलिए यहाँ पर रोमांटिक गाने की बात हुई है तो हो जाए ये तराना। ब्लैकमेल फिल्म से लिया गया, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो चलिए आपके भी दिल के करीब कोई है, उनके नाम कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं ऑन 5250 6200 पर ऑन रेडियो मनोरंजन इन या आपके सितारे।

0: आपके सितारे।
1: चलिए यहाँ पर आपके सितारे ये प्रोग्राम है ऑन रेडियो मनोरंजन और आज हम किशोरदा जी के बारे में बात कर रहे हैं। कल इनकी जन्मतिथि है 4 अगस्त। ऐसे जैसे कि हमने कहा ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आप साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार जो है वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश

एक्टर थे, तब किशोरदा जो है ये इन्होंने गायकी की ओर सिनेमा में रुख किया था और धीरे धीरे गायकी के साथ इन्होंने एक्टिंग भी शुरू की और काफ़ी जो है अलग अलग तरह के गाने इन्होंने गाए। अगर इनकी बात करें तो इनका नाम जो है आभास कुमार था और फिल्मों में आने के बाद इनका नाम आभास कुमार से किशोर कुमार बन गया और जो है ये उस समय कोरस में गाया करते थे और बॉम्बे टॉकीज़ में, और फिर जो है अपने भाई के साथ जहाँ पर इन्होंने काफ़ी काम किया है वो डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश थे जिन्होंने किशोरदा को गाने का मौका दिया। जी हाँ, गाने का मौका दिया जिद्दी इस फिल्म में जो रिलीज़ हुई थी 1948 में। उसके बाद इन्हें काफ़ी जो है गाने का मौका मिला फिल्मों में और एक के बाद एक ये गाना गाते गए और धीरे धीरे जो है अपने करियर में आगे बढ़ते गए। तो चलिए अभी के लिए जो गाना हम आपके लिए चलाने वाले हैं, इस धुन से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा ये कौन सा गाना है। ऑब्वियसली इनके करियर के बेहतरीन गानों में से एक है। जूली फिल्म से लिया गया ये टाइटल ट्रैक आप सभी के नाम।

0: के सितारे।
1: चलिए उम्मीद करते हैं इन सभी गानों को आप भी गुनगुना रहे होंगे और देखते ही देखते यहाँ पर 4:45 बज चुके हैं। और किशोर दा के बारे में क्या कहें, वो जो है काफ़ी इंस्पायर थे अपने करियर के दौरान हॉलीवुड के एक्टर सिंगर डैनी केन से, और वो उनकी पोर्ट्रेट जो है अपने रेसिडेंस में लगा कर रखते थे, हर रोज़ जो है उनको देखा करते थे, उनसे इंस्पायर होते थे, और बाद में अपने करियर में भी ये सिंगर के साथ साथ एक्टर भी बने और काफ़ी जो है इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इनके जीवन में। और इनकी बात करें तो काफ़ी ऐसे गाने हैं, काफ़ी ऐसे फिल्में हैं जिन्होंने इन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। चलती का नाम गाड़ी, जिसमें ये तीनों भाई एक साथ नज़र आए थे, अशोक कुमार, फिर किशोर दा और उनके छोटे भाई, फिर हाफ टिकट, ये फिल्म में इनकी एक्टिंग को बहुत ही पसंद किया गया, यानी कि कॉमिक कैरेक्टर में इनकी एक्टिंग जो है लोगों ने बहुत ही पसंद की। वहीं पर इन्होंने हमने पड़ोसन इस फिल्म में भी देखा था, जहाँ पर ये नज़र आए थे महमूद और सुनील दत्त जी के साथ, पड़ोसन की बात हुई थी। थोड़ी देर में पड़ोसन फिल्म का भी गाना हम ज़रूर आपके लिए चलाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो गाना हमारी लिस्ट में है वो है आंधी फिल्म का ये तराना।

0: के सितारे।
1: चलिए यकीनन प्यार तो हो ही रहा होगा इन गानों को सुनते सुनते। और यहाँ पर प्यार की बात करें तो किशोर दा के रोमांटिक गाने इतने कमाल के हैं कि क्या कहें। वैसे किशोर दा ने अपने टाइम के काफ़ी बड़े बड़े जो हैं म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोजर्स के साथ काम किया। ऐसे वो एस डी बर्मन साहब थे जिन्होंने किशोर दा के सिंगिंग टैलेंट को जो है स्पॉट किया था। मशाल फिल्म जो 1950 में आई थी, बर्मन साहब जो है अशोक कुमार के घर गए थे, वहाँ पर वो किशोर दा को केएल सहगल की आवाज़ में जो है गाना गाते हुए उन्होंने इनको सुना था। ये केएल सहगल साहब को इमिटेट कर रहे थे और वहीं पर जो है सहगल साहब ने इनके भीतर जो छुपी कला थी उसे पहचान लिया था। और एस डी बर्मन साहब की बड़ी इच्छा थी कि किशोर दा जी जो है देवानंद साहब के लिए गाने गाए। 50 और 70 के दशक में जो है इन्होंने काफ़ी गाने इन्होंने इनके लिए गाए। और देवानंद जी की बात करें तो मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, तेरे मेरे सपने, ज्वेल थीफ, गाइड जैसी फिल्मों में किशोर दा ने ढेर सारे गाने जो है इन्होंने गाए हैं देवानंद साहब के लिए। और चलिए देवानंद जी की बात हो गई तो गाइड फिल्म का ये गाना हो जाए। ऐसे लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी अन्य फिल्म भी थे जैसे कि प्रेम पुजारी और तेरे मेरे सपने। इन फिल्मों के लिए भी इन्होंने देव जी के लिए गाने गाए हैं।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम हम करते हैं, आप सभी का स्वागत हम करते हैं। दिस इज योर आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन। और आज हम किशोरदा जी पर बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है, बातें हम कम ही कर रहे हैं, गाने ज़्यादा चला रहे हैं, क्योंकि उनके गाने ही इतने कमाल के हैं। मानो कि 2 घंटा अगर हम इनका गाना चलाएं ना, वो भी कम है। ऐसा लगता है कि 4-5 घंटे भी कम पड़ जाए। और चलिए प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं इस समय। विजया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही के नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच विजया जी। और विजया जी को तुम आ गए हो नूर आ गया है, आंधी फिल्म का ये गाना बड़ा ही पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो किशोरदा के शायद ही कोई ऐसे गाने होंगे जो हमारे दिल को नहीं भाते हैं, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और अगला जो तराना है यहाँ पर आपके नाम हम करेंगे विजया जी इस समय। चंदनी पुरुषोत्तम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चंदनी जी, ऐसे ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप हमारा साथ दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये अगला गाना चलिए चल पड़ा, हर जाई फिल्म से लिया गया, आशा जी और किशोरदा की आवाज़ों में।

0: आपके सितारे।
1: यकीनन हर एक गाने इतने लाजवाब है कि क्या कहे। चलिए किशोरदा के बारे में और बात करें तो 70s और 80s के सालों में ये एक एस्टैब्लिश सिंगर के रूप में उभर कर आए और इन्होंने कई एक्टर्स के लिए कई गाने गाए, जैसे कि राजेश खन्ना साहब की तो आवाज़ ही थे किशोरदा। और राजेश खन्ना साहब के लिए किशोरदा ने लगभग 245 से भी ज़्यादा गाने गाए, लगभग 92 फिल्मों के लिए। पर किशोरदा की बात करें तो जितेंद्र साहब के लिए भी इन्होंने कुछ कम गाने नहीं गाए हैं और अमिताभ जी के लिए भी इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। जितेंद्र जी के लिए 200 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, अमिताभ जी के लिए 130 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं और देवानंद साहब के लिए

सौ से भी ज़्यादा गाने गाए। तो अगर हम इन सभी गानों की गिनती करें तो पता नहीं कितने हज़ार गाने जो हैं किशोर दा ने अपने करियर के दौरान गाए होंगे। और काफ़ी ऐसे गाने हैं जो आज भी बड़े कमाल के हैं। अगर हम बात करें ज्वेल थीफ के कई गाने, जैसे कि ये दिल ना होता बेचारा, आसमां के नीचे, फिर प्रेम पुजारी फिल्म का गाना, शर्मिली फिल्म का टाइटल ट्रैक, अभिमान फिल्म का गाना मीत ना मिला रे मन का, थोड़ी देर पहले जो अभी हमने आप लोगों के लिए चलाया था, और कटी पतंग फिल्म का तराना है ना। लेकिन अभी के लिए जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अवतार फिल्म का तराना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। लेकिन दिन महीने साल दशक गुजरते जाएंगे, लेकिन किशोर दा की आवाज़ को हम सुनते ही रहेंगे। कहते हैं ना कि कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनकी कला हमेशा रहती है।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे, आज हम किशोरदा के गाए हुए गाने आपके लिए चला रहे हैं। कल जो है इनकी जन्मतिथि है, सो चलिए यहाँ पर बात करें तो इन्होंने अपने करियर के दौरान जो है 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। और बात करें फिल्मों की तो आराधना फिल्म में जो गाना आया था रूप तेरा मस्ताना, इस गाने के लिए, फिर अमानुष फिल्म के गाने के लिए दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, फिर डॉन खै के पान बनारस वाला, देन थोड़ी सी बेवफाई, हज़ार राहें मुड़ के देखी, नमक हलाल का पग घुंघरू बांध, अगर तुम न होते फिल्म का टाइटल ट्रैक, शराबे फिल्म का गाना, मंजिलें अपनी जगह है, और फिर सागर फिल्म का तराना। जी हाँ, सागर फिल्म का जो गाना है सागर किनारे दिल ये पुकारे, इस फिल्म के इस गाने के लिए भी जो है इन्हें अवार्ड मिला है। तो अपने करियर के दौरान इन्होंने जो है 28 बार ये नॉमिनेट हो चुके हैं और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जो है एज अ प्लेबैक सिंगर इन्हें ने जीते हैं। उसके अलावा कई अन्य अवार्ड्स से भी ये नवाजे गए हैं। तो चलिए सागर फिल्म की बात हो ही रही है तो हो जाए सागर फिल्म का ये टाइटल ट्रैक किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में। इसलिए 80 के सालों में आई ये फिल्म भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। फिल्म में ऋषि कपूर साहब नज़र आए थे, कमल हसन थे, साथ में डिंपल कपाडिया थी। फिल्म की स्टोरी लाइन तो कमाल की थी ही, फिल्म के गाने भी लाजवाब थे, जैसे कि ये गाना।

0: आपके सितारे
1: चलिए आपके सितारे एंड थैंक यू फॉर एंजॉयिंग द सिलेक्शन इस समय कॉम्पोक्रोस से आंटी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी और किशोर दा की बात करें तो जहां पर वो बेहतरीन सिंगर है उन्होंने जो है एक्टिंग भी की है आपको पता है उन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट की है जी हाँ 1964 में फिल्म आई थी दूर गगन की छाँव में यह जो फिल्म है इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट ही नहीं की है बल्कि इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है फिल्म की कहानी को उन्होंने लिखा भी है फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की है फिल्म में गाने भी गाए हैं और साथ ही इस फिल्म में म्यूजिक भी कंपोज किया है और गाने के लिरिक्स को भी लिखा है यस चलिए बहुत से लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी हमें ही नहीं थी जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे रिसर्च कर रहे थे तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ तो चलिए दूर गगन की छाँव में जो फिल्म है 1960s

के सालों में आई थी जो किशोर दा ने बनाई थी, और किशोर दा की बात करें तो अगले गाने के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं। अगला जो गाना है, हमें पता है कि हमारे लिसनर्स के फेवरेट्स में शामिल है, मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गाना परदेसिया। जी हाँ, किशोर दा और लता जी की आवाज़ों में तराना होगा, और ऑब्वियसली जो गाना है वो पिक्चराइज्ड हुआ था बिग बी और रेखा पर।

चलिए इसी के साथ आपके सितारे प्रोग्राम के लगभग अंत तक आ चुके हैं। दो घंटे के इस सफर को आपने बहुत एंजॉय किया, हमें जानकर बड़ी खुशी हुई। परी का मैसेज आया है कि प्यारी सुमी जी, मुझे पता था क्या पता था आपको, परी जी कह रही अभी अभी काम से लौटी है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं परी आप भी ठीक है। तो चलिए इस आखिरी गाने की ओर हम बढ़ते हैं, और इस आखिरी गाने के साथ जो है आज का हमारा आपके सितारे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 6 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो बस ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे रेडियो मनोरंजन पर। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे, यानी कि 6 बजे के समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी। तो साथ देते रहिए हमारा। थैंक यू सो मच।

0: पेश हैं समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। वेरोनिक लुगोविन जूनियर कला एवं संस्कृति मंत्री की हैसियत से स्टेप डाउन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे उनके पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी के चलते ये फैसला लेने की मांग की। अनाबेल सावाबादी, टोनी अपोलों और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बन गए हैं। आज स्टेट हाउस रेजवी में अनाबेल सावाबादी और टोनी अपोलों ने राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मुर्शद सदीक आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी की संभावना उभर रही है लेकिन ईरान अमेरिका से बात करने से इनकार कर रहा है। नमस्कार और आदाब। प्रधानमंत्री ने कला एवं संस्कृति मंत्रालय की जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से अपने पद से स्टेप डाउन करने की मांग की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि अगरचे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन वेरोनिक लुगोविन के पति की गिरफ्तारी के कारण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अनाबेल सावाबादी, टोनी अपोलों और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बने हैं। आज स्टेट हाउस रेजवी में टोनी अपोलों और अनाबेल सावाबादी ने राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। चुनाव क्षेत्र नंबर एक ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी वेस्ट अनाबेल सावाबादी नई जूनियर मंत्री बन गई हैं। मेबर्ग और प्लेन मानियों के सांसद टोनी अपोलों को खेल मंत्रालय का सह संचालन करने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि चुनाव क्षेत्र नंबर 20 बुबासें पिची त्रिविया की सांसद कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय की जूनियर मिनिस्टर से जूनियर पर्यावरण मंत्री बनी हैं।
1: आई जिल्बेर टोनी अपोलों डू स्वेयर दैट आई विल बी फेथफुल एंड बेयर ट्रू एलिजेंस टू मॉरिशस अकॉर्डिंग टू लॉ।
2: I, Marie Annabel Andelena Savabadi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law, so help me God.

0: इस समारोह के बाद
1: प्रधानमंत्री ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने हम आपको बता रहे थे कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय की जूनियर मंत्री वेरोनिक लेगोविन से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि अगरचे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: Perception du monde, pourquoi t'as l'air de... À cause ça, une cause, des bons...

0: आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती क्लिनिक में की गई। आजू और रिन्यून टापू के औची स्टूपेफियों दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं। गए शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये शक है कि वे रिन्यून टापू और मॉरिशस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। काविंता पिसो करुणा लालू।
1: दोपहर को गुलशन गोविंद को आजसू के वस्तैन डिवीजन के अधिकारियों की सुरक्षा में रिवियनवा अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट प्रशांत बिसुन के समक्ष मामले के जांच अधिकारी ने तथ्यों को पेश किया। आरोपी के खिलाफ दो अस्थायी आरोप दर्ज किए गए हैं, कैनाबिस आयात करने का षड्यंत्र और कैनाबिस की रोपाई। गुलशन गोविंद पर रिन्यून में 156 किलो कैनाबिस मॉरिशस लाने की साजिश रचने का आरोप है, जिसकी लागत का अनुमान 234 मिलियन रुपए का है। मॉरिशस के लिए निर्धारित ये खेप 26 जुलाई को भापानो रिन्यून में जब्त की गई थी। दूसरे आरोप के तहत शामागल स्थित उनके घर की छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर 7 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 कैनाबिस के पौधे बरामद किए गए, जिनकी लागत 20,300 रुपये की होगी। गुलशन गोविंद ने पुलिस को बताया कि ये केवल उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए थे। घर से बरामद मेटाडोन की एक शीशी के संबंध में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने नशे की लत से बाहर निकलने के प्रयास में ये दवा प्राप्त की थी। जांच के लिए उनके वाहन को भी सुरक्षित रखा गया है। पुलिस फिलहाल सेफ सिटी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि उनकी गतिविधियों और आवाजाही का पता लगाया जा सके। पुलिस ने दोनों मामलों में गुलशन गोविंद की जमानत का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि उनके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। उनको पुनः मुक्का डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
0: अन्य खबरों में, खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मॉरिशस अधिका आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-2027 में ऐलान 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। कृषि जमीनों को ढूंढना, रणनीतिक रिजर्व्स की मजबूती और इलाकाई सहयोग लाकर अधिकारी मॉरिशस में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। अब्देल बुलाकी की रिपोर्ट पर गीता सुनारन का विवरण।
2: मॉरिशस के खाद्य आयात पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में ये 57 बिलियन रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 61 बिलियन रुपए हो गया। देश से बड़ी मात्रा में पैसा बाहर जाने से रोकने और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए बजट 2026-2027 में 25x35 परियोजना की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य है 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का कम से कम 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाए। शुक्रवार को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पारित होने के बाद इस राष्ट्रीय योजना की जिम्मेदारी फागई को सौंपी जाएगी। सरकार ने 2035 तक खाद्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली कृषि भूमि को बढ़ाकर 25,000 बीघा करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए भूमि उपलब्ध है। अल्टियो प्रॉपर्टी के सीईओ डेविड मौशाल कहते हैं,
3: il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut tirer la meilleure utilisation des terres à Maurice entre bien sûr les principales cultures comme la canne à sucre, l'utilisation des terres marginales qui sont unused, il y a quand même beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui à Maurice, et tous les enjeux de la diversification agricole pour que ce soit sustainable à Maurice.
2: ये योजना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखती है, विशेष रूप से मध्य पूर्व और यूक्रेन में जारी संघर्ष मॉरिशस की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण कुछ विशेषज्ञ कृषि के लिए मार्शल प्लान लागू करने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का पक्ष ले रहे हैं। अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तेंगाव कहते हैं,
4: aujourd'hui secteur privé, gouvernement, petite et moyenne entreprise, coopérative, si joignent tous ensemble pour un Marshall Plan, un plan d'avenir pour nous capable d'épanouir nous-mêmes pour nos alimentations. Mais ce qui vous aide, c'est l'imagination, l'innovation, et suffisamment de finances pour capable coordonner tout ce travail-là. Alors Maurice, avec

0: musulmane voisin, surtout Madagascar, qui est un grenier de sa région-là, nous capables de travailler ensemble et nous avons un produit capable de coûter très meilleur marché quand nous avons un système compétitif.
1: Quand on parle d'insécurité alimentaire, c'est qu'on parle également du capital humain. Donc derrière tout ça, il faut également travailler sur le capital humain pour que plus on est soudé, plus on peut se battre, plus nous pourrons gagner ensemble.
2: इलाके के खाद्य सुरक्षा के संभावित केंद्र के रूप में उभरने के बीच विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुनील बुधू ने मॉरिशस में एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। वे बताते हैं,
3: pense pour la création d'un agricultural processing zone. C'est un nouveau concept et qu'étant donné que nous avons la cour commerciale au niveau de l'Afrique avec plusieurs pays et l'Afrique où on a une abondance de produits agricoles. Et que mon pensée, nous capables de faire une chaîne de valeur entre Maurice avec un pays dans la région. Nous amenons ces produits-là, nous transformons autres. Quand nous capables de faire ça, vraiment, nous capables de faire Maurice Vin une destination comment dire, de processing.
2: Budget qui parit honne se krishi kshetra mein videshi shravikon ki tez bharti ka rasta bhi khul gaya hai. साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एसटीसी द्वारा एक नेशनल फूड रिजर्व स्थापित किया जाएगा।
4: उत्तरी क्षेत्र के खेतिहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। गन्ने के किसानों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने से कम जल आपूर्ति के चलते उत्पादन पर असर पड़ा है, इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। कुणाल डोजी ने उनसे मुलाकात की, विवरण करुणा लालू का है।
5: उत्तरी प्रांत के खेतों में अब सप्ताह में केवल दो दिन ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम। ये CWA द्वारा लागू कदम है। यहाँ त्रियोले में किसान वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। प्लास्टिक के बड़े ड्रम पानी के भंडारण के लिए एक व्यवहारिक समाधान है, रामदेव झिंगुरी ने कहा।
6: arroser, nous pouvons mettre médecine. Un foyer additionnel seulement, qui peut faire? Si vous ne pouvez pas amener, pas vous arroser, pas vous gagner.
5: यहाँ लगभग 100 मीटर दूर सहाय चंद्रलाल आशावादी नजर आते हैं। सीमित जलापूर्ति के बावजूद उन्होंने अपने खेत का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। टमाटर की फसल इस वर्ष अच्छी रही है। इस सफलता का एक प्रमुख कारण ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जो पानी की कमी के बीच सिंचाई का एक प्रभावी
6: तरीका साबित हुई है।
5: वही महेंद्रनाथ सिबालत ने भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेती में बदलाव कर एकल फसल की जगह अंतर फसली खेती अपनाई।
7: Parce que j'ai dit les fous, bon. Nous plantons que nous pouvons faire. À ce moment-là, nous plantons des riz carreaux. Mais des riz carreaux, on peut dire, on a si beaucoup de distance, mais la prochaine fois, planter là qu'il pouvait. Combien de jours il parlait comme ça? Tout ça, de l'eau, la pluie tombée là, tout ça, de la perte de la mer. Est-ce qu'il est fait provision pour ramasser de l'eau?
5: Northern Plain Irrigation Project की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। लगातार जल की कमी के चलते किसान अब इस परियोजना का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं, खासकर भूजल संसाधनों पर शोध और उनके बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश के साथ।
4: आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है। सभी तमिल दंपति आदि पेरिनतम पेरकुवीजा मना रहे हैं। ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका होता है। इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और मौके पर विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। कोयल सितल की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: 34 साल पहले इंदिरेन और नालिनी कर्पेन ने शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया था। इस सोमवार को उसी भावना और सादगी के साथ उन्होंने अपने वैवाहिक वचनों को फिर से दोहराया। वही हाल ही में विवाह करने वाले पुवानी

0: नॉर्थ किशन अमन जुलू ने ये पवित्र रस्म पहली बार निभाई।
1: Souhaite tout bas nouveau et nouvelle mariée qui a ma part de châti de nous être beaucoup bénédiction. Comme nous premier habit, le kundu, c'est nos mamans qui nous offrent nous le premier cadeau.
2: Maman souhaitait que tout le temps reste bien ensemble, tout le temps, et tout passe bien entre nous.
0: Sri Govindarajan Payanyandi kehte hain.
3: Cette cérémonie, il y en a trois phases. Nous rendons hommage à la déesse. Le Gange, ça veut dire Ganga. Et deuxièmement, c'est aussi pour l'agriculture. Quand l'agriculteur commence à planter. Et troisièmement, c'est la famille maintenant. La famille que ben, je ne coupe, je te sens, je te la côte que je fais dans ce mariage.
0: Mauritius Tamil Union qui adhyaksh Rajesh Raman kehte hain.
4: Des années en années, nous faisons la cérémonie. Et nous prions aussi pour tout ben couple qui reste en harmonie dans ce ménage. En même temps, c'est aussi comme bénédiction de parents.
0: Ibn Sahid Desh ke kai ilaqon mein dampatiyon ne is pavitra bandhan ka navinikaran kiya. Ye ek aisa dharmik anushthan hai jiska uddeshya pati patni ke rishte ko aur mazboot banana tatha unke vaivahik jeevan mein nayi urja aur nayi shuruaat ka sanchar karna hai.
5: आज अगर सर अब्दुल रजाक मोहम्मद होते तो 120 साल के होते। गणराज्य के पुराने उपराष्ट्रपति रऊफ बंधन की पहल पर मुस्लिम यूथ फेडरेशन के सहयोग से पोटलवी में मॉरिशस की आज़ादी के बानी को खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गवाहियों किताब और उनकी नस्ल की हाजिरी में सर अब्दुल रजाक मोहम्मद की छोरी विरासत पर रोशनी डाली गई, जिनकी आज भी उनकी तीन नस्लें पैरवी कर रही हैं। कॉमनवेल्थ खेलों का अगला संस्करण भारत में लगाया जाएगा। इस साल हमारे एथलीटों ने मॉरिशस के लिए 4 मेडल्स जीते हैं। ग्लासगो में हमारे देश के लिए नया इतिहास रच दिया गया। रेमी फ्यूये को जूडो में गोल्ड मेडल और पैरा एथलेटिज्म में नोएमी अल्फोंस को 2 चांदी पदक और बॉक्सिंग विधा में मैवी निकलिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये अगली रिपोर्ट सुनिए।
6: Please observe the lowering of the Commonwealth sports flag.
7: 10 खेल विधाओं में 11 दिनों तक चली रोमांचक प्रतिस्पर्धाओं के बाद रविवार शाम 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर खेलों से जुड़े सभी प्रतिभागी, अधिकारी और स्वयंसेवक अंतिम बार एक मंच पर एकत्र हुए।
8: I proclaim Glasgow 2026 closed.
7: खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबरो ने की। समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा रहा। प्रसिद्ध बैंड सिंपल माइंड्स के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। समारोह का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपना रहा, जो 2030 में होने वाले 24वें कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा।
9: इंडिया वेलकम्स द वर्ल्ड टू कॉमनवेल्थ गेम्स 2030.
10: This is the national song of India, the Vande Mataram.
11: For Rome 2030 and the Centenary Games in Ahmedabad.
7: समारोह के दौरान बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना सहित कई भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और दुनिया भर से आने वाले राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों एवं दर्शकों को 2030 के खेलों की एक झलक दिखाई।

विदेश में पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ 14 लोग मारे गए हैं जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल थे उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया सुबह 3 बजे के करीब यह भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने आपात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है किसी के हताहत होने की खबर नहीं है दक्षिण कोरिया की राजधानी सेओल में निहायत शदीद गर्मी महसूस की जा रही है कई शहरों में तापमान बहुत उच्च दर्ज हुआ जापान में भी 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और इसराइल में भी तेज गर्मी से आम जिंदगी प्रभावित है उधर अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी की नई संभावना उभर रही है ईरान ओमान से बात कर रहा है लेकिन अमेरिकी पक्ष से फिलहाल बातचीत करने से इनकार कर रहा है

और अब करते हैं मौसम की बात। पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं और मस्कीरेंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात बादल घिराएंगे और सेंट्रल प्लाटू तथा पूर्व में रह रहकर बारिश होगी और बाद में मौसम अच्छा होगा। कल बारिश होती रहेगी, खासतौर पर पूर्व के एक हिस्से पर और सेंट्रल प्लाटू में। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की तरफ से चलेगी, जिसके तेज झोंके चंद इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दक्षिणी लगूनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:38 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।

तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। एमबीसी के साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब। अविनी कैस्केट पलमा कैथ्रोबोन में 60 साल के 60 years old श्री रविकांत अजूदा जो फुंडन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल ढाई बजे इनके घर अविनी कैस्केट पलमा कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पलमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। जानकी रोड पुतगोडो विलेज में 83 साल के 83 years old श्री बालकृष्ण चमन जो दानेश्वर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल ढाई बजे इनके बेटे सुनील चमन के घर जानकी रोड पुतगोडो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। B40 ग्रीव लातू केनिक पॉइंट टू साबल में 63 साल के 63 years old श्री कृतानंद मदरा जो माधु मौशांपुम दामो के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 10 बजे इनके घर B40 ग्रीव लातू केनिक पॉइंट टू साबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रुजिल में 77 साल की 77 years old श्रीमती दमवंती राम केलावन पैदाइशी नामो मिया जो सरोज के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे के घर डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रुजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलव्यू

की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM रिजर्वर रोड गोंबी में 48 साल की 48 इयर्स ओल्ड श्रीमती कुसनावती लीलू पैदाइशी नाम तायोमैन जो आशा के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल एक बजे के घर रिजर्वर रोड गोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 5 अगस्त 2024 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक फ्लैट सनासी और आसपास के इलाकों में अफसायद हुसैन पायुत फिनिक्स और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल मंगलवार 4 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक रॉयल रोड पीतो और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: कांइचे गंगेश्वरनाथ शिवालय सभा द्वारा 1 अगस्त से 9 अगस्त तक अग्नि पूरण कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम 6 बजे से पूजा, कीर्तन, भजन और 7:30 बजे से कथा, प्रवचन एवं आरती का कार्यक्रम होगा।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सोमवार 3 अगस्त घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चलिए एक बार फिर यहाँ पर आ चुके हैं हम आपका साथ देने के लिए। कैसे हैं आप? चलिए ठीक होंगे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। मंडे का दिन है, मंडे की ये शाम है। चलिए साथ मिलकर इस शाम को हम एक साथ गुजारेंगे। खूबसूरत गाने तराने ढेर सारी बातें आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और जहाँ कहीं से भी

0: आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज का दिन अच्छे से बीता होगा। और मंडे होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है क्योंकि सप्ताह का पहला दिन होता है और थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है। तो चलिए आपकी थकावट को दूर करेंगे खूबसूरत गाने तराने के साथ साथ, आपका एंटरटेनमेंट हम करेंगे। नई सोच ये जो प्रोग्राम है चलेगा शाम के 7 बजे तक और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।
1: You're listening to RM3 Radio, मन

0: चुप रहते हैं।
1: RM3 Radio.

Nisu. चलिए यकीनन नई सोच की बात करें तो नयापन जीवन में अच्छा होता है। कुछ नया सीखना हो, कुछ नया जानना हो, नई जानकारियाँ हो। आजकल तो हमारी लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई है कि इतनी नई चीज़ें इतने कम समय में आती है कि कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं। नयापन अच्छा है, लेकिन इस नएपन के साथ साथ जो पुरानी बातें हैं उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती है, जो बचपन से हमने सीखी होती है, जो जानी होती है, बड़े होते होते जिन सभी बातों पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ये सारे हमारे जीवन के फाउंडेशन होते हैं, हमारे जीवन की नींव होती है। और अगर नींव ही कमज़ोर हो तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जितना उत्साह, जितनी एक्साइटमेंट इस नए चीज़ों के लिए होती है, उतनी ही लगन या उतना ही लगाव पुरानी चीज़ों के लिए भी होना ज़रूरी है। अभी के लिए दो जासूस फिल्म का ये तराना हो जाए। शैलेंद्र सिंह, लता जी और साथियों की आवाज़ों में आप सबके नाम

0: नहीं सो।
1: चलिए इतनी रात भी नहीं हुई है कि अभी ही हम सोने चले जाएं, अभी तो डिनर का वक्त हो रहा है। तो चलिए, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे नई सोच की इस आखिरी गाने की ओर। और इसके साथ नई सोच ये प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी और आपकी जो मुलाकात है ये जारी रहेगी। यस, ऑन रेडियो मनोरंजन टिल 9 PM, यानी कि अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम की ओर। तो आप सब बिल्कुल तैयार है ना अपनी फरमाइश और अपने डेडिकेशंस के जरिए। तो चलिए, 90s का कोई तराना सुनना चाहते हैं, कोई रोमांटिक सा गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। और अभी के लिए हो जाए ये गाना आप सबको

0: शुक्रिया कहते हुए। आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए,
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Nee so, nee so, nee so, nee so.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Time check, it's 7 p.m.
4: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
3: चलिए गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को लेकर हम यहाँ पर आपके साथ साथ हैं साथ साथ रहने वाले हैं रात के 9 बजे तक। चलिए दिन जैसे भी बीता हो ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि अच्छा ही रहा होगा, लेकिन अभी से लेकर 9 बजे तक खूबसूरत गानों के साथ होने वाला है आपका एंटरटेनमेंट। खूबसूरत प्यार भरे तराने, रोमांटिक गाने आपके लिए हम करेंगे। कोई स्पेशल ओकेशन है, कोई ख़ास मौका है, किसी के नाम कोई गाना करना चाहते हैं, उनके नाम कुछ डेडिकेशन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत हम करते हैं। भूलिएगा नहीं 4028070 है नंबर हमारा फॉर योर फ़ोन कॉल्स, योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। साथ ही थोड़ी देर में विल बी लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दिलों की आवाज़ के इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़
1: की आवाज़। चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज़ में आपके दिल की आवाज़ हम तक पहुँच रही है, आपके डेडिकेशंस, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके फरमाइश, आपके बातों के ज़रिए। और आज का दिन बहुत से लोगों के लिए ख़ास है, आज सावन के महीने में है और सावन के महीने में सोमवार का बड़ा ही महत्व होता है ना। तो ऐसे में ये जो अगला तराना है घूंघट फिल्म का, तू ही मेरा शिवा, इस खूबसूरत गाने की फरमाइश आई है यहाँ पर स्वेनल की ओर से। स्वेनल की ओर से गाना जाता है उनके भाई श्रवण के नाम, भाभी कीर्ति के नाम, अभिनव, किया, नव्या, सभी तिलक फैमिली के लिए और सभी शिव भक्तों के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: तो चलिए, दिस इज़ या दिलों की आवाज़। और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी हैं, तो जितने हमारे फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं, आपका भी शुक्रिया हम करते हैं, आपका स्वागत हम करते हैं। और चलिए, उम्मीद करते हैं ये जो मंडे का दिन है बहुत अच्छे से बीता होगा आप सभी के लिए। और रात के 9 बजे तक हम तो है ही यहाँ पर आपका साथ देने के लिए। तो चलिए, शर्मिला बुधन जी नमस्कार, आपका वेलकम है। हाय रितेश जी, कैसे हैं आप? किरण पुरी जी वैंकूवर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। नूर आजमी, थैंक यू फॉर शेयरिंग द लाइव। वी हैव सूर्यन सरोजा जी, कैसी है सरोजा जी? उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं।

दौलत तरन जी आपने कहा माधुरी दीक्षित का कोई गाना चलिए थोड़ी देर में जरूर माधुरी दीक्षित का एक गाना आपके लिए हम चलाएंगे और यहां पर श्रद श्रद जी नमस्कार कैसी है आप शैलेंद्र जी प्रणाम कैसे हैं अभी आप मालिनी विश्राम जी नमस्कार आपका भी वेलकम हम करते हैं संगीता सुकारी जी प्रणाम आपको भी और चलिए इस समय चंदनी पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ब्रिटानिया से हमारा साथ दे रही है और अगला जो गाना है बेदर्दी फिल्म का ये तराना होगा आपके नाम हम करते हैं और सभी पुरुषोत्तम फैमिलीज के लिए

0: दिलों की।
1: चलिए शायद ही कोई होगा जिनको इन गानों को सुनते सुनते फिर से प्यार ना हो जाए, है ना। चलिए यहाँ पर बड़े ही प्यार से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़र आपके मैसेजेस की ओर हम दौड़ाते हैं। तरन दौलत जी ने कहा था अगर हो सके तो एक माधुरी दीक्षित जी का गाना हो जाए। चलिए बिल्कुल माधुरी जी का ये जो गाना है राजा फिल्म का, आपके नाम हम करते हैं और माधुरी दीक्षित के सभी फैंस के लिए भी। राजीव पुरन जी, जो गाना आपने मांगा है थोड़ी देर में हमें मौका मिला तो हम ज़रूर इसे चलाएंगे। कैंसिंगटन है जी, कैंसिंगटन आपका नाम है, मैं समझ नहीं पाई आपके मैसेज को। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आपकी ओर से गाना जाता है देवांश के लिए। दादी है सीता, साथ में फूफू है श्वेता, मामा पापा एक्वायो से सभी परिवार इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपी जी नमस्कार, दिनेश जी कैसे हैं आप, पहली नज़र में तुम्हें दिल दिया। ओके, कोशिश करेंगे शैलेंद्र जी इस गाने को चलाने की। नीलिमा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफीना जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है। एजे कैसे हैं आप, उम्मीद एजे इस लाइव में सब ने आपको बहुत मिस किया, इतना तो हम कह ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप ठीक है। हेलो नीलिमा जी, थैंक यू फॉर लाइकिंग द प्रोग्राम। अगला गाना आपके हस्बैंड रमेश के लिए। कल आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी थी तो नीलिमा जी और रमेश जी आप दोनों को बिलेटेड वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एजे, यूज़र 40100। हेलो, अगला गाना आपके लिए। जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को शेयर करते जा रहे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलवंती जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। और चलिए यहाँ पर राजा फिल्म का ये तराना चल पड़ा है, माधुरी दीक्षित और संजय कपूर जी पर पिक्चराइज्ड ये गाना है। मदन पांचू जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक है। हाय ऋषिका कैसी है आप। कुलराज ओझा जी आपका भी वेलकम है।

गुलशन जी थैंक यू सो मच आपके इस अपडेट के लिए काफ़ी देर पहले आपने हमें मैसेज किया था कि मोटर वे पर जितने भी लोग ड्राइव कर रहे हैं विजिबिलिटी काफ़ी लो है तो चलिए जितने भी लोग ड्राइव कर रहे हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं आप संभल कर ड्राइव कीजिएगा। यहाँ पर हमें हमारे एक कॉलर ने बताया कि मोटरवे पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है शायद ठंड की वजह से होगा हल्की हल्की बरसात भी हो रही है कहीं कहीं पर तो आप अपना ध्यान रखिए। और ऐसे में अगले गाने की ओर बढ़ते हैं रंग फिल्म का ये जो तराना है गुलशन जी आपके नाम हम करते हैं गाना चाहता है आपकी ओर से आपके मामा प्रभा के लिए सिस्टर है दीक्षिता आयशा है बोला फैमिली है और हमारे सभी आजेस के नाम जो हमेशा आपका साथ देते हैं। कविता जी कोची में लेते से हमारे साथ जुड़ी है कह रही कि पूरी दिन जो है वहाँ पर बारिश हुई है ऐसे भी बरसात की काफ़ी ज़रूरत भी है ना। माला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है हाय ए के हाय नीलिमा जी नीलिमा जी जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में मौका मिला तो इसे हम ज़रूर चलाएंगे। लिंगम की ओर से अगला गाना नरजीना के नाम हम करते हैं एजे और अंजू आपको भी हम नहीं भूले हैं। किरण पुरी जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए जीजी लाल नविंदर सभी हमारे साथ कनेक्टेड है। लिंडा थैंक यू फॉर योर मैसेज वीर सिंह नमस्ते जी कैसे हैं आप निज़ाम उजिया जी आपका भी मैसेज हमें मिला लेकिन आपके मैसेज को हम इतना ठीक ठीक समझ नहीं पाए तो अगर आप दोबारा मैसेज भेजें तो अच्छा होगा। विजय जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए वीना जी नमस्कार आपको भी। अगला गाना अनु की ओर से उनकी प्यारी बेटी सानवी के नाम वी हैव ली मान जो हमारे साथ कनेक्टेड है। ज्ञान शिवसरन जी थैंक यू सो मच मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपने कहा फिल्म ब्रह्मचारी का गाना पुरानी फिल्मों का गाना इस सेगमेंट में हम चलाते हैं। मिंटा जी ने जो है हमारे पास रिक्वेस्ट की है चांदनी फिल्म के तराने की थी मौका मिला तो हम जरूर चलाएंगे। और चलिए यहाँ पर उमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है थैंक यू फॉर लविंग द प्रोग्राम। रेखा हमारा साथ दे रही है गाना जाता है उनके बेटे आंश के लिए। किरण पुरी जी यू आर वेलकम। और हॉलैंड से इस समय दीत जी जी दिया हमारे साथ जुड़ी है सो रंग फिल्म का ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं और ख़ासकर गुलशन जी आपके और आपके सभी फैमिली के लिए।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए, गाने ऐसे हैं कि बेशक हम सबके दिल को छू ही रहे।

रहे हैं, है ना। और इस समय चलिए डिनर करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को बुना पीछे हम कहेंगे। और यहाँ पर बड़े ही प्यार से एम के सिंह हमारा साथ दे रहे हैं। कुलराज जी, आपने जो पुराना गाना मांगा था इस प्रोग्राम में, तो हम नहीं चला पाएंगे। कल सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में हम ज़रूर चलाने की कोशिश करेंगे। शर्मिला जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी है। वी हैव खुमान, वी हैव एनी मैक्स, वी हैव शुगर जो कहती है कि मैं शुगर फ्री हूँ। हेलो नाज। और यहाँ पर मोचिदा से संध्या जी हमारा साथ दे रही है। वी हैव निशा, आयशा अली, एंजल वंश, धनुष है, बिंदा है, वी हैव भौमी, साथ में सभी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। चंदनी पुरुषोत्तम जी, थोड़ी देर पहले आपने जो गाना हमसे मांगा था, एक दिन तो होनी थी मोहब्बत, हमने बिल्कुल चला दिया, अब आप एक और रिक्वेस्ट कर रही है। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर हम रिक्वेस्ट को शामिल कर पाए, लेकिन एक बार में एक रिक्वेस्ट काफ़ी है ना। क्या आप दोबारा कल जब कोई काम करेगा तब आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। और यहाँ पर अगला गाना संध्या जी आपके नाम करते हैं, सैपिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और शर्मिला बुधन जी, आपने कहा हो सके तो बलमा फिल्म का गाना, तो चलिए आपने कहा और हमने इस गाने को चला दिया आपके लिए। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, उन सभी के नाम भी जो इस गाने को पसंद करते हैं।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिला लीजिए, रात के 8 बज रहे हैं।
4: दिलों की आवाज़
3: चलिए, दिलों की आवाज़ के सेकंड आवर में आप सभी लिसनर्स का, आप सभी फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ विद सुमी। रात के 9 बजे

बजे तक जो है हमारा और आपका साथ रहने वाला है। खूबसूरत गानों के साथ इस प्रोग्राम को चलिए हम आगे ले जाते हैं। बहुत सारे हमारे लिसनर्स तो हमारे साथ जुड़े हुए ही है, साथ ही बहुत सारे फॉलोअर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं टिकटॉक इस लाइव के ज़रिए। बादवाग विदेशी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू बादवाग जी आपके मैसेज के लिए। गाना जाएगा आपके नाम और सभी विदेशी फैमिली के लिए। चलिए इस समय जो है कवि शिरीष जी हमारा साथ दे रहे हैं, वी हैव मैरी ग्रेस, थैंक यू सो मच। अभी बलमा फिल्म का जो गाना चला बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया, सुनी जी सुनीता जी चलिए आपको भी अच्छा लगा जानकर, बड़ी खुशी हुई। सुखविंदर जी अगला गाना आपके नाम हम करेंगे। दीप्ति जी बिल्कुल बलमा फिल्म का गाना तो कमाल का ही है, मूवी भी बड़ी कमाल की है। सुखविंदर जी जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में हम आपके लिए चलाएंगे। आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर हमें मिली थी मिंटा की ओर से चांदनी फिल्म के गाने के लिए, तो मिंटा जी अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थैंक यू सो मच, रोशन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो गाना आपने मांगा रोशन जी विल ट्राई टू प्ले इट फॉर यू। विमी जी नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं। और यहाँ पर परदेसी बाबू हमारा साथ दे रहे हैं, रघुनंदन करुणा जी उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक हैं। सैम आपके मैसेज को हम समझ नहीं पाए हैं, आपने क्या लिखा है। रूड्स, हाय रूड्स, हाउ आर यू, थैंक यू। यहाँ पर मिंटा जी आपके इंतज़ार जो है इस गाने के साथ ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपका गाना यहाँ पर चल पड़ा है। और यही गाना हम विनय जी आपके नाम हम करते हैं। रिया बुदन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और चलिए यहाँ पर राजीव उपाध्याय जी आपका भी मैसेज हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, थैंक यू सो मच गानों को पसंद करने के लिए। राजकुमार जी अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं। राजीव उपाध्याय जी आपको भी हम नहीं भूले हैं।

और चलिए यहाँ पर साजन मेरा उस पार है, ये जो गाना है लता जी की आवाज़ में चल पड़ा है, और ये गाना खासकर सुखविंदर जी आपके नाम गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये तराना है, और यही गाना विनय विधिका और विधान के लिए जिस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। राजकुमार जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, गिरवर है, आलम है, वेदना जी कटरबोन से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजीव उपाध्याय जी आप का नाम हमने लिया, आपको अच्छा लगा। चलिए डेडिकेशंस का प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली जितने भी फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं सबका नाम हम लेते ही है। रजनी जी आपने हीरो फिल्म का गाना मांगा, मौका मिलेगा तो हम जरूर चलाएंगे थोड़ी देर में।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: चले दिलों की आवाज और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। रिया बुधन जी, अगला गाना आपके नाम। उदार फिल्म का ये जो तराना है आपके लिए हम करेंगे, दीवा गर्ल। यही गाना आपके लिए भी जाता है। बीना पादू जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिया जी, ऐसे पुराने गाने जो है आपको तो पता ही है यहाँ नहीं चलाते हैं, लेकिन ये जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं बड़े ही प्यार से आपके लिए हम डेडिकेट करते हैं। प्रेमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। वी हैव निशा, बीमी, अविनाश, प्रिस एंजल की ओर से अगला गाना उनके हस्बैंड सुभाष के नाम हम करेंगे। विनय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर डैनी जी गुडलैंड से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गाना जाएगा सभी जगरू फैमिली के नाम। और यहाँ पर रंजीत जी, अगला गाना आपके लिए भी सैड सॉन्ग। कोशिश करेंगे सैड सॉन्ग अगर हमारे लिस्ट में है तो। रंबा जी विलनुआ से हमारे साथ जुड़ चुकी है, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज सिंह जी, एस राज सिंह जी, गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है राजीव उपाध्याय जी आपके लिए। और यहाँ पर थैंक यू दीप्ति जी गानों को पसंद करने के लिए। किरण जी नमस्कार आपको भी। प्रसाद जी हमारा साथ आप दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। एंड यहाँ पर चलिए इस गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: दिलों की।
1: और चलिए यहाँ पर देखते ही देखते रात के 8:30 बज चुके हैं और अब बारी है इस अगले गाने की। अगला जो तराना है यहाँ पर हम खास कर करेंगे रिहाना आपके नाम, जो फिनिक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सात रंग के सपने इस फिल्म का गाना होगा, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जी की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चलिए हर मुश्किल आपकी दूर हो, हम तो बस यही विश करेंगे। इस समय आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला गाना आपके मामा प्रीति के लिए, पापा कृष के लिए, साथ में बहन उर्वशी है, विश्नी है, जीजू है, विनेश, कियान, नव्या, सभी फैमिली, सभी फ्रेंड्स के नाम, खासकर युदीन, दिशाल, सभी मनसुख फैमिली जिस समय बॉम्बू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: तो चलिए, विद दिस वी हैव कम टिल द एंड ऑफ दिलों की आवाज़। आप सब ने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जाते जाते जो आखिरी गाना है, अनीता जी आपके नाम हम करते हैं, फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ आप दे रही है। और यही गाना जाते जाते हमारे सभी सभी लिसनर्स के नाम, सभी फॉलोअर्स के नाम जिन्होंने हमारा साथ दिया हमारे प्रोग्राम में। 9 बजे जो है रेडियो मॉरिशस से जो लाइव प्रोग्राम चलता है उसे आप सुन पाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर। और हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। जी हाँ, कल हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे, कल हम मिलने आएंगे आपसे दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, रेडियो मनोरंजन से यूँ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जाते जाते ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम हम करते हैं।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का।
3: नमस्ते, हमनी के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर स्वागत करत हैं। जा आज लेंदी के रात है, आज लेंदी के दिन तोहर बहुत अच्छा से गुजरल हो, यही उम्मीद करत हैं। और इस सप्ताह के आज के हमने के भोजपुरी तड़का के शुरुआत करी जा, और ऐसे में हमने उम्मीद करते हैं जा कि तोहर सेहत अच्छा रही, तोहर दिल बहुत खुश खुश रही, और उम्मीद तोहर मन में हमेशा हमेशा रही। उम्मीद जीवन में हासिल रही तो जीवन के एगो अलग सन पहचान रहे, राय खातिर अपन उम्मीद कबू नहीं छोड़िए, उम्मीद के जिंदा रखिए हमेशा, और ये आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमने ई रात्रि में ई शाम में तोहर खातिर बहुत बहुत उम्मीद लेके आ रही जा कि तोह लोग आराम करत हुई बजा, दिल तोहर बहुत आराम से आज के रात्रि बितावत हुई, और ई उम्मीद करते जा कि हमने के कार्यक्रम में भी भाग ले बजा, हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, और भोजपुरी तड़का में अजय कोनो गाना सुने खोज बजा, तब बेशक हमने के मैसेज सक बजा भेजे सैंक दे सैंक 7005 पर, यानी कि 5251700005 पर, और जो टेलीफोनी करके हम इससे फरमाइश करें खोजवा जा तो बेशक करिए जा 7005 पर 4028085 पर। तो चला संगे संगे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करी जा, और पहला गाना तो लोग के आदेश ठाकुर प्रसाद जी के सुनवाओ जा सजनिया।

चला वरिकुत हमी तनी नमस्ते सलाम वोंजू सब बोली जाते हर के गाना उनसे मंगले अवन बिन्नो विष्णु हरि जी के कावल विष्णु हरि जी के कावल गाना हमने बजावा थे जा छोटी जी की पसंद पर पुलाव जैसे छोटी जी गाना मंगले अवन ललिता जी खातिर प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर

दादा की कहानी दादी की कहानी गाजन सिंगारों जी के गावल ये गाना हमने बजावत है जानू अल्फोंस के गायत्री जी के पसंद पर उनकर बेटा अजय खातिर मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर मोतायलों के भाभी शकुंतला खातिर और इन अल्फोंस के सखी गीता बाई खातिर।

गासन सिंगारों जी के गावली गाना हमने पीतों के अमृता जी खातिर भी बजावत है जा परी और सोनिया खातिर उनकर बेटा विशान और पत्तो मीनाक्षी खातिर और बेटी पूनम खातिर

दादा दादी की कहानी तो सुन ली जा पर एक और जमाना की कहानी सुनब जा जहाँ पर लाफों ते ना लगे कितना कोई मिला तलन जा प्रेम बाँटा तलन जा दोस्ती बनाओ तलन जा। यह राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना और ई गाना हमने बजाओ थे जा रवि जी के पसंद पर लाफलोगा से रवि जी गाना मंगलवाना अपन बहन सुनीता के नाम।

और अब चला लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावाले को गाना चला सुनी जा और ये गाना हमने बजाओ थे जा मनीलाल जी के पसीन पर पिछड़ाफा के मनीलाल जी अपन पत्नी माया के नाम कर ले गाना

कोरोना महामारी के बारे में तो हमने कभी भुला ही नहीं सका बचा जितना दुख दर्द सहलक हमने के पूरा संसार एक भुला ही नहीं सका बचा चला अभी हमने सुना बचा विरत सिरदर्द जी के गावल एगो गाना और ये वो गीत था जिन मंगले हवन ललिता जी गाना था योले से मंगले हवन अपन बहिन लोग खातिर सुदेवी देवीना ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी आत्माराम जी और हरी जी खातिर सुखलाल मौसी उषा लुकाना और माला राम जवन खातिर

और अभी चला सुनी जा हमनी लीलो माथुर जी के गावली गीत लीलो माथुर सुकंज गैले हवन बेदर्दी बालमा और ई गाना हमनी से मंगले हवन सुभाष जी ऑसनाल से ई गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर अपन माता जी रेणुका खातिर और पिताजी विजय खातिर और अपन दादी माँ खातिर।

आतिश भगीरथी जी के गावली गाना सुनत है जा और ई गाना हमनी बजवावत है जा अब्बू जी के पसीन पर अब्बू जी गाना मंगलावन बाकवा से आफेज असलम आयाज जाहिरा रईस काला छोटी खातिर उनका दोस्त अपी खातिर और उनकर पत्नी खातिर और रकीबा खातिर रकीबा जी के सेहत अच्छा हो ई उम्मीद में हो अन्ना

और अब हमने के भोजपुरी तड़का में सुनी जा पूर्णिमा फकीरा जी के गावल दगाबाज बलमा। ये गाना फकीरा परिवार खातिर, कलिया चेती परिवार, दीपी दयाल परिवार और दसोई परिवार खातिर मंगले हवन पूर्णिमा जी। अपन बेटा प्रवेश और पतो कुष्मा खातिर मंगले हवन, इंग्लैंड में हवन जा और SSON हॉस्पिटल के उनकर पूरा टीम खातिर।

लीलो माथुर सुकंज के गावाली गाना और ये गाना हमी के माता पिता के नाम बड़ा बुजुर्ग लोग के नाम ये गाना विद्यानंद जी मंगले हवन सब बुजुर्ग लोग के नाम और अपन माता जी के नाम विद्यानंद जी रहलन तेरूज ये गाना हमी के सब बड़ा जना लोग के नाम करता हवन लीलो माथुर सुकंज

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में तोहर स्वागत करत हैं। जाओ रे भोजपुरी तड़का में अभी कुतन चटनियाँ खाई ला जा, तन चटनियाँ के स्वाद ले ला जा। हमने के तो भोजपुरी के स्वाद लेते हैं जा, संगे संगे चटनियाँ के भी स्वाद दे ला जा। मीरा मोहन जी के आवाज़ के गाना है और ये गाना हमने घोघप के सुनीता जी के तरफ से बजावत हैं जा, कुंगुमा के उनकर बहन विमाला जी के नाम।

और अभी कुछ हमनी माँ पर आधारित गाना सुना थे जा गाना सुनीता जी मंगलवार पर माता जी खातिर सुनीता जी वाकवा से गाना मंगलवार पर माता जी खातिर और उनकर माता जी खातिर यानी कि सुनीता जी के नानी जी खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी में, भोजपुरी तड़का में तरह भोजपुरी के सवदवा मिलते हुए अवरी इजन खुशबू बा भोजपुरी के संगीत के ओ भी तोहर तक पहुँचते हुए जहाँ हो हमने के भोजपुरी तड़का में भाग लेवे के हिचकिचाइए जाना ही चाहे मिसाज भेजबा चाहे टेलीफोने करबा तो लोग अपन मर्जी से अपन पसंद के गाना की फरमाइश कर 5251700005 हमने के नंबर हमें साज भेजे के और हमने के टेलीफोने करे के 4028085 देखना कैसे कंफ्यूज हो जाता है 4028085 हमने के नंबर कर पर टेलीफोने करिया जा और मजे से अपन पसंद के गाना मंगिया जा तोहरे पसंद के गाना हमने चलाओ आप जा अभी गीत गवाही वाला गाना सुनब जा और गीत गवाही वाला गाना गैले हवन बीच मावती संपत जी एकरा सुने खो जाता वन मौत आल बे ऐसे मीरा बाई दरमिया जी गाना मंगले हवन अपन बेटी और अपन दामाद खातिर अपन पति जी खातिर फिर पाद्या परिवार खातिर दमिया परिवार खातिर उनकर गुतनी के 60 बरिस होता उनकर जन्मदिन बा तो गुतनी जी के नाम करत हवन ई गाना सुनीता दरमिया जी के जन्मदिन पर हमने के पूरा टीम तोहरा सुनीता जी बहुत बहुत मुबारकबाद देवता जन्मदिन अभिनंदन

चलो माँ बाप की मोल सुनी जा हमने गीता गजाधर जी की आवाज में गाना हमें से अनीता जिफरी कॉम्फ्लाक से मंगले हवन अपन संगत यालो खातिर इंदिरा श्यामा मीरा सिनांद कविराज साधना मालिनी और कविता खातिर

वासुदेवा मोहन जी की गावरी गीत, हमने के दादा की कहानी, हमने के दादी की कहानी, यानी कि हमने के पूर्वज लोग की कहानी, चला सुनी जाई कहानी हम जी संध्या जी के फरमाइश पर। संध्या जी गाना मंगले हवन पिछित्रिवे से, और ये गाना अपन दादा दादी के नाम करत हवन।

मुकेश जी की गावल, मुकेश चंडी जी की गावली गाना ही खाले खाले कसम कसम खा के मतलब जो न गलत व्यवहार बा उला निकाली के कसम खाई के बोलत हवन और ये बात बहुत सही बोलत हवन। गाना हमने मुकेश जी खातिर बजावत है जा मुकेश जी रहे लन पिछे गफे और गाना मंगले हवन पर पूरा परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का। चला तड़का लगाएला जहां नीनी दीनू मीराज के गावल गाना संगे मेरा दीनू जी गैले वन काहे दिलवा लगाई ले। चला सुनी जा उनकर सिकवा उनकर शिकायत। और ये सिकवा शिकायत हमने सुना था जा कल्याणी जी के पसीन पर। माई बो से कल्याणी जी मंगले हो वनी गाना सब सुने हो लालो खातिर।

और चला आगे बढ़ी जगगिरीश रूपचंद जी के गावली गाना बड़ी खुशी रह लेन शांति जी गाना सुने के तैहूर से शांति जी गाना मंगले हवन डागुचे के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर अप्पा डागुचे के अपन भगीना ओम खातिर और हमने के सब सुने वाला खातिर।

गावे कितना सुदेश बोईजू जी भी गावत हन संगे संगे हमनी भी गावब जाय मुर्गा मुर्गी के ई प्रेम कहानी ई गाना सुने खोजत हन पालमा से महेन भाई जी। महेन जी गाना दीदी मान खातिर बजवावत हवन और उम्मीद करत हवन कि दीदी मान के पसंद पड़ी सुदेश बोईजू जी के गावल ई गीत।

पहल गौरी जी के गवाली गाना मामा और पापा और अगवा के लेके मापू के उत्तरा देवी के नाम करत है जाई गाना उत्तरा देवी जी गाना अपन बेटा आनंद और आतिश के नाम करत हवन और गाना पीतों से अमृता जी मंगले हवन उत्तरा देवी जी खातिर।

10:43 होल बाउरी हमनी के कार्यक्रम 11 बजे लेक चली 11 बजे में अब भी 17 मिनट बाकी बा तो चलो तो हर पसीन के गाना हमने चले थे जब 17 मिनट में ख़त्म हुई कार्यक्रम और अभी जो गाना सुने थे जा कल्याणी जी मायबू से मंगले हवानी गाना सब सुने हो लालो खातिर और अपन भगिनी गायत्री जी खातिर नोवेल फ्रांस की गायत्री जी और उनका बेटा अजय खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: नदिया बहल जाला, हमने के जिन इतिहास बा ओकर नदी बहल जाला, नबीन रोशनी जी कहले हवानी गाना, और ये गाना विवेक जी भी सुने खोजत हवन। विवेक जी शुमे घरिये सी गाना सुने खोजत हवन और सुनवाई खोजत हवन अपन पत्नी राधिका के।

परसुआ के पैसुआ के बारे में बात करी जा, परसुआ में पैसा बाकी नहीं बा। चला सुनी जा हमी नंदन सलतू जी से, और नंदन सलतू जी के इगावल गाना उषा जी का थोबोन से मंगल हवन, वीना दिया संगीता और मीना के नाम।

आज के भोजपुरी तड़का में हमी के साथ दे लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमी की कार्यक्रम के खूब शानदार बनैला तुम ही एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। एकर समय पूरा हुआ था, भोजपुरी तड़का के समय पूरा हुआ था, भी 10:55 होल बा 11 लेकर हमी के कार्यक्रम चली और ये अंतिम गाना तो लगे नंदकेश्वर शंकर जी की आवाज़ में सुनवावत हैं। जा ये कार्यक्रम 11 समाप्त हो जाए तो हर रात्रि बहुत शांति से गुजरी यही उम्मीद करते हैं। हम सुरे खतर से आज्ञा चाहते हैं रात्रि के 11 सुनिए जा गिनी शाह की प्रस्तुति में आज के हमने के कार्यक्रम में सुनहरे पल पुराना पुराना गीत के कार्यक्रम आवतला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ
3: फिर से एक बार अग्निशा आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और हमारा प्यार भरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। उनकी जो मिठास है ना, आज भी उतनी ही गहरी है। तो आइए उन अमर गीतों का लुफ्त उठाते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

पीछे छुपी होती है किसी ना किसी की मुस्कान, किसी की मोहब्बत और किसी की कहानी। और आज उन सब कहानियों को फिर से जीते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ। पुराने गीत बिल्कुल सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, उन्हें महसूस किए जाते हैं। हर सुर दिल को छू जाता है और हर लफ्ज एक नई याद दे जाता है। स्वागत तो हमने आप सभी लोगों का कर लिया और बस उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से महसूस करेंगे आज।

रात होगी यादों के नाम, उन गीतों के नाम जो हर जनरेशन को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। तो चाय की एक प्याली ले लीजिए और शुरू कीजिए यादों का सफर सुनहरे पल के साथ। रेडियो मॉरिशस पर गिनिशा के साथ।

मोहम्मद रफी की आवाज, लता मंगेशकर की मिठास, किशोर दा की शरारत और मुकेश दा का दर्द, सब कुछ मिलेगा आज सुनहरे पल में। बिल्कुल जी, यादों के इस पितारे को खोलने का वक्त आ गया है। हर गाना आपको ले जाएगा बचपन, जवानी और जिंदगी की हसीन लम्हों तक। तो बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

पुरानी फिल्में, पुराने गीत और वो सुकून जो आज भी दिल को छू लेता है, इसी खूबसूरत सफर में हम सफर बनिए सुनहरे पल के साथ। वैसे कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाते हैं और आज उन्हीं यादों को फिर से जिंदा करेंगे इन खूबसूरत गीतों के साथ।

हर सुर में है मोहब्बत, हर लफ्ज में है जज्बात, और हर गीत में है सुनहरी कहानी। बस इसीलिए तो है सुनहरे पल। रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आपका साथ देने आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, ताकि आपकी यादों का खजाना फिर से हम खोल दे और आपकी होंठों पर मुस्कुराहट ले आए। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम।

टाइम इतने जल्दी जल्दी बीत जाता है कि हमें अंदाजा भी नहीं हुआ कि फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू. बिल्कुल जी, जाने का वक्त जो हो गया है. तो बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो। Yeah!

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।

जूल। अरे